एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान

0: दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती और बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और भक्ति दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक ज्ञान और भक्ति बराबर मात्रा में मन के भीतर प्रकट नहीं होते, तब तक कोई भी मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता, तब तक प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। प्रभु का दर्शन पाने हेतु ज्ञान के माध्यम से सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जो सुख परमेश्वर की भक्ति में है वह तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। प्रभु का सुमिरन करने से सभी कष्ट संकट दूर होते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है।

भक्ति मार्ग पर चलना सरल नहीं है। अपने समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर जो मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे ईश्वरीय सुख की प्राप्ति होती है।

प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा। केवल श्रद्धा और प्रेम द्वारा ही ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 165।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन-धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी, किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामन अवतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह की 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:40 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, कार्यक्रम होगा शुभ प्याग, गाने सुहाने। कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:30 पर। सुबह 9 बजे सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। 10:30 पर होगा कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, गूंज पहाड़ों की। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 11:05 पर। जय हिंद गीतमाला, ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:30 पर। 12 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सुनो सखी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 12:30। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवा मंच 5:25 पर। सुरमई सांझ ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:05 पर।

मोजां ग्राइंडियां कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:30 पर, शाम 7:10 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे किसान वाणी, 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे।

आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:20, 11:00, 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से ही हम रिली करेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम हिम दर्शन रात 9:15 पर। आठ बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिली किया जाएगा कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। रात 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम रिली किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से ही रिली किया जाएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00। आकाशवाणी दिल्ली से रिलीज किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। एक बजे शाम 5:00, 7:00 और रात 11:00 हिंदी में समाचार। 1:05 शाम 5:05, 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9:00 न्यूज़ @9।

तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिलीज किए जाएंगे।

0: के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडलेन प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट् मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता द्विहोरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000+ वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानस्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं पीओजेके इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमंत्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश तथा निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
0: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वे

0: स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने का आग्रह किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब कुल 23 पदक हो गए हैं जिसमें 5 स्वर्ण 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward the misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in the national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct was understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: Prime Minister Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. The Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram. He will lay the foundation stone of the ASIP semiconductor project at Vishakhapatnam. After concluding his visit to Andhra Pradesh, the Prime Minister will reach Mysuru in Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Viveka Smarka. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing the media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in Pakistan-occupied Jammu and

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार दोस्तों, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत इस सुविचार के साथ। जी दोस्तों, कहते हैं भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, अपना ध्यान सिर्फ वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम भविष्य के बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं करते हैं। वास्तविकता ये है, आज हम जो करेंगे उसी का परिणाम भविष्य में हमें देखने को मिलेगा। तो भविष्य की चिंता छोड़िए, भूतकाल को मत सोचिए और वर्तमान में कुछ कर जाइए।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, कार्यक्रम में बात करते हैं उन घटनाओं की जिनके कारण आज का ये दिन खास बन गया। 1914 की बात करते हैं। आज के दिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1995 में आज के दिन हबल दूरबीन से शनि के एक और चंद्रमा की खोज की गई। वर्ष 2000 में आज ही के दिन ईरान में महिलाएं भी इमाम बनी। बात करें 2006 की, आज के दिन जापान ने विश्व की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी सेवा शुरू की। 2007 में वियतनाम के हनोई शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारतीय दल के 6 सदस्यों ने 3 रजत पदक अपने नाम किए। और दोस्तों, आज के दिन वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ने भारत के विशेष निगरानी समझौते को हरी झंडी दी। किन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1869 की हम बात करते हैं। आज के दिन उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हरकोर्ट बटलर का जन्म हुआ। 1882 में आज ही के दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ। इनके विषय में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। आपको बता दें, विख्यात फिल्म अभिनेता और निर्माता निर्देशक भगवान दादा का जन्म आज ही के दिन 1913 में हुआ था। आज ही के दिन 1932 में सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म हुआ। 1939 में प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और आज के दिन 1993 में भारतीय मुक्केबाज रोहित टोक्स का जन्म हुआ। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इन महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुए। 1863 में आज के दिन जिंदान रानी का निधन हुआ। सरदार मन्ना सिंह औलख जाट की पुत्री थी जिंदान रानी, जो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की 5वीं रानी और उनके सबसे

छोटे पुत्र दिलीप सिंह की माता थीं। 1913 की बात करते हैं। आज के दिन हिंदी के महान और प्रथम तिलिस्मी लेखक देवकी नंदन खत्री का निधन हुआ। जी हाँ दोस्तों, चंद्रकांता चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके उपन्यास चंद्रकांता को आधार मानकर टेलीविजन धारावाहिक का निर्माण हुआ था, जो दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहा था। बात करते हैं 1920 की। आज के दिन गणितज्ञ, दार्शनिक, विद्वान और भारत के राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। इनके विषय में भी कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। पहले आपको बता देते हैं, वर्ष 2000 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भारतीय शायर अली सरदार जाफरी का निधन आज के दिन हुआ। आज के दिन वर्ष 2001 में भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल का निधन आज के दिन हुआ था। दोस्तों, जन्म दिवस की बात हमने की, निधन की हमने बात की, जो महान हस्तियां थीं। भगवान दादा का जिक्र हमने किया था। भगवान आभाजी पालव, जिन्हें हम भगवान दादा के नाम से जानते हैं, सिने जगत के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। विशेष रूप से भगवान दादा को उनकी प्रसिद्ध सामाजिक एवं हास्य फिल्म अलबेला के लिए याद किया जाता है। हिंदी फिल्मों में नृत्य की एक विशेष शैली की शुरुआत करने वाले भगवान दादा एक ऐसे सितारे थे जिनसे अनेक कलाकार प्रभावित और प्रेरित हुए। मूक फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाले भगवान दादा के हास्य अभिनय और नृत्य शैली ने उन्हें सिने जगत में विशेष पहचान दिलाई। आइए सुने भगवान दादा की फिल्म अलबेला का ये गीत।

है विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष अगस्त महीने के पहले सप्ताह यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को स्तनपान एवं कार्य को दृढ़ता पूर्वक एक साथ करने का समर्थन देना है। साथ ही इसका उद्देश्य है कि कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त कार्यालयों में भी इस प्रकार का माहौल बनाना है कि स्तनपान कराने वाली माताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश के अनुसार नवजात शिशु के लिए माँ का गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, संपूर्ण आहार होता है, जिसे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही शुरू कर देना चाहिए। सामान्यतः बच्चे को 6 महीने की अवस्था तक स्तनपान कराने की अनुशंसा की जाती है। शिशु को 6 महीने की अवस्था और 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान कराने के साथ साथ पौष्टिक पूरक आहार भी देना चाहिए। स्तनपान कराने से माँ और शिशु दोनों को ही लाभ होता है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, कार्यक्रम में हमने कुछ समय पहले बात की थी स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन के जन्म दिवस के विषय में। पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता तो थे ही, साथ ही समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। हिंदी के लिए बहुत कार्य पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। हिंदी को देश की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 यानी आज के दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। 1950 में इन्होंने

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद के रूप में कार्य किया। भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी इन्हें कहा गया। जन सामान्य में इनके लिए एक ऐसा नाम लाए जो राज ऋषि के नाम से विख्यात हुआ, अर्थात ऐसा प्रशासक जो ऋषि के समान सत्कार्य में लगा हो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषोत्तम दास टंडन एक ऐसे योद्धा थे जो स्वतंत्रता संग्राम में कारावास भी गए। एक निबंधकार और कवि के रूप में अपने साहित्य की सेवा आपने की और बंदर सभा महाकाव्य और कुटीर का पुष्प जैसे नाटकों की रचना भी की। वर्ष 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। राजऋषि टंडन की स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ इनकी स्मृति में 4,00,000 रुपए का राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान प्रदान करता है। साथ ही दोस्तों, आपको हमने बताया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज पुण्यतिथि है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। हिंदी, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वाले बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई के डेक्कन विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तिलक साहब उच्च कोटि के विद्वान, गणितज्ञ, महान दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 1914 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1916 में तिलक ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे ही पूना में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए, इन्होंने हिंदू प्लेग अस्पताल की शुरुआत की, पृथक्करण शिविर में निशुल्क रसोई की व्यवस्था की। इन्होंने 2 समाचार पत्रों, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा के माध्यम से लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का कार्य आरंभ किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना का गठन किया और सोसाइटी के पहले आजीवन सदस्य बने। राजद्रोह के मुकदमे में इन्हें कारावास भी जाना पड़ा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये शब्द लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ही थे।

सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज की खबरों के बारे में। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत विकास खंड कार्यालय इंदौरा द्वारा इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की सभी 58 पंचायतों में व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में फलदार पौधे, औषधीय पौधे और छायादार पौधे रोपित किए गए। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर के प्राचार्य डॉ. विश्वजीत ने जानकारी दी है कि शाहपुर महाविद्यालय में BBA, BCA और PGDCA पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। महाविद्यालय की इस उपलब्धि से विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विश्वजीत ने इस उपलब्धि का श्रेय शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया को दिया है। उप वन संरक्षक रेजिनाल्ड रॉयस्टन ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। धौलाधार वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड, जिसे हम गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं, का कैमरा ट्रैप के माध्यम से फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि अभयारण्य में अब तक किए गए सबसे व्यापक वन्यजीव कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण का परिणाम है।

मौसम की बात करें तो धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में लगातार रह रहकर हल्की और भारी बरसात आजकल देखने को मिल रही है। ऐसे में सभी को सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है। खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बात करते हैं आज की कार्यक्रम में हमने बात की थी, आज जन्म दिवस है मीना कुमारी का। जी हाँ दोस्तों, मीना कुमारी फिल्म जगत की खूबसूरत और प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उनका वास्तविक नाम महजबीन बानू था। मीना कुमारी अपनी दर्द भरी आवाज और भावनात्मक अभिनय के लिए दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहीं। मीना कुमारी ने अपने फिल्मी सफर में 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किया। बैजू बावरा, यहूदी, फूल और पत्थर, साहिब बीबी और गुलाम, पाकीजा, बहू बेगम आदि उनके अभिनय से सजी यादगार फिल्में रहीं।

सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्म आया बहु बेगम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम शुभ प्याग।

0: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
1: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
0: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
2: शुभ प्रयाग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिलीज किए जाएंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते, पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से

0: के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज के अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार

0: को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण। पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोकसत्ता में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill, introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in the society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
3: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: President Draupadi Murmu has given assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill was passed by Parliament on Thursday. The Act aims to curb unfair practices in public examinations by introducing stricter punishments and establishing fast-track courts. It seeks to strengthen transparency, fairness and integrity in the examination system by creating a robust legal framework while protecting the future of students. The Act includes several key provisions, including stringent penalties such as imprisonment of up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the confiscation of properties belonging to convicted offenders. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today.

गानी सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए प्यार का मौसम फिल्म के इस गीत के साथ। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को शुरू में ढाला है राहुल देव बर्मन ने।

लिजिप्सनी लता मंगेशकर का गाया गीत। ये गीत हमने लिया है जुर्माना फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: लता मंगेशकर की आवाज में जुर्माना फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में रॉकी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत राहुल देव बर्मन का था। राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा गीत। ये गीत हमने लिया है घर फिल्म से, आवाज लता।

0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
2: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
1: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: गाने सुहाने कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में स्वयंवर फिल्म का गीत। संगीत राजेश रोशन का है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गानी सुहानी। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है सजीव फॉर इन कार्यक्रम गीतांजलि।

गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी के महान उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री की पुण्यतिथि है। जी हाँ, वही देवकी नंदन खत्री जिन्हें हम हिंदी के प्रथम तिलिस्मी लेखक के रूप में जानते हैं, जिन्होंने रचना की तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता की, जो 90 के दशक में हम सभी का पसंदीदा धारावाहिक रहा है। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लिए चलते हैं जादुई दुनिया में। दोस्तों, आपने कुछ धारावाहिकों या फिल्मों में देखा होगा कि किसी किरदार के हाथ कुछ ऐसा यंत्र या गैजेट लग जाता है जिसका प्रयोग कर वह कुछ जादू कर सकता है, गायब हो सकता है या उड़ भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ऐसा कोई जादुई कालीन मिल जाए जो उड़ सकता हो, तो आप उस पर बैठकर कहाँ जाना चाहेंगे, यही विषय है आज के गीतांजलि कार्यक्रम का। 01-892-224-391 ये है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, डायल कीजिए, कीजिए हमसे बात और बताइए अपने मन की बात।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी नमस्ते।
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
0: जी नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी सिसोदिया साहब, कहिए कैसे हैं आप?
0: जी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है मुझे।
1: क्या बात है, यही जो फीलिंग है वो हमें भी हो रही है।
0: जी बताना चाहेंगे, मौसम काफ़ी अच्छा है हमारे यहाँ पर। जी रुक रुक के 3-4 दिन से बारिश हो रही है, और 1 महीने की फसल हो चुकी है अभी हमारी।
1: क्या बात है, और ये जो बारिश है ये फसलों के लिए बहुत अच्छी है।
0: हाँ जी, काफ़ी फायदा हुआ है फसलों के लिए, पानी जरूरत होता है ना, उसके मुताबिक पानी गिर रहा है यहाँ पर।
1: जी तो आज के गीतांजलि कार्यक्रम में जो विषय हमने लिया है वो आपने सुन लिया है?
0: जी आप एक बार फिर बताइएगा।
1: जी आज हिंदी के महान उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री की पुण्यतिथि है, जानते हैं इनको आप?
0: जी महान उपन्यास देवकी नंदन, आपने क्या बताया?
1: जी देवकी नंदन खत्री, कभी आपने दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था चंद्रकांता, देखा है आपने कभी?
0: हाँ जी चंद्रकांता तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन हाँ इसका सीरियल मैंने देखा तो नहीं, बस नाम सुना है।
1: जी उसका एक मशहूर डायलॉग होता था, वो आपको याद है?
0: जी बताइएगा आप।
1: यकु जी, आज हमने जो कार्यक्रम में विषय लिया है वो कुछ तिलिस्मी है। यदि आपको ऐसा कोई जादुई कालीन मिल जाए जो उड़ सकता हो तो उस पर बैठकर आप कहाँ जाना चाहेंगे ये बताइए।
0: सर मुझे अब याद आया, बिल्कुल वो चंद्रकांता से सीरियल आता था ना।
1: जी जी जी बिल्कुल
0: जी हाँ, उसमें एक कालीन पे एक जिन होता था, वो मतलब वो जिसकी भी कोई इच्छा होती थी वो पूरा करता था। हाँ मुझे बिल्कुल अभी थोड़ा थोड़ा याद आया है।
1: जी जी तो ऐसा ही कुछ
0: आपको बताओ।
1: ऐसा ही कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि यदि आपको ऐसा कोई जादुई कालीन मिल जाए तो उड़ सकता हो तो आप उस पर बैठ कर कहाँ जाना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही अच्छा कि ऐसे ज्यादा ये कालीन मिलता तो नहीं, लेकिन मिल जाए तो सबसे पहले तो मैं अपने भारत भ्रमण ही करना चाहूंगा, क्योंकि हर राज्य में जाकर हर राज्य के दर्शनीय स्थल होते हैं या ऐसे पर्यटन स्थल होते हैं, वहाँ पे देखना, उनको घूमना, उनके बारे में जानना, ये अच्छी बड़ी बात अच्छी होती है, वो बातें होती है, और मैं यही जानना चाहता था।
1: जी
0: जी लेकिन अब तो ऐसे आपको बताऊँ, कालीन की जरूरत नहीं होती है, आपको एरोप्लेन की सुविधा मिली हुई है, तो आप हर राज्य में हर जगह आसानी से पहुंच जाते हो।
1: अरे भैया सिसोदिया साहब, उसमें पैसा लगता है, कालीन तो मुफ्त में उड़ता है।
0: जी पैसे तो लगते हैं, बट आजकल पैसों से जगह सब कुछ मुमकिन होता है सर।
1: जी बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा जानकर कि आपको घूमने फिरने का शौक है और आप भारत में ही घूमना चाहेंगे सबसे पहले।
0: जी बिल्कुल जी, और मैं तो ये चाहूंगा कि कालीन मिले ना मिले एरोप्लेन से जरूर घूमूंगा मैं।
1: जी बिल्कुल, देखिए घूमना फिरना बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए भी और हमारे ज्ञान के लिए भी।
0: जी जी है बिल्कुल ना?
1: जी तो सुनते रहिए कार्यक्रम को, शुक्रिया फोन करने के लिए।
0: जी थैंक यू सो मच सर, मैं मोबाइल ऐप पर सुन रहा हूँ कार्यक्रम।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जी दोस्तों, आप भी हमें बता सकते हैं आज के इस कार्यक्रम का जो विषय हमने लिया है, यदि आपको कोई ऐसा जादुई कालीन मिल जाए जो उड़ सकता हो तो आप उस पर बैठकर कहां जाना चाहेंगे, ये आपको बताना है। 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी।
1: नमस्कार, मैं शिवेन बोल रहा हूँ लंच से।
0: जी शिवेन, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: लंच में बारिश हो रही है?
1: बारिश अभी तो नहीं हो रही, वैसे लगती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद।
0: जी, कार्यक्रम में आपने विषय सुना है आज?
1: जी।
0: तो बताइए।
1: मैं तो कश्मीर जाना चाहूंगा पहाड़ों में।
0: क्या बात है, कश्मीर में ऐसा क्या है?
1: कश्मीर तो वैसे इंडिया में बहुत सुंदर जगह मानी जाती है, वैसे उनके पहाड़ कश्मीर के बहुत सुंदर है।
0: जी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, देश विदेश सभी जगह कश्मीर जो है उसको जन्नत का दर्जा मिला हुआ है, मालूम है?
1: जी,
0: बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी जगह है, आप जाना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए शिवन, किसको साथ ले जाना चाहते हैं?
1: मैं अपने मम्मा को।
0: अच्छा, मम्मा के साथ जाएंगे?
1: जी।
0: क्या बात है, चलिए आपकी ये इच्छा जो है वो किसी ना किसी तरह पूरी हो जाए, हम तो यही दुआ करेंगे।
1: जी।
0: शुक्रिया फोन करने के लिए। सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: गीतांजलि कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार सुमित जी।
0: जी नमस्कार।
4: बड़े दिनों के बाद बात हो रही है आपसे।
0: क्या बात है, परिचय दे दीजिए फिर अपना।
4: मैं करतार चंद टेलर मास्टर बोल रहा हूँ, गांव मंगला से।
0: जी करतार जी, कैसे हैं आप?
4: बढ़िया जी, बढ़िया, कृपा भगवान की कृपा है।
0: चलिए ये कृपा यूं ही बनी रहे। थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर हट जाइए या वॉल्यूम कम कर दीजिए।
4: ठीक है जी, मैं जरा काम में बैठा हूँ ना तो।
0: अच्छा अच्छा, कैसा चल रहा है कारोबार आपका?
4: कारोबार आज थोड़ा मंदा ही है।
0: क्या बरसात के दिनों में लोग कम सिलवाते हैं कपड़े?
4: बरसात के दिनों में नहीं, आज तो रेडीमेड का ज्यादा ट्रेंड हो गया ना।
0: जी
4: रेडीमेड सस्ता आता है। तो जितने का कपड़ा होता है उतनी सिलाई होती है, तो लड़की लोग सिलाते नहीं।
0: तो चलिए आप ये बता दीजिए कि रेडीमेड में और हाथ से सिलाए हुए कपड़ों में फर्क क्या होता है?
4: रेडीमेड में और अपने कपड़ों में सिलाई हुए बहुत फर्क होता है। अपने कपड़े सिलाई की टॉर कुछ अलग होती है, रेडीमेड की अलग होती है।
0: जी, एक तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है जो अपने आप सिलवाते हैं, और दूसरा कपड़े की जो सिलाई है वो बहुत मजबूत होती है और कभी धोखा नहीं देती।
4: जी जी जी,
0: ऐसा कुछ कहना चाहेंगे?
4: रेडीमेड में तो जिप और धागा वैसे ही लगाए, वो रेडीमेड जो अच्छे ब्रांडेड हैं वो बढ़िया होते हैं ना, वो महंगे होते हैं।
0: जी
4: तो वो लोग लेते हैं, जो सस्ते होते हैं वो ले लेते हैं।
0: जी चलिए अच्छी बात है। आज किस कार्यक्रम का विषय आपने सुना?
4: हाँ जी हाँ जी, सुना, चंद्रकांता के बारे में आप बता रहे थे।
0: जी तो घूमने फिरने का शौक रखते हैं आप भी?
4: घूमना फिरना कहाँ जाना जी, हम 60 साल के हो गए हैं, घर में ही घूमते फिरते हैं, काम करते रहते हैं।
0: जी लेकिन आज का जो विषय है वो तो हमने घूमने के ऊपर ही रखा है।
4: घूमने के लिए अब उम्र निकल गई ना, अब तो घूमने की उम्र?
0: ऐसा कुछ नहीं है, घूमने की कोई उम्र नहीं निकलती है, आप जब चाहे तब वहाँ जा सकते हैं। आप देखिए पहाड़ों में आइए और यहाँ की खूबसूरती को निहारिए, आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी और आपको अच्छा भी लगेगा।
4: मैं तो धर्मशाला में काम सीखा, मैं 3-4 साल रहा हूँ वहाँ पे। धर्मशाला में बहुत घूमा हूँ मैं।
0: जी तो आज जो कार्यक्रम में हमने विषय लिया है वो है, यदि आपको कोई ऐसा जादुई कालीन मिल जाए जो उड़ सकता हो तो आप उस पर बैठकर कहीं जाना चाहेंगे?
4: आजकल कहाँ मिलेंगे कलयुग में, तो बातें ही हैं। कलयुग में तो भगवान नहीं मिलता, लेकिन भगवान की आस्था जरूर है।
0: जी देखिए, कहते हैं सच्चे मन

0: से आप तो कुछ भी चाहें आपको मिल सकता है। और
1: नहीं,
0: यदि
1: बच्चा मन से रखना पड़ता है ना।
0: जी जी जी तो लगता है आप विषय पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, तो चलिए बातचीत को विराम देते हैं। शुक्रिया फोन करने के लिए करतार जी।
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सजीव फोरिन कार्यक्रम की तांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो
4: हेलो
0: जी,
4: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार,
4: मैं गग्गर से प्रमोद कुमार बोल रहा हूँ।
0: जी प्रमोद जी, रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए या उससे थोड़ा दूर हट जाइए, क्योंकि आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, आप ऐसा ना करें कृपया।
4: अगर मुझे जादुई क्लीन मिले पहले तो मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, लेकिन उसके लिए तो इतनी बड़ी वस्तु का होना जरूरी नहीं है। आप तो अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए आप
4: अपने घर में।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है।
4: हाँ जी,
0: मतलब मुफ्त में घूमना चाहते हैं आप।
4: बाकी जो डॉक्टर बोल दिया आपने मरीज को लाने में देर कर दी, पहले उनको जाऊँ हॉस्पिटल।
0: क्या बात है, मतलब लोगों के बारे में भी आप सोच रहे हैं।
4: जी सर जी, अगर चीज है तो लोगों के बारे में सोच रहे हैं।
0: जी देखिए,
4: हमारे पास अगर दो पैसे हैं तो हम लोगों की मदद भी करें।
0: बहुत सही बात आपने की है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है तो उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमें यही सोचना चाहिए कि सदुपयोग किस तरह से किया जाए।
4: बिल्कुल सर, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, लोगों के बारे में सोचो।
0: लेकिन पहले आपने अपने बारे में सोचा है?
4: नहीं, वो तो आपसे मिलने को बोला।
0: चलिए, हमसे तो आप कभी भी मिल सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं है।
4: नहीं सर, बस में नहीं, जादुई क्लीन में आना है।
0: क्या बात है,
4: और हमें उम्मीद है आप जरूर दिलाएंगे हमें, क्योंकि आपने विषय शुरू किया और आप ही दिलाएंगे।
0: जी देखिए, आज तो हम जादुई दुनिया में घूम रहे हैं, क्योंकि आज एक बहुत ही महान उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री की पुण्यतिथि है।
4: सर अभी आपने पहले बात की थी।
0: जी
4: बहुत मुबारक हो आपको भी और सभी।
0: जी ये मुबारक का विषय तो नहीं है, लेकिन चलिए आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रकांता सीरियल जो आता था दूरदर्शन पर एक जमाने में, उसके बहुत से फैन हुआ करते थे। हम भी उस सीरियल को बहुत पसंद किया करते थे।
4: फैन उसको लोग वो बोले यकू।
0: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना। और देखिए, आप तो व्यवसाय करते हैं और कई बार बहरूपी आते हैं बाजार में वेश धारण करके, कोई भी, तो उस किरदार का वेश धारण करके भी कभी कोई आया है आपके पास?
4: हाँ बहुत आते सर।
0: आते हैं
4: वो भी, यकू भी बोलते हैं कई है।
0: जी बिल्कुल उसी अंदाज में।
4: हाँ जी, हाँ जी
0: जी, और कुछ कहना चाहेंगे प्रमोद जी?
4: बस सर, आपके बात होगी बहुत अच्छा लगा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। शुक्रिया फोन करने के लिए।
4: थैंक यू।

सजीव फोन इन कार्यक्रम की तांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम अभी जारी है। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 9:30 पर। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को अपनी गलतियों से सीख लेकर आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का किया आह्वान। किन्नौर के शिवकिला से भारत और तिब्बत के बीच 7 वर्षों के बाद आज फिर से व्यापार होगा शुरू। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले को बताया लोक संस्कृति व पुरानी परंपराओं का जीवंत प्रतीक। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत ऊना शहर के पात्र 117 लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने के लिए मिलेगी 2,93,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, आज 3 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण व राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे युवाओं को अदालती कार्यवाही में घसीटने या सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बनाने के बजाय समाज को उन्हें अपनाना चाहिए और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे अपनी गलतियों से सीखने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। शांडिल ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए इन्हें तय समय में पूरी करने को भी कहा। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। किन्नौर के शिपकिला से भारत और तिब्बत के बीच 7 वर्षों बाद आज से व्यापार शुरू हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद बंद हुए व्यापार को बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगली पहले चरण में करीब 17 व्यापारियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नामग्या पंचायत के प्रधान ने कहा कि भारत और तिब्बत सीमा व्यापार से स्थानीय व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे।
2: प्रधान ग्राम पंचायत नामग्या, वर्ष 2019 में कोविड-19 महामारी के चलते हमारा जो ये इंडो चाइना ट्रेड का जो व्यापार चलता था वो इस बीमारी के कारण ये बंद हो गया था और अब ये पुनः शुरू होने जा रहा है और ये बड़ी हर्ष की बात है। हमारे लगभग 17 व्यापारी एक उधर ट्रेड के लिए जा रहे हैं। भारत से लगभग 36 आइटम है जो हम ले जा सकते हैं।

0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला जिले की लोक संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और सदियों पुरानी परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। कल शाम मेले की छठी सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि ये मेला जहां अपनी सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाता है, तो वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और कारोबारियों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित करता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत धर्मशाला थाना क्षेत्र में करीब 750 ग्राम चिट्टा के साथ पंजाब निवासी 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर ने बताया कि NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक माह के दौरान NDPS एक्ट के तहत 21 मामले दर्ज कर 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 8 बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। वीर बहादुर ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: 7.5 ग्राम हेरोइन चिट्टे के साथ पंजाब का रहने वाला 20 वर्षीय युवक है और इसमें इसको अरेस्ट किया गया है। फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई जा रही है। जांच में ये सामने आया है कि ये जो चिट्टा हेरोइन है पंजाब से लाया गया था। पिछले एक महीने में 250 ग्राम से अधिक चिट्टा और करीब 2.5 किलो चरस विभिन्न मामलों में सीज करी गई है। एंटी ड्रग्स ये अभियान है, तो अभी पुलिस की जो कार्रवाई है, चाहे वो थाना स्तर पर है, चाहे हमारी CA टीम है जो अवैध तस्करी करते हैं, सेवन करते हैं, उनके खिलाफ लगातार जारी है और ये भविष्य में भी कार्रवाई आगे जारी रहेगी।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,411 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चरण 2 के तहत गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जा रही है। ऊना जिला में योजना के तहत पहले चरण में 117 पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने की मंजूरी दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
3: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ऊना नगर निगम क्षेत्र के पात्र परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नगर निगम के आयुक्त प्रतिपाल सिंह ने बताया कि योजना के प्रथम चरण के तहत 117 पात्र लाभार्थियों को पक्के मकानों का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन्हें कुल 2,93,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 2,50,000 रुपए की सहायता राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे पात्र परिवार यूनिफाइड वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है, उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है तथा उनके नाम शहरी क्षेत्र में स्वयं की भूमि उपलब्ध है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: लाहौल स्पीति जिले में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजाति मेले में इस बार व्यापारियों और पर्यटकों के लिए बड़ी राहत दी गई है। उपायुक्त व जनजातीय मेला समिति की अध्यक्ष किरण बड्डाना ने कहा कि पुलिस ग्राउंड केलंग में लगाए जाने वाले सभी व्यापारिक स्टॉल अब केवल 14 से 16 अगस्त तक ही नहीं बल्कि 24 अगस्त तक संचालित रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि ये निर्णय दूर दराज क्षेत्रों और देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले व्यापारियों, हस्तशिल्पियों व उद्यमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। वहीं विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से बंद पड़ी कई सड़कों को खोलने का कार्य भी जारी है। इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग ने 500 से अधिक मशीनरी तैनात की है। मौसम विभाग ने आज 3 जिलों चंबा, कांगड़ा व मंडी में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों व मौसम संबंधी चेतावनी का पालन करने की सलाह दी है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार

0: पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मॉनसून सत्र से पहले सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। दैनिक भास्कर की एक खबर है, 6 साल बाद आज से शुरू होगा शिपकिला से तिब्बत व्यापार। मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है, मौसम ने ली डॉक्टर समेत 3 की जान, मनाली में बादल फटने से बागीचे बहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को अपनी गलतियों से सीख लेकर आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का किया आह्वान। किन्नौर के शिपकिला से भारत और तिब्बत के बीच 7 वर्षों के बाद आज से फिर व्यापार होगा शुरू। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले को बताया लोक संस्कृति व पुरानी परंपराओं का जीवंत प्रतीक। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत टूना शहर के पात्र 117 लाभार्थियों को पक्के मकान बनाने के लिए मिलेगी 2,93,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, आज 3 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सजीव फोन इन है और आज इस कार्यक्रम में जो विषय हमने लिया है वो है, यदि आपको कोई ऐसा जादुई कालीन मिल जाए जो उड़ सकता हो तो आप उस पर बैठकर कहां जाना चाहेंगे। 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। और एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो
4: हेलो, नमस्कार सर।
3: जी नमस्कार, कहां खो जाते हैं फोन मिला करके।
4: नहीं, यही सर, मैं राकेश गुप्ता दारी से बोल रहा हूं।
3: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
4: ठीक है सर, बहुत बढ़िया। पहले तो मैं चंद्रकांता जी के उपन्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। मैं
3: जी बिल्कुल दीजिए।
4: हाँ जी, ये देवानंद खत्री जी का सर पहला उपन्यास था जो
3: देवकीनंदन खत्री जी,
4: हाँ देवकीनंदन जी का, जो 1888 में प्रकाशित हुआ था सर ये। और सर कहते हैं कि उस टाइम इसको इतना प्रसिद्ध हुआ था कि इसको पढ़ने के लिए लोगों ने देवनागरी हिंदी सीखी थी सर।
3: जी बिल्कुल।
4: हाँ जी हाँ जी, तो उस टाइम इतना प्रसिद्ध हुआ था कि हिंदी लोग जो हिंदी नहीं जानते थे लोगों ने हिंदी सीखना शुरू की, उसके बाद इसको पढ़ने शुरू किया था
3: जी। और देखिए ये जो देवकी नंदन खत्री साहब थे ये पहले तिलिस्मी उपन्यासकार थे।
4: हाँ जी हाँ जी, और सर इनके और भी उपन्यास हुए, इनमें से एक और बहुत प्रसिद्ध था वो अनूठी बेगम भी इनका उपन्यास था सर, जो 1905 में प्रकाशित हुआ था सर, वो भी इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा हुआ था
3: जी। आपने ये सब पढ़े हैं?
4: नहीं सर, थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं सर।
3: जी जी जी
4: जानकारी रखते थे ना
3: जी। चलिए तो विषय पर आ जाते हैं, अब बताइए विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे।
4: विषय के बारे में सर, जैसे आपने बताया कि वो कालीन मुड़ने वाला मिल जाए हम, तो मैं सबसे पहले सर अमरनाथ की यात्रा करना चाहूंगा सर।
3: क्या
4: क्योंकि मैं वहाँ में गया नहीं हूँ अभी तक, मेरे को मौका नहीं मिला जाने का, तो वहाँ जाएंगे तो बड़े आराम से चला जाऊंगा सर मैं
3: जी। और देखिए धार्मिक आस्थाओं से आप जुड़े हैं, सावन का महीना भी चल रहा है और भोलेनाथ के दर्शन आप करना चाहते हैं उस कालीन पर बैठ कर। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राकेश गुप्ता जी। इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग और यूं ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: कार्यक्रम है गीतांजलि।
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार।
1: मेरे को सबसे पहले आपकी आवाज बहुत मीठी लगती है सर
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा आप बोल रहे हैं, परिचय दीजिए।
1: मैं देशराज बोल रहा हूँ, पालमपुर और पंचायत बिठवाई गड़ेला विलेज
0: जी। क्या करते हैं आप?
1: मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ वो 2019 में
0: जी।
1: तो मैं आपकी आवाज को देखकर बहुत खुश होता हूँ जब आप बोलते हैं
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका प्रेम है।
1: हाँ जी।
0: कहिए, आज जो कार्यक्रम में विषय हमने लिया है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे?
1: सर मेरे को ये चीज मिल जाए तो मैं अपने परिवार को लेकर सारी दुनिया घूमूंगा।
0: सारी दुनिया घूमेंगे?
1: हाँ, सारी दुनिया घूमूंगा
0: जी। तो ऐसा मतलब आपने कुछ सोचा भी है कि सारी दुनिया में कौन कौन से ऐसे विशेष स्थान है जहाँ पहले जाना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो पहले मैं कश्मीर में जाऊंगा सर
0: जी।
1: फिर राजस्थान में जाऊंगा, चित्तौड़गढ़ जाऊंगा। फिर जहाँ पर वो ब्रह्मा का मंदिर है
0: पुष्कर,
1: वहां पर जाऊंगा, पुष्कर धाम
0: जी।
1: उसके बाद पूरे इंडिया में घूमूंगा सर, साउथ अफ्रीका भी जाना चाहता हूँ, वहाँ बहुत गरीबी है
0: जी,
1: वहाँ भी देखना चाहता हूँ।
0: तो यानी शुरुआत जो है वो आप अपने भारत से ही करना चाहेंगे और उसके बाद ही भारत से बाहर जाएंगे?
1: हाँ जी हाँ जी, पहले शुरुआत अपने देश से करूंगा सर। उसके बाद फिर पूरी कंट्री को घूमकर उसके बाद विदेश में जाऊंगा
0: जी। और देसरा जी, आप हिमाचल के रहने वाले हैं और हिमाचल अपने आप में बहुत खूबसूरत स्थान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हिमाचल में आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं अभी तक?
1: हिमाचल में शिमला घूम

0: हूँ, किन्नौर घूमा हूँ।
1: उसके
0: बाद मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में जाया हूँ मैं, बस सिलौन स्पीति नहीं गया हूँ, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट घूमे हैं मैंने।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो कौन सी जगह आपको अच्छी लगी है अभी तक?
0: सर मेरे को चंबा बहुत अच्छा लगता है, आजकल तो वहां पर मिंजर का मेला लगा हुआ है।
1: तो आपने ये मेला देखा है कभी?
0: देखा तो एक बार देखा था, मैं पहले बड़े छोटा था तब देखा, अभी नहीं देखा हूँ।
1: जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और आपसी सौहार्द का प्रतीक है ये मेला।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा मेला होता है, बहुत ही अच्छा देखा
1: जी। और कुछ कहना चाहेंगे?
0: और कहना, देश को वे आजकल जो लोगों को या बच्चों को जो नशे की आदत पड़ गई है, मैं इससे बहुत दुखी होता हूँ। मैंने 32 साल हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी की है, लोगों को बहुत समझाता था, मेरा भी एक ड्यूटी थी, मेरे MPW था, मैं उसके बाद सुपरवाइजर बन गया, तो मैं लोगों को बहुत समझाता था, लेकिन लोग आजकल जनरेशन नहीं मानती है सर
1: जी। चलिए कोई बात नहीं, हर कोई अपने हिसाब से चलना चाहता है, हम भी अपने हिसाब से चलना चाहते हैं कई बार। आपने अपने कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।
0: ठीक है सर, धन्यवाद।
1: जी हाँ दोस्तों, आप भी हमें फोन कर सकते हैं 01892224391, ये है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। कार्यक्रम में जो विषय आज हमने लिया है, यदि आपको ऐसा कोई जादुई कालीन मिल जाए जो उड़ सकता हो तो आप उस पर बैठकर कहां जाना चाहेंगे, ये बताने के लिए एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हेलो नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार जी। नमस्कार
1: जी। नमस्कार आपको भी, कहिए कौन साहब बोल रहे हैं?
2: जी मैं धर्मशाला से बोल रहा हूँ।
1: धर्मशाला से कौन सा बोल रहे हैं, नाम बताइए।
2: मैं अनिल हूँ जी।
1: अनिल जी।
2: जी जी
1: जी अनिल जी, क्या करते हैं धर्मशाला में रहकर?
2: सर मैं कोई विशेष नहीं, ऐसे जैसे घूमता फिर रहा हूँ
1: जी।
2: घूमने फिरने का काम है मेरा।
1: घूमने फिरने का है, क्या बात है। और आज जो हमने विषय रखा है वो भी घूमने फिरने से ही संबंधित है।
2: जी जी जी
1: जी, कहिए, आ जाइए विषय पर।
2: विषय तो आपका बहुत ही सुंदर, पहले तो मैं आपकी एक अप्रिशिएट करूंगा आपको, आज जो सुबह सुबह जो आपने दोस्त संगीत सुनाए मुझे, पहला और लास्ट में, पहला और जो अंतिम था ना, बड़ा दोनों ब्यूटीफुल थे, सुंदर थे, दोनों ही शास्त्रीय संगीत के क्लासिकल बेस पे थे।
1: क्या बात है, यानी आप शास्त्रीय संगीत का ज्ञान रखते हैं।
2: जी जी जी
1: जी,
2: तो वाकई में वो जो संगीत आपका अप्रिशिएट करने वाला है, वैसे तो संगीत आपका सबका अच्छा, सब अच्छे होते हैं, पर ये बोलूंगा कि मतलब कि जो जो क्लासिकल बेस होता है बड़ा इसी मतलब एक सब मिश्रण होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है
1: जी। बिल्कुल
2: लंबी होती है
1: जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। और देखिए क्लासिकल जो है वो तो भारतीय संगीत की जान है ना।
2: जी जी जी जी
1: जी, तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे, गुनगुनाना चाहेंगे कुछ थोड़ा सा?
2: नहीं नहीं, गुनगुना तो नहीं सकता मैं, पर ये जो आपका विषय है उसको कुछ थोड़ा बोलना चाहूंगा।
1: जरूर जरूर बोलिए।
2: वैसे तो आपका विषय अच्छा है, पर ये हर लोगों ने अपनी डिमांड रखी है
1: जी।
2: मुझे को ऐसी जो आप बोले को ऐसी अद्भुत वस्तु मिल जाए जिसके दौरान मैं कहीं जा सकूं, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं उस प्रभु के पास जाना चाहूंगा जिस प्रभु ने इतनी प्यारी सत्ता बनाई है ना, इस प्यारी जो सत्ता का निर्माण किया है उसको देखना चाहूंगा
1: जी।
2: कितना सुंदर, इतनी सुंदर सत्ता बनाई है, इतनी सुंदर जो ब्रह्मांड बनाया है उसको देखना चाहूंगा वो कैसा है
1: जी। आपकी बातों से ऐसा लगता है आप अध्यात्म से भी बहुत अधिक जुड़े हैं
2: जी।
1: जी चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई
2: जी। मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही, मैं आज मेरे को महसूस हुआ कि मेरा आज का जो दिन है ना वो बन गया है।
1: क्या बात है। और देखिए हम यही चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया फोन करने के लिए कार्यक्रम में। सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

0: संगीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आज का ये कार्यक्रम सजीव फोन इन है। 01892224391 यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो हेलो जी, सुन पा रहे हैं हमें या नहीं? हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार, बोल नहीं रहे हैं आप, क्या बात है?

0: ये सर धर्मशाला आर्ट म्यूजियम से।
1: जी, तो कब से आप कर रहे हैं ये कार्य?
0: ये सर लगभग 20-22 वर्षों से कर रहा हूँ मैं काम।
1: जी, तब तो आप इसमें पारंगत होंगे इस वक्त,
0: जी सर, जी सर,
1: सिखाते भी हैं,
0: जी सर,
1: तो हम कब आ जाएं सीखने के लिए?
0: जब मर्जी सर, जब मर्जी आओ, वेलकम सर, वेलकम।
1: जी, अच्छा ये बताइए राजीव कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: ये सर मुझे बचपन से ही शौक था इसमें, और मेरे बुआ के लड़के हैं जो इसमें काफी महारत हासिल की है उन्होंने, तो वो धर्मशाला म्यूजियम में एज ए आर्टिस्ट जॉब कर रहे हैं, तो मैंने उनकी ये प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है।
1: जी, तो ऐसा क्योंकि कांगड़ा पेंटिंग ही आपने चुनी है,
0: जी सर,
1: ऐसा क्या रहा?
0: सर मुझे बचपन से ही उनको देखता था तो मुझे काफी शौक था इसमें, और बहुत अच्छा लगता था, जैसे इसमें राधा कृष्ण जी की पेंटिंग होती है तो
1: जी,
0: उनको देख के ही मतलब बहुत अच्छा महसूस होता था।
1: तो कभी आपने एग्जीबिशन भी लगाई है इसकी?
0: जी सर, पूरे ऑल इंडिया में लगाई हुई।
1: लगाई है, क्या बात
0: जी
1: है,
0: सर, जी सर,
1: चलिए अच्छी बात है। और अब विषय पर आ जाते हैं,
0: जी सर, जी
1: सुन रहे हैं कार्यक्रम को शुरू से,
0: सर, जी सर, बिल्कुल सर,
1: तो बताइए
0: ये
1: क्या
0: तो
1: कहना
0: बहुत ही
1: चाहेंगे?
0: अच्छा आपका विषय है आज, बहुत अच्छा लगा मुझे। जब बचपन से हम लोग चंद्रकांता देखते थे तो काफी अच्छा लगता था।
1: जी,
0: जी, तो
1: तो अब बताइए फिर।
0: सर, सर मुझे तो जब ये कालीन मिलेगा तो सबसे पहले तो मैं फैमिली के साथ ये धौलाधार की सैर करूंगा।
1: जी,
0: जी,
1: धौलाधार की सैर
0: सर,
1: करना चाहेंगे आप?
0: जी, सर,
1: पहाड़ों से बहुत प्रेम है आपको,
0: जी सर, जी सर।
1: क्या बात है। और इसके अलावा कहीं जाना चाहेंगे?
0: इसके अलावा सर, जैसे अपने आइलैंड होते हैं, जैसे कहीं पे आदमी वहां पे जा नहीं सकता है, हमने जैसे फोन पे देखते हैं कि ऐसे ऐसे आइलैंड है जहाँ पे आदमी जा ही नहीं सकता है, तो मैं कुछ लोग जो है भ्रष्टाचारी लोग हैं, मैं उनको बिठा के वहां पे छोड़ आऊंगा।
1: क्या बात है। और देखिए, ऐसी जगह पर खतरा होता है जहां पर कोई नहीं जा सकता, है ना?
0: तभी सर अपना देश की तरक्की होगी ना।
1: चलिए, अच्छी बात है, आपके विचार जानकर के अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए, और इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। हम उम्मीद करते हैं आप कार्यक्रम में दोबारा भी फोन करेंगे।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल,
1: जी, शुक्रिया फोन करने के लिए। जी दोस्तों, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं 01892224391, यह है स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। विषय है, यदि आपको कोई ऐसा जादुई कालीन मिल जाए जो उड़ सकता हो, तो आप उस पर बैठकर कहाँ जाना चाहेंगे? एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, लगता है फ़ोन कॉल कट चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे कार्यक्रम में अगले श्रोता का। हेलो, हेलो जी, लगता है हमें सुन नहीं पा रहे हैं आप। कोई बात नहीं, जब तक कोई अन्य श्रोता हमसे जुड़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार,
1: विनोद बोल रहा हूँ जी।
0: विनोद जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं रैत से बोल रहा हूँ जी।
0: जी क्या करते हैं विनोद भाई?
1: जी मेरा अपनी जयंती जनरल स्टोर के नाम से दुकान है जी।
0: क्या बात है, और कैसे चल रहा है कारोबार?
1: ठीक है, बढ़िया है जी।
0: बढ़िया है, चलिए बढ़िया ही चलना चाहिए, और क्योंकि आप हमारे श्रोता हैं तो आपका तो वैसे भी अच्छा चलना चाहिए, है ना?
1: जी जी
0: जी कहिए, आज विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
1: विषय तो आपने जैसे इसमें रखा है कि जहां आपको घूमने का मौका नहीं मिला तो वहां जाएंगे तो क्या करेंगे आप,
0: अच्छा
1: ऐसा ही है?
0: ऐसा है
1: नहीं, विषय यही है ना जी।
0: जी ये तो नहीं है, विषय तो है यदि आपको कोई ऐसा जादुई कालीन मिल जाए। आपने देखा है कभी किसी कहानी में पढ़ा हो या किसी टीवी सीरियल में देखा हो, किसी फिल्म में देखा हो?
1: बहुत सारे दिखते हैं जी, बचपन से देखते
0: जी
1: हैं।
0: तो ऐसा कोई जादुई कालीन आपको मिल जाए?
1: तो देखते ही हैं जी, सपने में भी हम वैसे जादुई चीजों में घूमते रहते हैं जी।
0: जी जी, तो वही जादुई, वही तिलस्मी बातें आज हम कार्यक्रम में कर रहे हैं। कोई ऐसा जादुई कालीन आपको मिल जाए जो उड़ सकता हो, तो आप उस पर बैठकर कहाँ जाना चाहेंगे, ये हम जानना चाहते हैं आपसे।
1: तो ऐसा है जी, मुझे लगता है कि हमारे जो भारत है वो इससे सुंदर जगह तो और कहीं मिल नहीं सकती ना जी।
0: जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है ये
1: जी। तो मुझे वैसे तो सबसे सुंदर जगह लगती है अपने पहाड़ी इलाके जी। और मुझे लगता है कि अपने पहाड़ी इलाके में कहीं भी जो बहुत सुंदर जगह हो वो हम कालीन को ही बोल देंगे जी, मुझे वहां पहुंचा दे जहां अच्छा। बहुत सुंदर जगह है
0: जी। ऐसा तो नहीं मानेगा कालीन, लेकिन आपको उसको यही कमांड देनी होगी कि हमें इस जगह पर ले जाओ, तभी वो ले जाएगा आपको। तो ये तो आपको ही तय करना है। देखिए चीटिंग नहीं चलेगी।
1: तो ऐसा कह सकते हैं जी, जैसे हमारा, जैसे कहते हैं कश्मीर में हमारा मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं जी उसको ना जी।
0: जी
1: तो हम कश्मीर में ही जाना पसंद करेंगे जी।
0: जी देखिए, हमारे बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो कश्मीर ही जाना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर वाकई बहुत सुंदर है, और किसी ने कहा भी है कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है।
1: जी जी
0: जी, तो क्या करेंगे वहां जाकर, ये भी बता दीजिए।
1: ऐसा है जी, जो कुदरत का आनंद है वही लेंगे, प्रकृति से तो बढ़कर कुछ नहीं है जी। क्योंकि जैसे कि बताते हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है जी।
0: जी
1: उसमें भी हमारा प्रकृति ही उसमें सभी इन्वॉल्व है ना जी। और उसका ही आनंद लेंगे जी।
0: जी चलिए आप आनंद लीजिए, और अब कार्यक्रम में समय हमारे पास समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए। जी दोस्तों, बहुत से श्रोताओं के फोन आज इस कार्यक्रम में हमें आए, और उनके मन की बातों को हमने जाना कि वो कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं जादुई कालीन पर बैठकर। अब इस कार्यक्रम का समय हुआ जाता है, चलते चलते आपको बता दें इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुरेंद्र कपूर ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल।

अभी आप सुन रहे थे सुसी फोनिन कार्यक्रम गीतांजलि एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब वक्त है गीतों का कारवां कार्यक्रम का। सभी श्रोताओं का गीतों का कारवां कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।

श्रोताओं, आज का कार्यक्रम लेकर आई हूँ आपकी रेडियो दोस्त एकता। हर गीत श्रोताओं अपने साथ लेकर आता है यादों की खुशबू, भावनाओं की मिठास और सुरों का अनमोल सफ़र। तो आइए आज हम भी निकल पड़ते हैं ऐसे ही सुरीले कारवां के साथ, जहाँ हर धुन आपके दिल को छू जाएगी और हर नगमा आपकी यादों को फिर से तरोताज़ा कर देगा। तो आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत अदनान सामी के संगीत निर्देशन में।

अभी ये गीत सुना आपने फिल्म लक्की से, और इस गीत को गाया था अदनान सामी ने और शब्द रचना थी समीर की। कार्यक्रम में अगला गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म मन से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। संगीतकार हैं संजीव दर्शन और गीतकार समीर।

गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब आपके रेडियो सेट पर है फिल्म मुझे कुछ कहना है का ये गीत।

इस गीत को गाया है पिंकी प्रीति और बाबुल सुप्रियो ने। गीत को लिखा है समीर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: लीजिए, अब आपके रेडियो सेट पर है अगला गीत फिल्म हम तुमसे, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और शान ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने और इस गीत को लिखा है परसून जोशी ने।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जाँच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जाँच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जाँच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: लीजिए, विज्ञापन के बाद आपके रेडियो सेट पर है फिल्म हम तुम का ये गीत।

श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी यादों और भावनाओं का खूबसूरत सा साथी है। तो आइए संगीत के इस सुहाने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके रेडियो सेट पर प्ले कर रहे हैं, फिल्म जहर से। और इस गीत को गाया है आतिफ असलम ने और सईद कुरैदी के शब्दों को सुरों में पिरोया है मिथुन ने।

श्रोताओं, आज के गीतों का कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है इन मधुर गीतों ने आपके दिन को और भी खूबसूरत बना दिया होगा। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में नए तरानों के साथ। अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे गीतों का कारवां FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम में पहला लोकगीत शामिल कर रहे हैं सोना और सखियों का गाया हुआ।

पहाड़ों के सुर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम में अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं वर्षा कटोच का गाया हुआ।

ये खूबसूरत सा लोकगीत सुना आपने शेर सिंह का गाया हुआ। कार्यक्रम में अगला लोकगीत शामिल कर रहे हैं शशि शर्मा और सखियों की आवाज़ों में।

पहाड़ों के सुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं किशोर धीमान और पवन डोगरा का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री

0: कल 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देशभर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित भी करेंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत शिमला जिला के माय भारत स्वयंसेवक, एनएसएस, युवा क्लबों के सदस्यों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी प्रधानमंत्री के संबोधन के लाइव प्रसारण में भाग लेंगे। नशा मुक्त युवा अभियान 100 सप्ताह तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है और इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत हर रविवार को युवाओं के नेतृत्व में जागरूकता अभियान, सामुदायिक रैलियां और नशे की लत के खिलाफ शपथ लेने जैसी गतिविधियां शामिल है। राज्य सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत 234 करोड़ रुपए के 2 प्रमुख औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि नालागढ़ के मंझौली औद्योगिक क्षेत्र में करीब 154 करोड़, जबकि ऊना जिला के टहलीवाल के समीप बीटन औद्योगिक क्षेत्र में 80 करोड़ रुपए की लागत से प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। किन्नौर के शिपकिला से भारत और तिब्बत के बीच 7 वर्षों बाद आज से व्यापार शुरू हो रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण बंद हुए व्यापार के बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी पहले चरण में करीब 17 व्यापारियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नामग्या पंचायत के प्रधान ने कहा कि भारत और तिब्बत सीमा व्यापार से स्थानीय व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे।
1: प्रधान ग्राम पंचायत नामग्या, वर्ष 2019 में कोविड-19 महामारी के चलते हमारा जो ये इंडो चाइना ट्रेड का जो व्यापार चलता था वो इस बीमारी के कारण ये बंद हो गया था और अब ये पुनः शुरू होने जा रहा है और ये बड़ी हर्ष की बात है। हमारे लगभग 17 व्यापारी एक उधर ट्रेड के लिए जा रहे हैं। भारत से लगभग 36 आइटम है जो हम ले जा सकते हैं।
0: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत धर्मशाला थाना क्षेत्र में करीब 750 ग्राम चिट्टा के साथ पंजाब निवासी 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीर बहादुर ने बताया कि NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 माह के दौरान NDPS के 21 मामले दर्ज कर 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 8 बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं।
2: 7.5 ग्राम हेरोइन चिट्टे के साथ पंजाब का रहने वाला 20 वर्षीय युवक है और इसमें इसको अरेस्ट किया गया है। फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई जा रही है। जांच में ये सामने आया है कि ये जो चिट्टा हेरोइन है पंजाब से लाया गया था। पिछले 1 महीने में 250 ग्राम से अधिक चिट्टा और करीब 2.5 किलो चरस विभिन्न मामलों में सीज करी गई है। एंटी ड्रग्स ये अभियान है। तो अभी पुलिस की जो कार्रवाई है, चाहे वो थाना स्तर पर है, चाहे हमारी CA टीम है जो अवैध तस्करी करते हैं, सेवन करते हैं, उनके खिलाफ लगातार जारी है और ये भविष्य में भी कार्रवाई आगे जारी रहेगी।
0: कुल्लू जिला के ओल्ड मनाली स्थित क्लब हाउस के समीप कल रात एक वाहन के मनालसू नाले में गिरने से इसमें सवार 2 व्यक्तियों की मृत्यु होगी, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। घायलों का मनाली अस्पताल में उपचार चल रहा है। मृतकों में एक मंडी जिले के नगवाई जबकि दूसरा व्यक्ति कुल्लू जिला के बजौरा से संबंध रखता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। इस बीच मनाली स्थित माल रोड के समीप एक निजी होटल में देर शाम आगजनी की एक घटना में करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान आंका गया है। हालांकि घटना में किसी भी जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। लाहौल स्पीति जिले में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजाति मेले में इस बार व्यापारियों और पर्यटकों के लिए बड़ी राहत दी गई है। उपायुक्त व जनजाति मेला समिति के अध्यक्ष किरण भडाना ने कहा कि पुलिस ग्राउंड केलंग में लगाए जाने वाले सभी व्यापारिक स्टॉल अब केवल 14 से 16 अगस्त तक ही नहीं बल्कि 24 अगस्त तक संचालित रहेंगे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। वहीं विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से बंद पड़ी कई सड़कों को खोलने का कार्य भी जारी है। इस कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग ने 500 से अधिक मशीनरी तैनात की है। मौसम विभाग ने आज 3 जिलों चंबा, कांगड़ा व मंडी में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:00 PM। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम में पहला लोकगीत शामिल कर रहे हैं धीरज शर्मा का गाया हुआ।

अभी ये शिव भजन सुना आपने धीरज शर्मा का गाया हुआ। कार्यक्रम में अगला लोकगीत शामिल कर रहे हैं प्रेम सिंह और साथियों की आवाज़ों में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आपने ट्यून किया है FM धर्मशाला और कार्यक्रम है पहाड़ों की गूंज। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए विद्या चोपड़ा का गाया ये लोकगीत।

0: बलवीर सिंह की आवाज़ में अभी ये लोकगीत सुना आपने। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं ये विज्ञापन।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: गूंज पहाड़ों की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं पूनम शर्मा और सपना कुमारी का गाया ये लोकगीत।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है जय हिंद गीतमाला। जय हिंद गीतमाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को एकता का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से देशभक्ति गीत के साथ।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आपने ये देशभक्ति की सुना फिल्म बॉर्डर से, और इस गीत को गाया था सोनू निगम, रूप कुमार राठौर और साथियों ने। कार्यक्रम में अगला देशभक्ति गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म तिरंगा से।

अभी ये देशभक्ति गीत आपने सुना वी पराग, तनिष्क बागची और साथियों का गाया हुआ। जय हिंद गीतमाला आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में एलओसी कारगिल का ये गीत।

जय हिंद गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं सुवदेश फिल्म से ये देशभक्ति गीत। इस देशभक्ति गीत को गाया है ए आर रहमान ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में कर्मा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: सुखविंदर सिंह की आवाज में कच्चे धागे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार नुसरत फतेह अली खान।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

जीने नहीं दूंगा। इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में हातिम ताई फिल्म का ये गीत। बोल हसन कमाल के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है।

अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज का गाया गीत अभी आपने सुना। हमें खेद है ये गीत आप ठीक से नहीं सुन पाए। इसी गीत के साथ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो सखी।

रिश्तों की मिठास, सपनों की उड़ान आपके जीवन के हर रंग को समेटे। आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी लेकर हाजिर हैं स्टूडियोज में। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगी अपनी रेडियो सखी एकता के साथ। आप सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सखियों, आज है 1 अगस्त और आज हम श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी, समाज सुधारक और पत्रकार बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि को। जी, 23 जुलाई

सन 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी में जन्मे लोकमान्य तिलक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। उनका अमर प्रसिद्ध उद्घोष आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सखियों, ये केवल एक नारा ही नहीं था बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरक शक्ति बन गया। उनके समाचार पत्र केसरी और मराठा ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। सखियों, 1 अगस्त सन 1920 को इनका निधन हुआ, लेकिन इनके विचार और आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि साहस, आत्मसम्मान, शिक्षा और राष्ट्रभक्ति के बल पर हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सखियों, ये तो बात हुई लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि की। अब कार्यक्रम में बात करते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह की, जो हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य माता और परिवारों को स्तनपान के प्रति जागरूक करना है। सखियों, स्तनपान केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के लिए भी बहुत ही लाभकारी है और माँ बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध भी ये मजबूत बनाता है। आप तो जानती ही हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भी शिशु को जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान करवाना चाहिए और पहले 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का ही दूध देना चाहिए। पर बहुत बार हम सोचते हैं कि अभी 6 महीने तक माँ का दूध ही कैसे देंगे, इसे पानी दे दिया जाए या कुछ और दे दिया जाए। तो सखियों, माँ के दूध में संपूर्ण आहार जो है माँ का दूध माना जाता है और ये बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। सखियों, माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये बच्चे को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। आइए आज हम मिलकर ये संकल्प लें कि हर नवजात माँ को जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने का हक मिले और हर माँ जो है अपने नवजात शिशु को 6 महीने तो माँ का दूध पिलाए ही और साथ ही 2 साल तक पूरक आहार के साथ साथ माँ का दूध दे। हर माँ को इसके लिए सही जानकारी और सहयोग भी मिले, यही हमारे समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सखियों, जानकारी के साथ साथ कार्यक्रम में मनोरंजन के सफर को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम आरोग्यम संबंधी जरूरी सूचना। श्रोताओ, इस रविवार दिनांक 2 अगस्त 2026 को सुबह 9 से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा हर्निया, कारण, लक्ष्य और बचाव से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियोज में उपस्थित डॉक्टर गौरव गुप्ता जनरल सर्जन से पूछ सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी धर्मशाला के FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 2 अगस्त 2026 समय सुबह 9 से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 0189222431। फ़ोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 2 अगस्त 2026 सुबह 9 से 10 बजे FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो सखी। तो श्रोता सखियों, कहते हैं कि दुनिया में हर रिश्ते की अपनी एक खूबसूरती होती है, लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। ये रिश्ता शब्दों से नहीं, एहसासों से जुड़ा होता है। माँ बेटी की पहली दोस्त, पहली गुरु और सबसे बड़ी ताकत होती है। आप हमारी बातों से समझ ही गए होंगे कि आज हम कार्यक्रम में माँ बेटी की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप तो जानती ही हैं कि माँ के

पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को हम लेकर आते हैं कार्यक्रम में माँ की चिट्ठी। और आज है पहला शनिवार और आज हम लेके आए हैं माँ की ऐसी चिट्ठी जिसमें माँ अपनी बेटी को कुछ सीख देती है। और आज के इस कार्यक्रम में हम एक माँ और बेटी के बीच हुए एक भावनात्मक पत्र के माध्यम से ये समझेंगे कि जीवन में पैसे की बचत कैसे की जाए और कैसे बेटी को आर्थिक रूप से समझदार बनाया जाए। माँ बेटी को पत्र के पहले पन्ने पर सखियों लिख रही है कि प्रिय बेटी, ढेर सारा प्यार और स्नेह, आशा है तुम वहाँ पर कुशल से होंगी। बेटी, आज इस पत्र में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें लिख रही हूँ जो तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएंगी। माँ आगे पत्र में लिख रही है, बेटी आज मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ जो शायद स्कूल की किताबों में नहीं लिखी होती, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हाँ बेटी, मैं बात कर रही हूँ पैसे की समझदारी और बचत की। बेटी, तुम तो जानती ही हो कि पैसा कमाना आसान नहीं है और आज बढ़ती महंगाई के दौर में जितना भी पैसा कमाओ कम लगता है, पर बेटी मेहनत से कमाए पैसे को हमें बहुत ही समझदारी से खर्च करना होता है। हाँ बेटी, पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही आवश्यक है उसे सही ढंग से संभालना। तो आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे हमें पैसे का सही ढंग से उपयोग जो है करना होता है। हमें अपनी कमाई को तीन हिस्सों में बांटना चाहिए, एक तो घर खर्च के लिए, दूसरा बचत के लिए और तीसरा हिस्सा बेटी उस खर्च के लिए जो अचानक से आ जाता है। जी हाँ, जब अचानक से घर में कोई फंक्शन या बीमारी आ जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा कमा ही खर्च करने के लिए रहे हैं, पर असल में पैसा बेटी हमारी भविष्य की नींव है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने में बचत करने की आदत डालो। पैसे की बचत भविष्य में काम आती है। बेटी, जब मैं तुम्हारी आयु की थी तब मुझे भी पैसे की बचत की समझ नहीं थी। कई बार मैं बिना सोचे समझे जो थी पैसा खर्च कर देती थी, पर आज मैं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने जीवन में ये सीखा कि छोटी छोटी बचत ही बड़े सपनों को पूरा करती है। आज अगर माँ तुम्हें ये सब समझा पा रही है तो इसका मुख्य कारण मेरे जीवन का ही अनुभव है। माँ अगले पन्ने पर लिख रही है कि बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम ये सीखो कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर तुम अभी से समझदारी से पैसे को संभालना सीख जाओगी तो आगे चलकर तुम्हें कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेटा, चाहे तुम्हें थोड़े पैसे ही क्यों ना मिलें, पर उनमें से कुछ हमेशा बचा कर रखो। तो इस चिट्ठी को हम आगे भी कार्यक्रम में जारी रखेंगे, पर वक्त है फिर से मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: कार्यक्रम सुनो सखी में फिर से सभी श्रोता सखियों का स्वागत है। सखियों, कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं एक माँ की

कर ले जाओ कि क्या सामान चाहिए। वहाँ पहुँचकर लिस्ट के अनुसार ही सामान लो। आजकल हम ऑनलाइन भी बहुत सा सामान लेती हैं और ऑनलाइन सामान खरीदते वक्त हम अक्सर ये सोचना भूल जाती हैं कि हमें इस सामान की सच में ज़रूरत है या नहीं। बस हमारी आँखों को पसंद आता है और दिल को अच्छा लगता है तो बस उसे ले लेती हैं। पर सखियो, जब भी तुम, माँ लिख रही है बेटी को कि अपने स्मार्टफोन पर कोई भी सामान देखती हो तो बार बार किसी अन्य साइट से भी वही सामान तुम्हारी आँखों के सामने बार बार फ़ोन की स्क्रीन पर आना शुरू हो जाता है। हाँ, हम भी कई बार देखते हैं कि जब हम कुछ सामान सर्च करती हैं तो बार बार अलग अलग वेबसाइट से उसके विज्ञापन आने लगते हैं। तो माँ बिल्कुल सही लिख रही है अपनी बेटी को कि जब भी कुछ लेना है तो ज़रूरत है तभी लो, इसलिए नहीं लेना है कि वो हमारी आँखों को अच्छा लग रहा है। बेटी, मन बहुत चंचल होता है, हमें अपने चंचल मन को थोड़ा सा समझाना है और बिना सोचे शॉपिंग नहीं करनी है। सच में वही चीज़ हमें खरीदनी है जिसकी हमें ज़रूरत है। बेटी, कभी भी जल्दबाजी में पैसा मत खर्च करना। अगर कोई चीज़ पसंद भी आ जाए तो थोड़ा रुक कर सोच कर कि क्या ये अभी ज़रूरी है, क्या मैं इसके बिना रह सकती हूँ। ये बातें सोच कर तुम्हें जो है सामान लेना है। तुम्हारी यही सोचने की आदत तुम्हें समझदार बना देगी। बेटी, अपना बैंक या डाक बचत घर में एक जमा खाता भी तुम्हें खोलना है और हर महीने अपनी आय में से कुछ पैसे इस बचत खाते में जमा करवाने की आदत डालनी है। जब अधिक पैसे इकट्ठे हो जाएं तो तुम इसकी FD बनवा लेना। बेटा, पैसा सिर्फ सुविधा ही नहीं देता बल्कि आत्मनिर्भरता भी देता है। जब हमारी जेब में पैसे होते हैं तब हम अपने में एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस करते हैं। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हर महीने के खर्चों का भी हिसाब रखो। इससे तुम्हें समझ आएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे उसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, कभी भी अपने किसी से तुलना मत करना। हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग-अलग होती है। तुम्हें बस अपने जीवन को बेहतर बनाना है, ना कि दूसरों की नकल करनी है। माँ आगे लिख रही है कि बेटी, हमेशा याद रखना कि बचत छोटी हो सकती है लेकिन उसका भविष्य बहुत बड़ा होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये सब इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि मेरी बेटी को कभी भी भविष्य में पैसे की कमी ना हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा चाहती हूँ कि तुम जीवन में समझदार, आत्मनिर्भर और खुश रहो। इन्हीं पंक्तियों के साथ माँ पत्र को समाप्त कर रही है और लिख रही है, तुम्हारी माँ, तुम्हें मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। सखियो, सच में देखा जाए तो माँ अपनी बेटी को हमेशा जीवन में खुश और आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। वह कभी भी नहीं चाहती कि जो कठिनाइयाँ, जो मुश्किलें उसके जीवन में आई, वो उसके बच्चों के जीवन में आए। तो अपनी माँ के साथ बैठो, घूमो, वक्त बिताओ, क्योंकि जब माँ दुनिया में नहीं होती है तो हम उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए भी तरस जाते हैं। सच में माँ तो माँ होती है, उससे ज़्यादा कोई आपकी फिक्र नहीं कर सकता। तो सखियो, कार्यक्रम में अब चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

सखियों इसी गीत के साथ अपनी रेडियो सखी एकता को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। इसी के साथ अब अपनी रेडियो सखी एकता को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया सुनील कुमार ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। इसी के साथ प्यारी बहनों, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दिन के 1 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा दीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के

0: प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहां शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 2872 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपये रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Aluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Pawan Kalyan and other dignitaries. The Prime Minister inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. Mr. Modi also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by the officials on its design, advanced technology, master plan and future expansion as an aviation hub. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant culture of North Andhra. We'll now go live to the Prime Minister's address.
3: నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ప్రయాణించే ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరుతో ప్రజాసేవకు దేశ సేవకు కూడా స్ఫూర్తి పొందుతారని తెలియజేస్తున్నాను.
4: సాథియో, బీతే 12 ఇయర్స్ మే దేశ్ కే ఏవియేషన్ సెక్టర్ నే అసాధారణ ప్రగతి కీ. 2014 తక్ దేశ్ మే కేవల్ 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है।

आयाम से नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं, वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थीं, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं, और बताना है इस गीत के गीतकार कौन हैं और मीना कुमारी जी के साथ कौन नजर आते हैं।

शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोता और लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराही फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दर्द को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आंखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया, शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ झलक था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनकी आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओं, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं मीना कुमारी के, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराते बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय, ऊँची आवाज़।

या भव्य भव्य दृश्यों से नहीं बल्कि आंखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शायरी, उनकी खामोशी और उनके अमर किरदार हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि कुछ कलाकार समय से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते। और आप तो समझ ही चुके हैं कि मीना कुमारी एक मशहूर शायरा भी थी और मकबूल भी थी। तो वो किस नाम से शायरी किया करती थी, क्योंकि मीना कुमारी तो वो लिखती नहीं थी और उनका एक और नाम था, बल्कि यूं कहें कि दो नाम थे। तो ये नाम अगर आपको याद आए तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि ट्रेजडी क्वीन के नाम से मशहूर वो पाकीज़ा की हसीन जिनकी अंदाज वो पाकीज़ा की हसीना जिनका अंदाज बयां दिल को छू जाता था, चांद सी उनकी सूरत और उनकी जो हर कोई जो अदा होती है, लगता नहीं कि दिल मेरा उजड़े दयार में। और कुछ फिल्मों के गीत भी इन्होंने लिखे हैं, झील सी आँखें, और उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश की है। इस गीत में, इस फिल्म में मीना कुमारी के जो अभिनेता हैं उनको आपको पहचानना है, यानी को स्टार।

अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा मौन, समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं, आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज़ देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई

पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी।

ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म में एक युग हैं। अभिनय में मीना कुमारी जी का कोई तोड़ नहीं था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। उनकी मनमोहक आंखें संवाद खासकर दर्द में डूबे तो दर्शकों के दिल में छा जाते। मीना कुमारी जी अभिनेत्री यदा कदा ही उनकी तरह होती हैं और चित्रलेखा और आरती फिल्म वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिबजान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज़ और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, पूरा जीवन इसी तरह ख़त्म हो गया चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं

फिल्म मैं चुप रहूंगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें, और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की, उन उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं, तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं, और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है।

मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत था आज़ाद फिल्म से। आज़ाद फिल्म में उनके को स्टार कौन थे श्रोताओं? और अगर आप किसी जो ख़ास उनके को स्टार रहे किसके साथ, यानी आप जोड़ी मीना कुमारी की पसंद करते थे या किन के साथ वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी को अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक और श्रोता लिखती हैं, मीना जी की छोटी छोटी मगर नशीली आंखें बेहद खूबसूरत लगती थीं। वो दर्द से भरी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हों, उनको मेरा शत शत नमन। एक और श्रोता ने लिखा है, आपने मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों में सबसे पसंदीदा गीत की चॉइस पूछी है, जो गीत दिल एक मंदिर फिल्म से है और हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का संवाद जो है वो आपके पाँव मैंने देखे, बहुत हसीन है, इन्हें ज़मीन

पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ज्यादातर श्रोताओं ने इसी डायलॉग के बारे में लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी अपने कलामों में नाज नाम का इस्तेमाल करती थीं और उनके निधन के बाद उनकी कविताओं का संग्रह तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुआ। जी हाँ, नाज नाम से वो लिखा करती थीं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी को हंसते हुए बहुत कम देखा गया है, अतः मुस्कुराहट पर टिप्पणी मुश्किल है। वैसे जो गीत हमने आपको सुनवाया आज़ाद फिल्म का, उसमें तो मीना कुमारी बहुत ही प्यारी नज़र आती हैं और खिलखिलाती हुई नज़र आती हैं। तो आपको बताना है कि जब वो छोटी थी यानी बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कौन सी फिल्म थी, और फिल्म जो रिलीज़ हुई और रातों रात जिससे मीना कुमारी स्टार बन गई, ये फिल्म कौन सी थी? आपकी सहूलियत के लिए बता दें 1952 में रिलीज ये फिल्म थी।

ये आवाज आपको पहचाननी है श्रोताओं की, इस गीत को किसने गाया? नूरजहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूनी का लिखा, रोशन की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था ये कह सकते हैं कि तमगा, कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं? इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है?

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। मीना कुमारी पर फिल्माया गया और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे

बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज़ हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओ मीना कुमारी का, ये आप ज़रूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है, उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफ़र कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूँगा कि उनकी जो फिल्में थीं उनमें आज़ाद कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का ज़मीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद, अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज़ में खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती, बोलती, बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ?

भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे ये श्रोताओं, और इसकी इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हाँ, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं

जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, खासकर उनकी जो ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं। तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी हैं। वो उनकी कौन सी जो फिल्में हैं वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में? और आपको कोई एक फिल्म बतानी है

मीना कुमारी जी बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गज़ल में। श्रोताओं, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूँगा, ज़रूरी हो गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकिजा की शूटिंग के दिनों की है। मीना जी और कमाल अमरोही जी की कार का मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाक़या इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज़ में है, ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज़ कौन सी है, मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है।

इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया है श्रोताओं, और आप सुन रहे थे भीगीरात फिल्म का ये गीत। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि मीना कुमारी जी को तो मुस्कुराते हुए कम ही देखा है, तो फिर आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे जो आपने सुना अभी अभी? कितनी प्यारी लगती हैं मीना कुमारी जी इस गीत में, ये आप जब इसका पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो मीना कुमारी की ब्लैक एंड वाइट फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वो अपने चेहरे के भावों से भी ज़बरदस्त एक्टिंग करती थी, ऐसा लगता था जैसे वो किरदार को जी रही हों।

सितारों को आपने पहचाना होगा श्रोताओं, इन दो सितारों की कौन सी वो फिल्म है दूसरी जो आपको अच्छी लगती है?

खूबसूरत फिल्मों के अलावा श्रोताओं, भाभी की चूड़ियां, जिंदगी और ख्वाब, प्यार का सागर, आजाद, बहाना, चिराग कहां, रोशनी कहां, यहूदी की लड़की, मिस मैरी, शारदा, फूल और पत्थर, ये और फिल्में थी।

शोधा ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम एक बहुत ही सराहनीय मार्मिक भावपूर्ण फिल्म है, जहां तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के शौकीन लोग हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सुंदर लगती है मीना कुमारी। सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के गीत आज शामिल थे सुरीला सफर कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर ये कार्यक्रम अब यहीं सम्पन्न होता है।

दोस्तों, त्रिवेणी की धाराएं आज मिल रही हैं बारिश की बूंदों पर। थोड़ी खुशी थोड़ा गम अपने आगोश में समेटे बारिश जब आती है तो गर्मी से निजात दिलाती है, नहीं आती तो परेशानियों का पहाड़ ठेल देती है धरती पर। लोग बूंद बूंद के लिए तरस उठते हैं। हर मौसम में छिपा होता है थोड़ा न थोड़ा कहर, ये प्रतीक है इंसानों का। हर इंसान में खामियां और अच्छाइयां होती हैं। स्वीकार कीजिए अच्छाइयां, दूर फेंकिए बुराइयां। बरसात के मौसम की खूबियों से खुशी पाइए, इसके कहर से बचने का उपाय सोचिए, तभी बरसात के मौसम की खूबसूरती को आप महसूस कर पाएंगे।

मखमल की चादर सी बिछ जाती है जब होती है बरसात। पानी से नहाए पेड़ पौधे हरे रंग की पोशाक पहनकर झूमने लगते हैं। क्या आपने सोचा है, अगर बारिश न हो तो जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या हो, जिनका जीवन यापन ही पेड़ पौधों और जलाशयों से होता है। अगर बारिश नहीं हो तो नदी तालाब सूख जाते हैं, जंगल के पशु पक्षी प्यासे ही दम तोड़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों को जिंदा रख सकते हैं, नए पेड़ पौधों की नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण हमारी तरह स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ पर्यावरण से संतुलित बारिश होगी। हम बरसात के गीत यूं गाएंगे।

बरसात के सुहाने मौसम का गुणगान करना और बारिश की खूबसूरती पर फिदा होना सिर्फ इतना काफी नहीं है, हम सबकी एक जरूरी जिम्मेदारी है बारिश के पानी को इकट्ठा कर संग्रह करना। वर्षा जल के संग्रहण के अंतर्गत घरों की छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को एकत्रीकरण के लिए बनी टंकियों से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पत्थर से विशेष तरह की नालियां बनाकर जल संग्रहण किया जाता है। खोद कर बनाए गए तालाबों का निर्माण, पत्थरों और सीमेंट से किनारा बनाकर बीच में गड्ढा खोद कर जल संग्रहण और भी बहुत सारे तरीके इजाद किए जा चुके हैं। चलिए खुद से पूछें, वर्षा जल के संग्रहण में हमारा अपना कितना योगदान है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में

0: योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से 1 से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना गोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग

0: लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे थे फिल्म यहूदी में लता मंगेशकर और सखियों को शैलेंद्र के बोलते शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

फिल्म अर्धांगिनी में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला वसंत देसाई ने। और अब आपकी नजर कर रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज़।

0: अलबेला फिल्म का गीत था लता मंगेशकर, चितलकर और साथियों की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सी राम चंद्र के सुरबद्ध के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी रिले की जाएगी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 21 अगस्त से 3 सितंबर तक शिमला में आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। 27 अगस्त को निजी सदस्य कार्य दिवस तय किया गया है। 28 से 30 अगस्त तक विधानसभा में अवकाश रहेगा। चंबा शहर को अग्निकांड जैसी किसी भी अनहोनी से जल्द ही पूरी सुरक्षा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने 2 दिवसीय चंबा दौरे के दौरान आज चंबा शहर में अग्निशमन प्रणाली के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस परियोजना के तहत चंबा शहर की पुरानी और जर्जर हो चुकी पाइपों को बदलकर आधुनिक व प्रभावी अग्निशमन व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इस कार्य पर लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
5: चंबा के फायर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए और उसका नवीनीकरण करने के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना बनके तैयार होगी। आज उसके शिलान्यास किया गया है। इसकी डिमांड थी लंबे अरसा से।
6: अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो टाइम बाउंड कंप्लीशन करें, जल्दी से इसको तैयार करें ताकि यहाँ शहर जो है लाभान्वित हो सके।
4: चंबा शहर के लिए प्रस्तावित नई अग्निशमन व्यवस्था के लिए मलूणा और जुगला नालों से पानी की व्यवस्था की जाएगी। परियोजना के तहत 127 नए फायर हाइड्रेंट स्थापित किए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भाजपा विधायकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर ऐसे सभी मामलों को पहले ही कैबिनेट में रद्द किया जाएगा।
7: हिमाचल प्रदेश में जब हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को लग रहा है, जब हम काम नहीं कर सकते, हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में जो हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करता है उनकी आवाज को कैसे दबाया जाए, उस आवाज को कैसे बंद किया जाए, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है।
4: जयराम ठाकुर ने सरकार के इशारों पर गलत काम कर रहे अधिकारियों को चेतावनी दी कि प्रदेश में सरकार बदलने पर उनकी भी जवाबदेही तय होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी है और हाई

0: कमान ने भी मुख्यमंत्री को अपनी कार्यशैली बदलने को कहा है। ओल्ड मनाली स्थित क्लब हाउस के समीप बीती रात एक वाहन के मनालसू नाले में गिरने से इसमें सवार दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं। घायलों का मनाली अस्पताल में उपचार चल रहा है। उधर सिरमौर जिला में पांवटा साहिब नाहन कालाअंब राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये लोग उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन जा रहे थे। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की वर्षा हुई। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार आगामी 7 अगस्त तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा और इस दौरान अधिकांश स्थानों पर वर्षा होगी। विभाग ने 2 अगस्त को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जबकि 3 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। सिरमौर जिला में किसान 10 अगस्त को सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों के लिए आंदोलन करेंगे। ये निर्णय हिमाचल किसान सभा की सिरमौर जिला इकाई की आज नाहन में हुई बैठक में लिया गया। इस मौके पर किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि किसानों को वायदे के अनुरूप कानूनी गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मजदूरों को वीबीजी रामजी के तहत 200 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने की भी मांग की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, औपचारिक रोजगार का विस्तार, भारत के कार्यबल को सुरक्षा और वाचक हैं प्रभा शर्मा।
0: भारत का युवा और गतिशील कार्यबल उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। ये आर्थिक विकास को गति देने और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक वर्ष लाखों युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इस जनसांख्यिकी लाभ को सतत व समावेशी विकास में परिवर्तित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा सहित औपचारिक रोजगार का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहित करके तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर इस राष्ट्रीय प्राथमिकता को सुदृढ़ करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रशासित एक पारदर्शी ढांचे के माध्यम से यह योजना कार्यबल के औपचारिकीकरण को सशक्त बनाते हुए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए अवसरों का सृजन करती है। अगस्त 2025 में घोषित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 2 वर्षों की अवधि में 99,446 करोड़ के परिव्यय के साथ किया जा रहा है। आज ये योजना अपने कार्यान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण कर रही है जो भारत में औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे के विस्तार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित करना है जिनमें 1.92 करोड़ पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। ये योजना युवाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण के माध्यम से संगठित कार्यबल में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही ये विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर श्रम प्रधान विनिर्माण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करती है। ये योजना नए और विस्तारशील उद्योगों में रोजगार को बढ़ावा देती है, इसलिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का भी पूरक है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मूल आधार 2-भागीय प्रोत्साहन ढांचा है जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। अपने प्रथम वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने प्रथम नियुक्ति को प्रोत्साहित करके तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करके कार्यबल के औपचारिकीकरण को सुदृढ़ किया है। यह योजना अधिक से अधिक

0: श्रमिकों को संगठित क्षेत्र से जोड़ने के साथ साथ विभिन्न उद्योगों में नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। अगस्त 2025 से अब तक 72 लाख से अधिक पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। लाभार्थियों में लगभग 30% महिलाएं हैं, जिससे औपचारिक रोजगार में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है। योजना के अंतर्गत 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है। रोजगार को ईपीएफओ पंजीकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जोड़कर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत के संगठित श्रम बाजार को सुदृढ़ बना रही है और अधिक सुरक्षित कार्यबल का निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। ये योजना निर्बाध सत्यापन, लाभ अंतरण तथा रियल टाइम निगरानी की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना का कार्यान्वयन पूर्णतः डिजिटल ईपीएफओ से संबद्ध मंच के माध्यम से किया जाता है, जिससे निर्बाध सत्यापन और लाभों का प्रभावी वितरण सुनिश्चित होता है। योजना में आधार आधारित प्रमाणीकरण, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और नियमित इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न फाइलिंग का उपयोग किया जाता है। प्रोत्साहन तभी उपलब्ध होता है जब यूएएन का प्रमाणीकरण उमंग ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। इससे अनुपालन सुनिश्चित होने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के दायरे का भी विस्तार होता है। प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। पीएमवीबीआरवाई पोर्टल योजना के समग्र कार्यान्वयन को सुगम बनाता है तथा लाभार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति की रियल टाइम में निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। सामयिक चर्चा समाप्त हुई, नमस्कार।
1: अभी आप थे सामयिक चर्चा, विषय था प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, औपचारिक रोजगार का विस्तार, भारत के कार्यबल को सुरक्षा, और वाचन स्वर था प्रभा शर्मा का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद उठाइए।

राहुल देव बर्मन की तर्ज, गुलजार के बोल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें, फिल्म आंधी में आप सुन रहे थे ये गीत आंधी का। और बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। वारुंगा फाटा जिला हिंगोली से वैष्णवी, अश्विनी, कुंडलेक और पांडु रंग की ये फरमाइश थी। श्रीकांत श्रीवास्तव, श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव, ये दो नाम हैं पीरनगर गाजीपुर के। और इसी गीत को सुनना चाहा बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव, शशिकला, सुमेध कुमार, दामोदर, साधना, पवन पाटिल ने। और इसी गीत के लिए

कानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई अहमद और मान सिंह की। ये फरमाइश है ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।

गीत को पसंद किया। न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय और शीतल ने, और GCF स्टेट परेल लाइन से ये चिट्ठी आई है। इनके नाम हैं सुरेश राजपूत, सुमित, शानू, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, पुष्पा सुदेशना और निमो की ये फरमाइश है। शीतलानगर दुर्ग से शिव और भगवान चंद्राकर, और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत मेरे हमसफर। इस फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कालीगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहते थे श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित मोताला से, कुमार प्रथमेश प्रणाली कड़ा रोड से, कुमारी सानवी देशमुख की ये फरमाइश थी और कुमार सरवत देशमुख भी यहीं से, विमल निकेतन अकोले की ये फरमाइश है, महेंद्र नागेश पारस जयेश ऋषभ संयम सिद्धांत जैन और साक्षी जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य, मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा ऋषभ प्रियंका पूजा और ऋतु की फरमाइश आपने सुनी।

दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। विनायक नगर निज़ामाबाद से इस गीत को सुनना चाहा ज्योति श्रीहरि, राजकमल, विनोद कुमार, रामानंद और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा ने। मोहाली पंजाब से ये पत्र आया है। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल की ये फरमाइश थी।

लेकिन हम तो जानते हैं श्रोताओं के, हमारे श्रोताओं की नजरें कभी खफा नहीं हो सकती। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपके ढेरों पत्र आए, और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए, हमें रहता है आपके पत्रों का इंतजार। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को कार्यक्रम मन चाहे गीत से। आप सभी का कार्यक्रम के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एंटन चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर, विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। आइए सुने नाटक विवाह का प्रस्ताव।

0: माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ दस्तक देकर ही अंदर चला आया।
1: और हम भी तुम्हें यूं ही बाहर नहीं जाने देंगे। आओ बैठो आइवन लोमोव।
0: धन्यवाद।
1: आइवन, तुमने तो हमें भुला ही दिया।
0: जी, एक उलझन के कारण मैं इधर आ नहीं पाया, इसके लिए बहुत लज्जित हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, आपकी याद सदा मेरे साथ रही।
1: ये तुम्हारा स्नेह है जो तुम हमें अपना समझते हो। मगर आइवन, आज खैर तो है। ये फर का नया कोट, ये रंग बिरंगी कराकली टोपी और ये सफेद दस्ताने, आज तुम जा कहाँ रहे हो?
0: जी कहीं भी तो नहीं। बात यह है कि मैं आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाया हूँ।
1: अच्छा,
0: अब आपसे कैसे कहूँ?
1: तो और कौन कहेगा?
0: ये भी ठीक है, और कौन कहेगा? जहाँ मैं ही कहूँगा, मैं ही कहूँगा। लेकिन थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। हाँ, मुझे
1: अभी लो।
0: मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरता हूँ अगर आपने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा?
1: पानी।
0: धन्यवाद।
1: अब ये मुझसे कुछ रुपया उधार मांगेगा और मैं इसे अंगूठा दिखा दूंगा।
0: देखिए, मैंने कई बार देखा है, महसूस किया है कि इस दुनिया में जितना आपको मेरा ख्याल रहता है, किसी को नहीं रहता। मैं आपके इस अपार स्नेह के योग्य तो नहीं हूं।
1: आइवन, आज तो तुम्हारी बातें भी तुम्हारी पोशाक की तरह बिल्कुल नहीं है।
0: जी जी जी, ये बात नहीं है।
1: तो वो बात क्या है?
0: वो बात ये है। अभी कहता हूँ।
1: कहो।
0: बस मैं कहने ही जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
0: जहाँ हालत तक तो आ गई है
1: तो ज़बान पर ले आओ।
0: अच्छा,
1: शाबाश।
0: अपनी बेटी नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए।
1: आइवन, मेरे प्यारे आइवन, एक बार फिर कहो जी, कहीं मेरे कानों ने वो तो नहीं सुन लिया जो पिछले कई वर्षों से मेरे दिल में था। कहो ना आइवन।
0: फिर किस मुंह से कहूँ? कहाँ आप इतने बड़े जमींदार और कहाँ मैं आपका एक पड़ोसी छोटा सा जागीरदार।
1: ऐसा न कहो आइवन, ऐसा न कहो। जो जहाँ है

0: वो वहीं रहेगा, लेकिन तुम पहले मेरे गले से लग जाओ। मैंने सदा तुम्हें अपनी बेटी नितालिया की तरह चाहा, और मैं अभी तक यहीं क्यों खड़ा हूँ? आइवन, तुमने देखा, मारे खुशी के मैं ये भी भूल गया कि मुझे नितालिया को तुम्हारे आने की खबर करनी चाहिए।
1: तो क्या नितालिया मुझे पसंद कर लेगी?
0: क्या कहते हो आइवन, तुम जैसे स्वस्थ सुंदर और नए नए कोट पहनने वाले गुलगुले जवान को भला कौन पसंद नहीं करेगा? मैं अभी नितालिया को भेजता हूँ।
1: जी चुबोकोव चले गए, अब नितालिया आएगी। ये क्या, मैं तो सिर से पांव तक कांप रहा हूं, अरे बाप, मेरा सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हुआ जा रहा है। ये क्या, मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी भारी आंख भड़क रही है।
2: अरे यहाँ तो आइवन लोमोव विराजमान है।
1: आपको आश्चर्य हुआ कुमारी नितालिया?
2: जी हाँ।
1: क्या,
2: आप पर नहीं, बाबा की बात पर।
1: बाबा की बात पर?
2: जी हाँ, बाबा बोले कोई मटर खरीदने आया है।
1: ओह।
2: और मैं जल्दी में इन मैले कपड़ों में ही यहाँ चली आई। अंदर आंगन में मटर की फलियों में से दाने निकाल रही थी।
1: जी,
2: आपके लिए कुछ खाने को लाऊं?
1: जी जी जी, जी आप कष्ट न करें, मैंने अभी खाना खाया है, आप कृपया बैठ जाएं तो।
2: लीजिए, बैठ गई।
1: जी,
2: आज तो आप अपने घर से खूब बन ठन कर निकले हैं।
1: जी
2: सच, इन नए कपड़ों में तो आप देखने में बहुत भले लगते हैं।
1: कुमारी नितालिया।
2: जी,
1: मेरी मेरी मेरी आपसे एक प्रार्थना है।
2: कहिए।
1: जी, मैं आज बहुत ठंड पड़ रही है,
2: आपके लिए कंबल लाऊं?
1: जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
2: बात क्या है, आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं?
1: देखिए कुमारी निथालिया, मैं आपके बाबा को तब से जानता हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी, और ये तो आप भी जानती हैं कि आज मैं जिस जागीर का मालिक हूँ वो मुझे मेरे नाना नानी से मिली थी। मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाहता था कि मेरे नाना नानी भी आपके बाबा को बहुत चाहते थे, और आज भी हमारे घरों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। देखिए ना, आपके घर की दीवार मेरे घर की दीवार के साथ लगती है, आपके खेतों के साथ मेरे खेत हैं, आपकी सफेदा जमीन के किनारे मेरा चेरी का बगीचा खड़ा है।
2: क्षमा कीजिए
1: जी,
2: क्या वो चेरी का बगीचा आपका है?
1: जी हाँ, क्यों?
2: यूं नहीं, सोच कर बताइए।
1: आप भी कमाल करती हैं, भला इसे सोचने की कौन सी बात है, और फिर क्या मेरे सोचने पर मेरा वो बगीचा किसी दूसरे का बन जाएगा?
2: लेकिन जो बगीचा हो ही दूसरे का, वो आपका कैसे बन सकता है?
1: मैं समझा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
2: इसलिए कि वो बागीचा हमारा है।
1: अजी, मैं चेरी को उस बागीचे का जिक्र कर रहा हूँ जो आज तक कभी हरा नहीं हुआ, जिसके एक सिरे पर आपकी सफेदा जमीन है और दूसरे सिरे पर खाई है।
2: जी हाँ, मैं भी उसी बागीचे के लिए कह रही हूँ कि वो हमारा है।
1: कमाल है, ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ कि वो बागीचा आपका है।
2: और मैंने भी आज पहली बार सुना कि वो आपका है।
1: लेकिन मेरे बगीचे पर आप अपना कब्जा कैसे जता सकती हैं?
2: अरे, मगर वो बगीचा आपका कब से हुआ?
1: जब से मैंने होश संभाला।
2: फिर जब से आपने होश संभाला है, आप झूठ को सच समझ रहे हैं।
1: जी नहीं, आप अब सच को झूठ समझ रही हैं। देखिए कुमारी नितालिया, मेरे पास ऐसे कागजात हैं जिनमें ये साफ साफ लिखा है कि मेरी नानी की दादी ने वो बागीचा आपके दादा के काश्तकारों को बिना पट्टा लिखवाए खेती करने के लिए दिया था, और आपके दादा 40 साल तक हमारी उस जमीन की कमाई खाते रहे, और फिर आप ही की तरह जब आपके दादा ने भी हमारी उस जमीन का मालिक बनने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
2: देखिए, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ जो मैं आपकी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूं।
1: मैं जानता हूँ कुमारी नितालिया, आप इतनी बुद्धिमान भी नहीं है जो किसी दूसरे की संपत्ति पर अपना हक जताना छोड़ देंगी।
2: आइवन, इस प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं।
1: जी,
2: आपका मुंह बंद करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सूखा सड़ा बागीचा जिसकी कीमत 300 रूबल से किसी भी हालत में ज्यादा नहीं है, मैं आपको भेंट कर सकती।
1: कुमारी नितालिया, मैं आपकी उदारता का कायल हूँ, लेकिन आपको मेरी ही संपत्ति मुझे भेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगीचा तो मैं आपको भेंट कर सकता हूँ, मगर अब प्रश्न सिद्धांत का है, न्याय का है।
2: अन्याय भी ये है कि न्याय आप कर रहे हैं। 300 साल से जो बगीचा हमारे अधिकार में चला आ रहा है, आज उसे आप अपना बता रहे हैं।
1: फिर वही बात, आप किसी दूसरे की सुनती भी तो नहीं है। कुमारी नितालिया, हुआ यूं था कि आपके परदादा के काश्तकारों ने मेरी नानी की दादी को मकान बनाने के लिए ईंटें पकाकर दी थी, इसलिए कुछ बख्शीश के तौर पर मेरी नानी की दादी ने उन्हें

0: दादी की नानी, नाना के दादा। अब मैं आपसे और कितनी बार कहूँ कि वो बागीचा हमारा है, हमारा
1: जी
0: है।
1: नहीं जी नहीं जी नहीं, वो मेरा है। आप सुनिए तो, वो हुआ यूं था।
0: आइवन, अगर आप लगातार दो दिन तक इसी तरह बहस करते रहेंगे और अपने घर से एक बढ़िया कोट पहनकर आते रहेंगे तो भी ये बागीचा हमारा ही रहेगा।
1: देखा है ना सीना जोरी, कुमारी निकालिया, मैंने आज तक कभी किसी की संपत्ति पर अपना हक नहीं जताया। मैंने आज तक कभी किसी की जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश नहीं की।
0: इसीलिए आप अपनी ईमानदारी का सिला हमसे वसूल करना चाहते हैं?
1: ओ, ओ, मेरे गले में कांटे उगाए हैं। ठहरिए, जरा पानी पी लूं तो बताता हूँ आपको। मैं फिर कहता हूँ कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है।
0: ये चीख आपकी है, मगर बागीचा हमारा है।
1: जी नहीं, वो मेरा है।
0: वो बागीचा हमारा है और मैं आज ही अपने कारिंदों को वहाँ की सारी घास काटने के लिए भेजती हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, मेरे आदमी अभी वहाँ पहुँच जाएंगे।
1: तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरी धरती पर किसी ने कदम रखा तो मैं उसकी खाल में भूस भरवा दूंगा।
0: इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अंजाम से वाकिफ हैं?
1: मैं कहता हूँ इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बागीचा मेरा है, मेरा है, मेरा है।
0: आइवन, अगर ये घर मेरा ना होता तो आप इससे भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, दहाड़ सकते थे।
1: कुमारी नितालिया, कुमारी नितालिया, अगर मुझे दिल का रोग ना होता, अगर मेरे पुट्ठों में दर्द ना होता तो आज मैं आपको बता देता कि किसी की संपत्ति पर आंख रखने का क्या परिणाम होता है। देखिए, अब भी भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मान लीजिए कि वो बागीचा मेरा है।
0: नहीं, हमारा है।
1: जी नहीं, मेरा है।
0: हमारा है।
1: मैं कहता हूँ मेरा है।
2: ये क्या हो रहा है
0: बाबा? आप जरा इनकी समझ में ये बिठाइए कि हमारा वो चेरी का बगीचा किसका है।
2: हमारा है और किसका?
1: आप अपनी बेटी की बोली में बोल तो रहे हैं, मगर कुछ पता भी है कि मेरी नानी की दादी ने यह बगीचा आपके दादा के काश्तकारों को थोड़ी सी मुद्दत के लिए ऐसे ही खेती करने के लिए दिया था और फिर 40 वर्ष तक वे अपना पेट और आपके दादा का घर भरते रहे।
2: आइवन, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि उन काश्तकारों ने तुम्हारी दादी को उस बगीचे के पट्टे की सारी रकम चुका दी थी। विश्वास न हो तो गांव के पटवारी से या तहसीलदार की कचहरी से जाकर मालूम कर लो कि उस जमीन का लगान आज तक कौन भरता रहा।
1: फिर तो आप सरकार को भी धोखा देते रहे।
2: धोखा? हाँ, अपनी जमीन का लगान तुमसे सरकारी खजाने में भरवा के हम तुम्हें अवश्य धोखा दे सकते थे,
0: लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया।
1: मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता कि वो बागीचा मेरा है और मेरे पास इसका सबूत है।
2: नहीं आइवन, तुम ये साबित नहीं कर सकते।
1: क्यों नहीं कर सकता?
2: आइवन, तुम इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दो कि हम तुम्हारा वो बगीचा हड़प कर जाना चाहते हैं। और अगर तुमने यूं ही चिल्लफों मचाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो बगीचा तुम्हारा है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करने के बजाय अपने किसी काश्तकार को यूं ही दे।
1: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। बेटी भेंट करने की बात कहती है और बाप किसी और को दे डालने की धमकी देता है। मैं पूछता हूँ, किसी दूसरे की संपत्ति को आप इस तरह कैसे लुटा सकते हैं? क्या अधिकार है आपको?
2: ये तो मैं ही जानता हूँ मुझे अधिकार है या नहीं, लेकिन तुम अपनी जबान को काबू में रखो। मैं ऊंची आवाज सुनने का आदि नहीं।
1: तो हो जाएंगे, अब आपका वास्ता मुझसे पड़ा है।
2: आइवन, यूं ही आवेश में मत आओ।
1: वाह वाह, आप तो पड़ोसी होने के नाते मेरा बागीचा हड़प कर जाएं और मैं आवेश में भी नहीं।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तुम चुप हो जाओ।
1: मैं तो जैसे आपके आदेश की प्रतीक्षा में ही था। मैं कह देता हूं, आप मेरे पड़ोसी नहीं हैं, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू हैं।
2: क्या कहा?
0: बाबा, बाबा, इन्होंने आपको डाकू कहा?
2: अब मैं इसे क्या कहूं?
1: जो मैंने आपको कहा है आप वही अपनी बेटी से भी कहिए।
0: बाबा, आप कुछ कहने के बजाय कुछ कीजिए।
2: मैं कुछ करूं?
0: हाँ।
2: लेकिन मैं क्या करूं?
0: आप अपने कारिंदों से कहिए कि वो बागीचे की सारी घास खोद लाएं।
1: खोद लाएं? कुमारी नितालिया, घास खोद लाना इतना आसान नहीं है।
2: इस बारे में आप अधिकार से बात कर सकते हैं।
1: आप मेरी यूं खिल्ली ना उड़ाइए। मैं अब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा।
0: और जब इंसाफ होगा आप अदालत का दरवाजा तोड़ डालेंगे।
2: क्योंकि तुम इंसाफ उसे मानते हो जो इंसाफ के साथ खुद बड़ी बेइंसाफी।
1: हाँ, इसका फैसला अदालत में ही होगा।
2: आइवन, मैं तुम्हारी मुकदमेबाजी की लत से वाकिफ हूँ और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पुरखों की सारी जिंदगी अदालतों में ही।
1: देखे, मेरे पुरखों का अपमान मत कीजिए, उनकी ईमानदारी के चर्चे आज भी लोगों की जबान पर हैं। हाँ, आप अपने चचा की ईमानदारी का डंका जरूर बजाइए जो गबन के अपराध में आज भी जेल में आटा पीस रहे हैं।
2: तुम्हारा तो दिमाग चल गया।
0: इनके घराने में ठीक किसका था?
2: हाँ, इसका दादा संकी।
1: दादा संकी था। आपकी माँ का भी तो ऊंट की तरह कोहान निकला हुआ था। मेरा दिल पानी।
2: अरे, तुम्हारा तो बाप पत्तेबाज था, क्रॉसवर्ड पजल भरा करता था।
0: आपकी नानी के मुंह में जब्बा नहीं ततैया मिस थी और वो हर किसी को काटने को दौड़ती थी।
1: मेरी बही ढंग था जो निराने लगे हैं और आप मीठी जबान से हर किसी का गला काट रहे हैं। और ये कौन नहीं जानता कि चुनाव से

0: मुझे कुछ नहीं सुझाई दे रहा, मेरी टोपी कहाँ है?
1: अरे तुम मक्कार हो, अरे भी हो।
0: लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है। ओ, मेरा दिल, यही मेरी टोपी। अब दरवाजा की तरह मेरी टांग सुन्न हो गई।
1: घसीट कर ले जाओ अपने आप को यहाँ से।
0: हाँ हाँ जा रहा हूँ।
1: इतना और सुनते जाओ, हमारे घर फिर कभी पांव रखा तो हाथ से टांग, नहीं नहीं टांग से हाथ धो बैठोगे। हाँ
2: और अब यहाँ से सीधे अदालत में ही जाना। हाँ
1: चला गया कमीना कहीं का।
2: आप हमें इस रीच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए।
1: और आस्तीन के सांप का हमें सर कुचल देना चाहिए।
2: हाँ नहीं तो ये हमारी संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठ जाएगा।
1: निर्लज का दुस्साहस तो देखो।
3: बोला आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
2: कैसा प्रस्ताव?
1: अरे ब्याह का प्रस्ताव, कमीना जलील गुंडा कहीं का मेरी बेटी से ब्याह करना चाहता था।
2: पापा, आपने आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
1: अरे मैं क्या बताता, तुमने खुद नहीं देखा कि वो रीच का बच्चा कैसा छैला बनकर आया था?
2: वो मुझसे ब्याह करना चाहते थे।
1: अरे अरे क्या हुआ बेटी नितालिया, क्या हुआ?
2: बाबा बाबा उन्हें बुला लाइए, अभी बुला लाइए।
1: क्या अब उसे मैं बुलाने जाऊं?
2: हाँ बाबा अभी जाइए, अभी जाइए बाबा। ओह, मेरा सर चकरा रहा है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
1: अरे मगर बेटी अभी हमने उसे यहाँ से इतने शानदार स्वागत से निकाला और अब वो दोबारा यहाँ आने के लिए कभी नहीं मानेगा।
2: बाबा आप अभी जाकर उन्हें किसी भी तरह मना लाइए, मैं उनके
1: अरे बेटी नितालिया होश में आओ, ये क्या पागलपन है? हे भगवान अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ?
2: इससे पहले उन्हें बुला लाइए।
1: जाता हूँ बाबा, जाता हूँ, जा रहा हूँ।
2: आज उन्होंने फर का कैसा बढ़िया कोट पहन रखा था, फिर भी हमने उनका ऐसा सम्मान किया, कौन जाने अब वो आएंगे भी या नहीं।
1: निटालिया बेटी हेलो, अब तुम अच्छी हो जाओ, वो आ रहा है। कम वक्त अभी सीढ़ियों पर ही था, मगर अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ अब मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोलूंगा, तुम जानो और वो जाने।
2: वो कब आएंगे?
1: अरे भाई उसके पर नहीं, पैदल आ रहा है।
2: आप उन्हें उठा कर क्यों नहीं ले आए?
1: ओ भगवान, तुम एक अच्छे भले आदमी को बेटी का बाप क्यों बना देते हो? मेरी तो मिट्टी खराब हो गई।
2: कैसे?
1: तुम्हारे कारण पहले मैंने उसे जली कटी सुनाई, उसे अपमानित किया और फिर उसे खड़े खड़े अपने घर से बाहर निकाल दिया, और अब
2: क्या क्या मेरे कारण?
1: और नहीं तो क्या?
2: बाबा अब आप मेरे साथ वैसा व्यवहार ना कीजिए।
1: अच्छा बाबा अच्छा, सारा दोष मेरा ही था। एक बेटी का बाप निर्दोष हो ही कैसे सकता है, और फिर वो भी अपनी बेटी की नजर में। लो वो आ गया और मैं अपने कमरे में जा रहा हूं।
0: मेरा दिल बड़े शोरों से धड़क रहा है।
2: और मेरे दिल को बड़ा चैन मिला है आपको यहाँ अपने पास देखकर।
0: वो बगीचा मेरा है।
2: जी हाँ वो बगीचा सचमुच आप ही का है, आपके जाने के बाद मुझे याद आया।
0: मेरी टांगें सुन्न हो गई हैं, लेकिन वो बगीचा मेरी नानी की दादी से पहले भी हमारा था।
2: जी हाँ जी हाँ, हमसे भूल हो गई, आप कृपया क्षमा कर दी।
0: बात असूल की थी, सिद्धांत की थी, नहीं तो आप जाने सूखा हुआ बगीचा जो कभी हरा नहीं हुआ चीज ही क्या है।
2: आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब आप कोई और बात कीजिए।
0: वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना इसके अतिरिक्त मेरे पास ऐसे कई प्रमाण पत्र हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मेरी नानी की दादी ने आपके दादा के काश्तकारों को।
2: जाने दीजिए, मैं अपनी भूल पर पहले ही बहुत लज्जित हूँ। ये बात कैसे चलाऊं? हाँ आप शिकार खेलने

0: कब जा रहे हैं?
1: मैं फसल की कटाई के बाद मैं मुर्गाबी का शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन लेकिन अब मैं क्या शिकार खेलूंगा?
0: क्यों?
1: अपने डब्बू को तो आपने देख ही रखा है ना, उस बेजबान की अब टांग भी टूट गई है।
0: ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ।
1: जा,
0: मगर उसकी टांग टूट कैसे गई?
1: ठीक से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे डब्बू की टांग किसी कुत्ते ने ही तोड़ी है, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है। और मेरे डब्बू की टांग क्या टूटी, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी ही कमर टूट गई हो। मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था, और अब जब मुझे उसकी जरूरत थी वह बेचारा अपाहिज हो गया। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता।
0: डब्बू आपने लिया किससे था?
1: अजी, ये पहले मेरो नोव के पास रहता था, तब ये अभी ढंग से भौंकना भी नहीं सीख पाया था कि इत्तफाक से इस पर मेरी नजर पड़ गई, और मैं इस पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया। उधर मेरो नोव इससे बिछुड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरो नोव के सामने 125 रूबल का ढेर लगा दिया तो वो कुछ न कह सका।
0: 125 रूबल?
1: हाँ, आपको अचंभा हुआ?
0: जी हाँ, इतने में तो हाथी आ जाता।
1: कुमारी निथालिया, मैं इसे हाथी का बच्चा ही समझ कर लाया था।
0: तब आपने कुत्ते के नहीं अपनी समझ के दाम चुकाए थे, नहीं तो मेरे बाबा मेरे लिए कालू 50 रूबल में लाए थे। और हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना अच्छा है।
1: मुझे तो इस पर भी संदेह है कि आपको 1000 तक गिनती आती है, नहीं तो आप अपने कालू का मेरे डब्बू से कभी मुकाबला नहीं करती।
0: मुकाबला हो ही कैसे सकता है, शेर का भेड़ से क्या मुकाबला।
1: जी
0: आइवन, हमारा कालू अभी बच्चा है। एक पूरा कुत्ता बनने में उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन अब भी हमारे सारे प्रांत में ऐसा कोई कुत्ता नहीं जो जीदारी और फुर्ती में हमारे कालू का सामना कर सके।
1: तो सुन लीजिए कुमारी निथालिया, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कालू का जबड़ा बहुत छोटा है, और ऐसे कुत्ते बच्चों की गेंद भी उठाकर नहीं ला सकते।
0: जबड़ा छोटा है?
1: जी,
0: ये बात भी मैंने आज पहली बार सुनी है।
1: विश्वास कीजिए, आपके कालू का निचला जबड़ा उसके ऊपर के जबड़े की अपेक्षा बहुत छोटा है।
0: क्या आपने उसे कभी नाप कर देखा है?
1: मैं अब नाप कर दिखा सकता हूँ, आप उससे अपनी टांग पर कटवाइए। वैसे मैं ये मानता हूँ कि ऐसे कुत्ते जिनके जबड़े छोटे होते हैं वे दौड़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन शिकार पर उनकी पकड़ अच्छी नहीं होती।
0: जरा ये भी फरमाइए, आपका वो लंगड़ा खाज का मारा डब्बू
1: जी
0: किस राजघराने में से है, किस स्कूल का दीपक है?
1: आपको जब जरूरत होगी तो मैं आपको उसका गोत्र तक बता दूंगा, उसकी जन्म कुंडली भी दिखा दूंगा। अभी तो इतना ही सहन कर लीजिए कि डब्बू उस किस्म का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में समुद्र से मोती निकाल कर ले आते हैं, और आपका वो कालू घर वालों को काटे और चोर के आने पर दुम दबा कर भागे।
0: स्वामी भक्ति की ऐसी परिभाषा केवल आप ही कर सकते हैं, मगर हमारा कालू ऐसा नहीं है।
1: ना ऐसा नहीं है तो ऐसा वैसा होगा।
0: आप होंगे क्या? आप हैं
1: जी।
0: भला ये भी कोई बात है, पहले हमारे बगीचे को अपना बताया और अब अपने खाज मारे लंगड़े डब्बू को हमारे कालू से बढ़िया बता रहे हैं।
1: अच्छे को तो अच्छा कहा ही जाएगा।
0: लेकिन आप ऐसा कह नहीं रहे, आपका दिल मानता है कि हमारा कालू कुत्तों का बेताज बादशाह है, लेकिन आप फिर भी अपने लंगड़े की शान बघाने चले जा रहे हैं।
1: यही बात तो मैं अपने डब्बू और आपके बारे में भी तो कह सकता हूँ।
0: लेकिन सच क्या है?
1: आप ही कहिए, क्या आपके कुत्ते का जबड़ा छोटा नहीं?
0: कहाँ छोटा है?
1: छोटा है।
0: नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मेरा मेरा बस चले तो मैं आपके डब्बू को कमेटी वालों से गोली लगवा
1: दूं। और मेरा बस चले तो मैं वही गोली। मेरा दिल फिर डूबने लगा।
0: आपको कुत्तों के बारे में इतना ही पता नहीं है कि
1: वो मेरा दिमाग फट रहा है। अब आप चुप हो जाइए।
0: जब तक आप ये ना मानेंगे कि हमारा कालू आपके डब्बू से 1000 गुना बढ़िया है, मैं कभी चुप नहीं होऊंगी।
1: अगर यही बात है तो बेशक चिल्लाइए, चीखिए, लेकिन मैं आपके उस मरियल कुत्ते की शक्ल के मेमने को कुत्ता नहीं कहूंगा। अगर वो आपकी संगत में कुछ दिन और रह गया तो वो दिन दूर नहीं जब वो बावला हो जाएगा। ओ मेरा कंधा, मेरी आंखें, अरे कनपटी कनपटी कनपटी।
0: और आपका कुत्ता तो जैसे टांग तोड़वाकर अमर हो गया है, और अब उसे कुछ होगा ही नहीं।
1: ओ मैं कहता हूँ खामोश हो जाइए, दुख से मेरा दिल फटा जा रहा है।
0: अब मैं चुप नहीं हूँ।
1: अरे अरे अरे, ये फिर क्या हो रहा है?
0: बाबा बाबा, आप सच सच कहिए, हमारा कालू अच्छा है या इनका लंगड़ा?
1: पहले आप ये बताइए, आपके कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं? पक्षपात किए बिना कहिएगा कि कालू का जबड़ा छोटा है या नहीं।
2: लेकिन फिर क्या हुआ पता है? हमारे कालू

0: आइवन, ये मत भूलो कि तुम्हें दिल की बीमारी है। हाँ। और मुझे गुस्सा बहुत आता है।
1: ओह।
0: और गुस्से की हालत में मैं बुरा भला बल्कि
1: आप अपने कुत्ते की हिमायत में मुझे धमका रहे हैं। अरे मेरा दिल फिर बड़ा जोर धड़कने लगा। हाय हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल,
2: हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। इस दिल से ये जंगल में शिकार खेलने जाएंगे बाबा। अजी आप, मैं कह रही हूँ रसोई घर में बैठकर मक्खियाँ मारा कीजिए।
0: मक्खियाँ उड़ाने के लिए कहो बेटी, इनका दिल बड़ा कमजोर है। आइवन, मैं तुम्हें जंगल में जाकर शिकार खेलने से रोकता नहीं हूँ। क्या पता कोई जानवर तुम्हारा शिकार बनने से पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना डाले।
3: अरे शिकारी को जानवर अपना शिकार बना ले और जानवर को अपना शिकार मैं बना लूं, ऐसा भी हो सकता है अगर किसी रात आप मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने चले।
0: आइवन, मुझसे ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
3: जब आप मुझसे ऐसी बातें बड़े गर्व से कहते हैं तो मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए।
0: तुम्हारा तो सर बन
3: गया। देर ही कितनी लगती है, लेकिन कारण भी तो बताइए। और जो स्वयं न समझ सके और दूसरों को समझा ना सके उससे तो आप कुछ कहेंगे नहीं।
0: हाँ। मैं कहता हाँ। हूँ जहर उगलने से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
3: आप क्या सिर फाड़ेंगे, गलियों में बच्चे तक जानते हैं। अरे मेरी जान, आपकी पत्नी भरे बाजार में आपको पीट दिया करती थी।
0: और तुम भी तो अपनी उस नौकरानी से छिपते फिरते हो।
3: मेरी टांगे आ गई, मेरा दिल कहाँ टूट गया। डॉक्टर, डॉक्टर,
0: कमीना, बेशर्म,
3: डॉक्टर,
0: गधा।
2: घोड़े पर सीढ़ी लगाए और स्वयं को शिकारी कहलवाए। पापा, पापा जरा देखिए तो इन्हें हुआ क्या है। आइवन, आइवन, बाबा आइवन चले गए।
4: क्या निताली, निताली, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो, तो मेरा दिल पीट रहा है। बेटी तुम मेरा एक काम करो।
2: क्या बाबा।
4: मुझे मेरा पिस्तौल ला दो।
2: जाने दीजिए बाबा, अब आप मरे को क्या मारेंगे।
4: अरे बेटी मैं पिस्तौल अपने लिए मंगवा रहा हूँ।
2: अपने लिए?
4: हाँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा।
2: नहीं नहीं नहीं बाबा नहीं।
4: अरे पिस्तौल नहीं तो मुझे चाकू ही ला दो, मैं अपना गला काट लूंगा।
0: ला दो ना।
4: अरे आइवन तो अभी जिंदा है। आइवन
2: जिंदा है।
4: लो लो पानी पी लो, पानी पी लो।
0: मैं कहाँ हूँ।
3: तुम जहन्नुम में हो जो तुम्हारे आने से पहले जन्नत थी।
0: हाँ?
4: अब तुम झट से उठ के बैठो और नितालिया से ब्याह कर लो।
0: हाँ। क्या?
4: हाँ पापा, हाँ नितालिया ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और वो तुम्हें बहुत चाहती है।
0: क्या सच?
4: चुप चुप। नितालिया बेटी लाओ अपना हाथ इधर लाओ।
2: पापा।
4: आइवन
0: जी, ये
4: नितालिया का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ और अब तुम लोग मेरा पीछा छोड़ो।
0: ओ बाबा, मैं आपका किस्मत से शुक्रिया अदा करूं। बाबा मैं बिल्कुल अच्छा हो गया।
4: अच्छा?
0: जी हाँ। हाँ तो वो बात क्या थी, मुझे कुछ कुछ तो याद आ रही है।
2: जी मैं बताऊं? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
4: और मेरा भी जी का जंजाल कटा।
0: हाँ याद आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा कि मेरा डब्बू आपके कालू से कई गुना बढ़िया है।
2: ये कई गुना घटिया है।
0: जी नहीं,
2: ये आपको मानना पड़ेगा।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: मैं कहती हूँ घटिया है।
0: जी नहीं, मैं कहता हूँ बढ़िया है। आश्रम की खुशियां तो अभी से। मैं कहता हूँ बढ़िया है।
2: बढ़िया नहीं है, घटिया है।
0: मैं कहता हूँ बढ़िया है।
3: तुम लोग
0: जी है, मैं ही यहाँ पे।

अभी आप सुन रहे थे इंटर्न चेखव की रूसी कहानी द प्रपोजल का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर विवाह का प्रस्ताव। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कामिनी कौशल, विनोद शर्मा और कमलाकर दाते। ये नाटक मधुप शर्मा के निर्देशन में विविध भारती के स्टूडियो में सन 1966 में रिकॉर्ड किया गया था। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
2: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
3: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपकी संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे,
4: हाँ,
3: और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, हाँ, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
4: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
3: हाँ,
4: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है, अब उसको सुन के लोगों को बजाना है, समझ गए?
3: जी।
4: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था।
3: जी।
4: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ, वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बिगड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बात बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींदे गई, मेरा चैन गया, कब जब होश ना था कुछ बात हुई, हाय मैं, ये जैसे गया।
3: हाँ।
4: अब आंखों की बनी तनम को बहुत भाव गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में देखो चली आ गई, कहां लाली गई। अब ये जो आता है,
3: हाँ,
4: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना, धिंता का, तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइफ म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक पे आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
3: बिल्कुल,
4: तो जैसे आपने बजाया बजाया तो जैसे ही जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट, दोबारा लेते हैं, तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या है कि जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे
3: जी,
4: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूँ, आज क्या क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं, फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस जॉइंट कर देते हैं, आज ये फैसिलिटी है। तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
3: नहीं आती है। जी जी जी
4: जी।
3: तो कोई एक गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था उन दिनों 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने

0: को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था,
1: एक
0: या
1: दिन
0: एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की
1: एक
0: रिकॉर्डिंग में?
1: दिन एक दिन
0: अच्छा,
1: एक दिन एक मैं एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विद सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विद कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11:30-11 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30-3 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार वो भी लाइव, 10:30-10 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए हैं
0: जी।
1: और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना 2 दिन में भी किए हैं।
0: हाँ जी
1: तो वो ऐसा नहीं है, वो 2 दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था
0: जी,
1: लाइव ऑर्केस्ट्रा भी, तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस, मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है, उनमें हेडफोन में उनको आता था जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून ये 98 के करीब के गाने हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
0: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था?
1: हाँ, ये पहले किसी और के था और अभिजीत आया था एक गाने की एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। देखिए जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की कृपा होती है, उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
0: बिल्कुल,
1: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और पेमिला जी, मतलब मिसेस चोपड़ा,
0: पेमिला जी
1: तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, तो बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है वो इसका टोन ज़्यादा बेटर है,
0: मिलता है,
1: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे इतने में यश जी आ गए, यश जी आते हम दोनों चुप हो गए, तो हम दोनों को देखते ही यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोलो नहीं बोलो तानसेन क्या बात है? मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है, और मैं बोला आप क्या आप चाह रहे हो? मैं बोला अभिजीत ज़्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ये हमारा काम है, म्यूज़िक का हमारा नहीं है, म्यूज़िक का काम है म्यूज़िक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है, तो ही इज नो वेरी वेल कि इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहा है कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तानसेन जी अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
0: क्या बात, और बहुत शानदार गाना गाया उसने।
1: नहीं नहीं बहुत अच्छा
0: आवाज में जो सैफ अली साहब की आवाज
1: सूट हुई, और
0: बिल्कुल सूट हुई।
1: नहीं और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का, उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, पर जैसे उनका महल का गाना आया आएगा, तो दीदी को लाइमलाइट में आना था
1: जी,
0: आई
1: जी।
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है,
1: बस उस पल का इंतजार होता है।
0: हाँ।
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ, मगर
1: वो
0: पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्य बर्मन जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भड़के,
1: अमर प्रेम का,
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूँ कि बस ये आइडियल चीज़ें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। तो मैं चाहूँगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: तो दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आर डी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज़ या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात, किशोरदा उस वक्त जिंदा थे,
0: और आर डी बर्मन
1: और
0: साहब से या
1: आर डी जी के साथ तो इसने काफ़ी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार।
0: अमित कुमार?
1: तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफ़ी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होके उनके पैर छूने के, बोले नहीं, सेन साहब के लड़के बहुत, वो जो उनका स्टाइल है,

0: नहीं आए, अमित नहीं आया, इतने में अमित नहीं जाएगा। तो उनको बोला, देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं ना, ये आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही।
0: और उसके बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही
1: जी,
0: तो जिसका वो गाना था, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना ना दिल से दूर
1: जी,
0: और नीरज साहब के साथ में एक पिक्चर की जाना ना दिल से दूर, विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था और नीरज साहब का लिखा हुआ था।

0: मेरे नू,
1: क्या बात है।
0: इसका अंतरा सुनिए आप। आंखें बरसे बदरा बरसे, अग्नि ना कोई बुझाए,
1: वाह सुन।
0: हाय।

0: तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने सुरमा भोपाली, माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफ़ी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत।
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के
0: माया
1: साथ आपने
0: गोविंद के
1: काम
0: साथ
1: किया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: नहीं,
1: माया
0: उनमें एक
1: गोविंद,
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी।
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा, वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना पहला गाना था, इससे
1: अच्छा।
0: पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा दिसेला दिलिया तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे, मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर
1: वो ये था।
0: वो ये था।
1: हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा
0: नहीं, वो
1: होगा?
0: गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहाँ काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है, तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी

0: एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैंने कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल्का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज़ कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। फिर सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया। और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
1: जी। तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है इसी पिक्चर में, धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम, शर्मा के होने लगी।

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे, और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहाँ दिल में नहीं लगोगे।
0: सही कह रहे
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज़ है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत, और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है, तो
0: जी।
1: इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूँ कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं ज़रूर कह देता हूँ कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूँ, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूँ, हाँ इस बच्चे में ये टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहाँ तक पहुँचाते। क्योंकि
0: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहाँ थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
1: नहीं,
0: कलाकारों के साथ काम किया है।
1: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
0: अनुराधा
1: अनुराधा
0: पौडवाल जी
1: जी,
0: हैं, अलका याग्निक,
1: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मना अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते हैं सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट,
0: अरे क्या
1: जॉली
0: बात।
1: मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, पैमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
0: पूर्णिमा के नाम से
1: पूर्णिमा
0: हैं।
1: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेठी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी जो मैं चाहता था, वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हों, सोनू जी रहे हों, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं,
0: जी
1: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए। और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
0: नहीं, वो
1: क्योंकि
0: बात नहीं है, वो
1: वो उनको
0: रिस्पेक्ट
1: पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट
0: और
1: कि
0: कला
1: यार
0: के
1: वहाँ
0: प्रति,
1: जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं करना
0: और
1: है,
0: कला के प्रति
1: हाँ
0: समर्पण।
1: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे हम उनके यहाँ से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
0: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
1: जी बिल्कुल, सुनिए।
0: कौन सा गाना?
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, हो

0: पे बस तेरा नाम है।
1: तुझे चाहना मेरा काम
0: काम
1: है,
0: है जी
1: फिल्म ये दिल लगी का गीत। बहुत सुंदर गीत है
0: जी
1: दिलीप
0: जी जी
1: संसार
0: जी
1: जी,
0: जी
1: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है और
1: नहीं, हम केसर सेन की औलाद हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में। लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी,
1: फोक कहते हैं आमद को। एक चीज आमद होती है, तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था,

0: तुगड रणत भवन सुं आयो विनायक। करवे न सीति विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस तरीके से करके जॉइंट करती थी रहती थी, तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली। जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं, मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है, वो एक ही जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
1: कई गीतों में आपने प्रयोग किया?
0: नहीं, मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
1: जी,
0: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, अमे की याते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे एडोप्ट किया उस गाने को। हम मेरी चोली के टूटे सब धागे अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
1: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि वही
0: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो।
1: अब
0: नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक ट्यूने के आसपास की नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को हम उठा के दे रहे हैं। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जहाँ हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वैरायटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले, नहीं आ रही है ये दिलीप सेन जा रहा है, या नहीं अरे ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं, ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं। आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: जी तब लगेगा जब जी वाला काम, दूसरों का दिल जीतोगे।
1: जी चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं। कौन सा गाना?
0: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
1: बहुत सुंदर गाना,
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी 5वीं पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में
1: जी
0: मिला,
1: हाँ,
0: इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: देखिए दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूँगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं,
0: जी
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये 4 जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक,
0: अच्छा
1: 4 पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर।
1: सफर जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी
1: संगीत
0: जी
1: में रहा है।
0: जी जी
1: और 5वीं पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर, जो सोहेल का बेटा है,
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ
1: बेटे
0: गए
1: भी आने वाले हैं अभी
0: हैं
1: जल्द। जी
0: जी तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो
0: जी
1: आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए,
0: जी
1: कविताओं की मालूमात रखनी
0: भाषा
1: चाहिए,
0: की।
1: भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं

0: आनी चाहिए शायरी उर्दू, जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें, मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज़ तो सही करा सकें। तो ये जो चीज़ें हैं सिंगर के लिए भी ज़रूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं है कि 100 राग हैं या 50 राग हैं या बेसिक 2-4-5, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण या भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो 4-5 रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो। कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
1: उसे रखिए।
0: उसे आप कायम रखिए। क्यों? कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है,
1: जी
0: हमारी संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है, हम हर
1: जी
0: धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है,
1: जी
0: प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए, आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
1: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं।
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश।
1: मैं आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूँ कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी,
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटाटा जब प्रभाव तुंग मार जटाटवी गलत ज्वल प्रभाव भावित स्थले, ये शिव तांडव हो गया
0: जी।
1: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेटे दिल अंगूर के झपेटे दिल दुष्ट को दपेटे चरपेटे चकलान बजे नक चरा तथ तथ तो होता कटाकट की रिसे ने पटा पटे पटी पटी पाट कभी गुह की लकार की लजू हो जे लकार पड़ी भीड़ भी लकार कटे रखे जनी दान तह तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारा सीताराम को उजारो रघुवंश को अनियारो जन पे जे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुंड दंड न उमन न सुखन न कल को भूपत दरत को न वेलो अल बेलो न रेलो रूप रेलो चल राग सनी कर को आन सकते की रहते उमंडी खल खानी चंडी पति सो कमंडी कुल खानी दिने कर को। ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मेरी आवाज में ही रिकॉर्ड है। और इसी से ये जो रैप बना है, जो बोलते हैं ना लोग परदेश का है, कहीं का नहीं, ये हमारे छंद है। आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, चले मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा।
0: अच्छा,
1: तो इससे आप कुछ भी रैप वगैरह बना सकते हैं। तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। इसलिए आपके पूरे परिवार को, आकाशवाणी को, विभूत भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, नमस्कार।
0: बहुत खूब, और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार,
1: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर हैं।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म

0: ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
0: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक स्वामी विवेकानंद की 1892 में मैसूरू की ऐतिहासिक यात्रा की याद में बनाया गया है, जब उन्होंने मैसूर के दीवान सर के श्रेष्ठाद्री अय्यर से मुलाकात की थी और शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा के लिए मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारक का भ्रमण किया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने स्मारक में एक पौधा भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
4: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
3: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट निपटान किया जा चुका है और शेष अवशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई गई। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा सेवानिवृत्त का आज नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल सुबह 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और

0: आशा फिल्म से ली गई ये भेंट अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज़ों में। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
1: एक प्रकार से पीएम

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच।

0: तो युवा साथियों, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और मैं हूँ आपके साथ नर्मदा शर्मा। और आपको पता है आज शनिवार है, और शनिवार को आज हम बात करते हैं अपने जीनियस से लाइव फोन इन पर। तो आप सभी श्रोता हमें फ़ोन कर सकते हैं, सभी श्रोता मतलब हमारे युवा साथी आज के इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन कर सकते हैं। और फ़ोन करने के लिए नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर हम आपको एक बार फिर से बता दें, 01892224391। तो फ़ोन ज़रूर करिए, हम करेंगे बातें। और साथ ही साथ आज टेस्ट होगा, मतलब जैसा कि हर शनिवार होता ही है, आपसे बात होती है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं, चलिए बातें करते करते। हमारे साथ एक हमारे युवा साथी जुड़ भी गए हैं, तो चलिए बात करते हैं कौन से युवा साथी जो हैं वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो,
1: मैं
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सिमरन बोल रही हूँ,
0: सिमरन, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: ब्रो से।
0: ब्रोट? ब्रोट से?
1: मैं
0: अच्छा, तो क्या करती हैं सिमरन आप?
1: पढ़ाई करती हूँ
0: कौन सी क्लास में?
1: +1।
0: +1 में। और विषय क्या लिए हैं आपने +1 में?
1: आर्ट
0: आर्ट्स लिया है। तो और शौक भी कुछ हैं खास जो बताना चाहें आप?
1: नो
0: अच्छा, सब्जेक्ट आपके क्या हैं आर्ट्स में, क्या क्या लिया है आपने, मतलब कॉम्बिनेशन क्या है?
1: मैम, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है,
0: पॉलिटिकल साइंस
1: हिंदी
0: और
1: है, हिस्ट्री, इंग्लिश,
0: अच्छा हिस्ट्री है ना?
1: हिंदी, रिटेल।
0: हाँ, और वैसे भी सोशल स्टडीज़ तो आपने पढ़ी है ना 10th तक। चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताएंगी। अच्छा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है ना, पढ़े है ना आपने 10th तक, वो कितने हैं? हेलो सिमरन
1: हेलो,
0: जी,
1: यस
0: हाँ कुछ बताएंगी? अच्छा ये
1: मैम,
0: बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
1: महासागर।
0: हाँ ये तो सबको पता होगा, सबसे बड़ा महासागर।
1: महासागर
0: नाम पता है कौन कौन से महासागर हैं?
1: नहीं।
0: अच्छा नहीं पता है, आपने सोशल स्टडीज पढ़ी है ना 10th तक? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, कुछ अपनी तरफ से कहना चाहती हैं?
1: नहीं।
0: नहीं, चलिए शुक्रिया सिमरन, आपने फोन किया,
1: थैंक यू
0: फोन
1: मैम।
0: करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: तो युवा मंच कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अपने जीनियस से। तो चलिए देखते हैं कौन आज इस कार्यक्रम में फिर से आए हैं। हेलो, चलिए इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से देखते हैं। हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार मैम, मैं रविंदर बोल रहा हूँ। मैम
2: कहाँ से बोल?
3: ज्वाली से मैम, ज्वाली से। मैम
2: ज्वाली से बोल रहे हैं जी। क्या करते हैं आप?
3: मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ।
2: अच्छा, कौन सी स्ट्रीम है आपकी?
3: मैम आर्ट्स रखा है मैंने।
2: आर्ट्स रखा है। और शौक क्या है आपके?
3: शौक मैम गार्डनिंग, कुकिंग करना मैम।
2: अच्छा, कुकिंग भी करते हैं, गाने सुनते हैं।
3: और अभी भी मैं खाना बना रहा हूँ साथ साथ में और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ साथ में।
2: अच्छा, खाना आप बनाते हैं तो आप मतलब कहीं पे रूम लेके रहते हैं जैसे पढ़ाई के लिए या?
3: नहीं मैम, यहीं पे साथ में कॉलेज है, यहाँ पे डेयरी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वहीं पे।
2: अच्छा, मतलब अपने घर में ही आप खाना बना रहे हैं? क्या बात है, मतलब वो ऐसी माएं बहुत खुश नसीब होती हैं कि बेटे खाना बना के खिला रहे हैं ना।
3: अच्छा लगता है, नई नई चीजें ट्राई करना। आज हम कड़ी बन रही है।
2: कड़ी बना रहे हैं? अच्छा अच्छा
3: जी मैम,
2: ठीक, बहुत अच्छी बात है। कुछ होता है ना? अच्छा, कौन सा डिश जो है आपकी उसमें स्पेशल है जो आपको बहुत पसंद है?
3: चंबा का मदरा बना देता हूँ।
2: किस चीज का मदरा?
3: चंबा, चंबा का जो राजमा का मदरा होता है ना।
2: हाँ जी हाँ जी,
3: I am expert in making राजमा मदरा।
2: क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। चलिए अब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं हम।
3: जी जी मैम।
2: कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपकी है लेकिन उसका उपयोग जो है ना आपसे ज्यादा कोई दूसरे लोग करते हैं?
3: हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी।
2: नहीं, तो आपकी पर्सनैलिटी का यूज कोई दूसरा कैसे कर सकता है?
3: हो सकता है डिसीजन मेकिंग।
2: नहीं, कोई इतना बात नहीं बनी।
3: चलो मैम फिर,
2: मतलब दूसरे लोग उस चीज को ज्यादा यूज करते हैं, है आपकी?
3: सॉरी मैम, अभी तो
2: नहीं पता। चलिए हम बता देते हैं, आपका नाम
3: ठीक है
2: ना? आपका नाम, खुद तो कोई भी अपना नाम यूज नहीं करता है सिवाय बताने के कि मेरा नाम ये है, है ना? जब से भी नाम रखा है बचपन से, मतलब दूसरे ही बुलाते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो मैम,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते। नमस्कार मैम।
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएंगे।
1: मैम मेरा नाम रजनीश है
0: रजनीश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैम, प्रॉपर मैं रहने वाला तो यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ, और इस टाइम मेरी जॉब है मैक्लोडगंज में।
0: मैक्लोडगंज में आप जॉब करते हैं? क्या जॉब करते हैं?
1: जी मैम मैं कुकिंग करता हूँ, तो मैं
0: अच्छा,
1: रेस्टोरेंट पे जॉब करता हूँ।
0: रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं। अच्छा, चलिए, आज कुकिंग वालों के फ़ोन आ रहे हैं। कल संडे है इसलिए शायद, है ना, आज कुकिंग का काम संभाला है। आप तो चलो
1: जी मैम,
0: रेस्टोरेंट में काम करते हैं, चलिए अच्छी बात है।
1: वीकेंड पे रश पड़ जाता है बहुत ज़्यादा।
0: जी, हाँ, ये तो है, धर्मशाला मैक्लोडगंज में
1: जी
0: सैटरडे संडे तो बहुत रश रहता है। तो क्या
1: जी
0: क्या खास बनाते हैं आप?
1: एक्चुअली मैम खाना तो बहुत ज़्यादा मेनू कार्ड तो बहुत लंबा है, वैसे ज़्यादा फोकस ज़्यादा रहता है राजमा राइस, कढ़ी राइस, छोले राइस, और आपका आलू टिक्की चाट है, छोले समोसे हैं, दही भल्ले हैं,
0: अच्छा,
1: पापड़ी चाट है,
0: वाह, क्या बात है,
1: और चिली पकोड़ा है मैम, ब्रेड पकोड़ा है, पनीर पकोड़ा है, बहुत सारा आइटम बहुत है मैम।
0: मुंह में पानी आ गया ये सब सुन के।
1: बिल्कुल मैम, आप आइए मैम।
0: बरसात के मौसम में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं ना।
1: जी मैम
0: अच्छा, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं?
1: जी
0: किस
1: मैम
0: तरह से
1: बिल्कुल,
0: रखते हैं?
1: ज़्यादा फोकस मैम साफ सफाई का ही होता है।
0: ज़्यादा फोकस है ना, कि तभी होता है कि दूसरों का भी ध्यान रखा जाए, अपनी सेहत का भी और दूसरों के लिए भी। ठीक, अच्छा,
1: जी
0: रेडियो धर्मशाला आप कब से सुनते हैं?
1: एक्चुअली मैं तो विविध भारती के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बहुत पुराने टाइम से सुनता हूँ,
0: अच्छा,
1: और मेरी हॉबी है बस विविध भारती के सारे जितने भी ओल्ड प्रोग्राम है, अभी आता नहीं, कुछ प्रोग्राम पहले होते थे जैसे जयमाला प्रोग्राम होता था मैम।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गीतों का प्रोग्राम
1: हाँ जी
0: होता
1: वो
0: था
1: नहीं
0: ये।
1: आता, उसको मैं बड़ा मिस करता हूँ मैम।
0: मैं बात कर रही हूँ आकाशवाणी धर्मशाला की, यहाँ के
1: जी
0: कार्यक्रम
1: मैम,
0: आप सुनते हैं?
1: जी मैम
0: जी, अच्छा, आपके काम करते करते रेडियो लगा रहता होगा ना, खाना बनाते
1: बिल्कुल
0: हैं
1: मैम,
0: साथ में, और
1: और ये कस्टमर होता है ना मैम, उसको एंजॉय करता है।
0: जी, बिल्कुल
1: जी मैम,
0: बिल्कुल। अच्छा, तो आपने रेस्टोरेंट में लगा के रखा होता है रेडियो?
1: जी जी मैम।
0: अच्छा, तो आपसे क्या पूछें आज हम?
1: मैम एक्चुअली मुझे ज्यादा इसके बारे में, अपनी लाइन में तो बहुत नॉलेज है। हाँ मेरे मेरे काम से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं आप,
0: क्या चीज?
1: मेरे काम से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो आप मैम।
0: हाँ, आपका काम खाना बनाने का है, तो हमें कोई
1: जी जी मैम,
0: ऐसी डिश बताएं कि जो जल्दी से बन जाती हो और बहुत स्वाद बनती हो।
1: एक्चुअली
0: अगर
1: मैम एक
0: अचानक से कोई
1: तो
0: आपके पास कस्टमर आ जाता है,
1: जी
0: और वो कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी चीज़ की उन्होंने डिमांड कर दी हो जो आपके पास ऑलरेडी तैयार नहीं है?
1: जी मैम, एक्चुअली दो तीन आइटम ऐसे हैं जो आप फटाफट रेडी कर सकते हैं मैम, जैसे कि कढ़ाई पनीर है, कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, नहीं,
0: जी
1: केवल
0: जी
1: आपको 3 सब्जियां लेनी है, टमाटर, ऑनियन और कैप्सिकम मैम।
0: बिल्कुल, हाँ,
1: जी मैम, ये ज़्यादा फोकस है, और थोड़ा सा हल्का सा आपको अजीनोमोटो लेना है, और वेगनर लेना है, और हल्का सा पनीर,
0: जी,
1: पनीर अगर
0: और
1: थोड़ा सा टाइम हो तो रोस्टेड कर सकते हैं आप।
0: हाँ, और स्वाद सी डिश आपकी तैयार होगी।
1: और आप मैम आ गए ना एक बार, तो मैं आपको खिलाऊंगा जरूर।
0: जरूर जी, जरूर हम आएंगे आपके पास, और आपके हाथों का जो स्वाद है उसको जरूर हम चखेंगे। ठीक है, आपके
1: जी
0: हाथों
1: जी
0: से जो
1: मैम,
0: भी डिश आप बनाते होंगे। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम कनिका। मैं
0: कनिका कहाँ से बोल रही हैं?
1: मुंडा से।
0: चामुंडा से। कनिका क्या करती हैं आप?

0: पढ़ती हूँ।
1: कौन सी क्लास में?
0: नाइन्थ।
1: अच्छा, नाइन्थ में। तो आपके शौक क्या हैं?
0: जी
1: आपके शौक क्या हैं? पढ़ाई तो करती हैं, पढ़ना अच्छा लगता है?
0: जी
1: अच्छा, और इसके सिवाय जैसे खाली टाइम मिलता है अगर आपको, तो क्या करना पसंद करती हैं?
0: जैसे काम हो, स्कूल का वो कर लेती हूँ,
1: घर
0: घर का
1: का
0: काम
1: काम,
0: बता देती हूँ,
1: घर का काम।
0: घर का काम कर देती हूँ थोड़ा सा।
1: अच्छा, तो मतलब जो खाली टाइम होता है आपको खेलने के लिए या अपना कुछ शौक पूरा करने के लिए मिलता है, उसमें भी आप काम करती हैं। ये पहचान होती है लड़कियों की ना, उनको घर में अपने मम्मी के साथ काम करना अच्छा लगता है ना। अच्छा, सहेलियों के साथ भी आप कभी जाती हैं घूमने,
0: हाँ जी
1: या जैसे शाम को आपको टाइम मिला तो इकट्ठे हो गए कहीं, ऐसा होता है?
0: हाँ जी होता है। हाँ
1: अच्छा, नाइन्थ क्लास में है ना आप।
0: जी
1: अच्छा, आपको पता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं?
0: मिसाइल मैन
1: मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? नहीं पता? अच्छा, और आपसे क्या पूछा। अच्छा, मौलिक अधिकार। हाँ, हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, ये तो अभी आप पढ़
0: पांच।
1: रही होंगी। नाम?
0: जीवन का
1: हाँ जी,
0: मौलिक अधिकार
1: हाँ मौलिक अधिकार पूछा मैंने।
0: जी मौलिक अधिकार है एक, और एक
1: कौन से अधिकार हैं वो? छः।
0: हिंदी
1: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे सुना है नाम आपने? पढ़ाई
0: हाँ
1: ये
0: जी
1: पढ़ा है आपने?
0: हाँ जी
1: हाँ, तो इसी का पूछ रहे हैं हम। कितने हैं? छः है ना?
0: सात।
1: नाम नहीं याद आपको?
0: नाम थोड़ी थोड़ी याद थे।
1: छः मौलिक अधिकार हैं हमारे। हाँ, आपको तो वो पहले था, मूल रूप से एक संविधान सात अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है ना अब, है ना? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सबको बराबर अधिकार है, महिलाएं हों पुरुष, मतलब लड़कियां हों उनको भी पढ़ने का भी अधिकार। ठीक, चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो और भी, है ना, अपनी किताबों से अलग। ठीक है, और कुछ कहना चाहती हैं खुद तुम? चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत फ़ोन करने के लिए,
0: हाँ
1: और
0: जी
1: हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: हेलो मिस्टर जी, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं वरिंदर कुमार बोल कर रहा हूँ, नंगल चौक से।
0: नंगल चौक से जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी, बेल्डिंग का काम करते हैं।
0: बेल्डिंग का काम करते हैं, चलिए। और साथ में रेडियो सुनते हैं, है ना
1: जी।
0: नंगल चौक में मौसम कैसा है?
1: मैडम धूप खिली हुई है।
0: धूप है, अच्छा, गर्मी है वहाँ पे, है? बारिशें नहीं हो रही?
1: बारिश आज सुबह हुई थी
0: जी।
1: और जो ये उमस भरा मौसम है, बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ जी, वो तो है, बारिश के बाद फिर गर्मी जो निकलती है
1: गर्मी
0: ना,
1: नहीं बोल सकते इसको, इसको आप उमस बोल सकते हैं।
0: हाँ, ह्यूमिडिटी होती है ना, वही तो रहता है बरसात में। ठीक। तो और आपने पढ़ाई क्या की है?
1: पढ़ाई मैडम प्लस टू तक पढ़े हैं
0: जी। और उसके बाद बेल्डिंग का काम शुरू कर दिया? ठीक। अच्छे से काम चलता है?
1: जी, बिल्कुल।
0: अच्छा, तो आपसे पूछ सकते हैं हम कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है?
1: प्रशांत महासागर।
0: वेरी गुड।
1: मैडम
0: और
1: ये तो
0: हाँ,
1: मेरे लिए तो ये नॉर्मल जैसी बातें हैं,
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्योंकि तो पिछले सैटरडे को भी मैंने कॉल किया था तो मैंने
0: अच्छा
1: बताया
0: अच्छा
1: था तो।
0: तो अच्छा, तब भी लग गई थी आपकी कॉल
1: जी
0: और तब भी आपने दे दिया होगा जवाब, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम आपसे कुछ और पूछते हैं। ब्रेन टीजर, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तोड़ने पर आवाज़ नहीं आती है?
1: ऐसी कौन सी चीज है?
0: हाँ,
1: वो निर्जीव वस्तु है या सजीव है?
0: वो एक इमोशन बोल सकते हैं?
1: वो उसको तो फिर दिल ही बोल सकते हैं।
0: नहीं,
1: भरोसा, विश्वास।
0: हाँ, विश्व ये हो सकता है बिल्कुल, कि तोड़ने पर आवाज़ नहीं आती है। दिल तोड़ेंगे तो फिर दर्द तो होता है, आवाज़ भी शक नहीं होती है। हाँ, और हमारा जवाब था वादा, है ना? किसी से वादा जब तोड़ते हैं तो कोई आवाज़ नहीं। भरोसा भी ठीक है आपकी बात,
1: जी
0: भरोसा भी जब टूटता है तो आवाज़ तो नहीं आती है ना? शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: जी मैडम, कुछ भी नहीं, धन्यवाद।
0: चलिए, शुक्रिया फोन करने के लिए।
2: चंद तारे लगा दो बस शावर से फ्लावर।
0: तो युवा साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप फोन कर सकते हैं 01892224391 पर, और बात कर सकते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं अगर आपको याद हो तो।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो जीनियस।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार जी,
2: कौन बोल रहे हैं?
3: मैं विपिन ठाकुर बोल रहा हूँ जी।
2: विपिन ठाकुर जी, आप क्या करते हैं?
3: मैं शॉप करता हूँ जी।
2: अच्छा ठीक, लेकिन ये कार्यक्रम जो है हमारा, हमारे युवा साथियों के लिए है। चलिए, फिर भी आपने कॉल की है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
3: मैं तो आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ।

0: जी थैंक यू।
1: वेलकम जी।
0: और आपके शौक क्या हैं? शॉप के साथ साथ कुछ
1: नहीं, शॉप ये जनरल स्टोर है मैम जी।
0: जनरल स्टोर है आपका? हाँ, तो
1: जी
0: इसके
1: जी
0: साथ साथ कुछ शौक भी रखते होंगे अलग से कुछ?
1: अब शौक तो घूमने फिरने का, यह ट्रैकिंग ट्रुकिंग का।
0: अच्छा, ट्रैकिंग करते हैं आप?
1: जी,
0: तो कौन कौन सी जगह अभी तक आपने घूम ली हैं?
1: जैसे मंदिर की बात करूं तो अमरनाथ, फिर
0: अच्छा
1: अपना मैं अपना त्रिलोकीनाथ,
0: जी, अच्छा बहुत दूर दूर जाके
1: फिर
0: आए
1: हाँ
0: हैं।
1: जी, फिर ये अपना ये इसमें पड़ा आपका वृंदावन।
0: वृंदावन, ठीक
1: जी।
0: जी,
1: उसके बाद तो अपने लोकल तो है ही है, जैसे चमंडा है, कांगड़ा है,
0: अच्छा
1: ज्वाला जी, सिद्धपुरनी,
0: हाँ हाँ
1: नैना
0: हाँ
1: देवी,
0: जी, अच्छा सभी, मतलब लगभग
1: बैरीनाथ।
0: आपने सभी मंदिरों में आपने विजिट कर ली है।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ एक है अपना बनारस में है, वहाँ की आए
0: अच्छा
1: मंदिर
0: जी,
1: जी, यहाँ
0: ठीक।
1: तक भी।
0: तो मंदिरों में ही जाते हैं, और भी कोई जगह और भी पसंद है आपको, या
1: मैक्सिमम
0: मंदिरों में जाना
1: तो
0: अच्छा लगता है?
1: नहीं, ट्रैकिंग तो जैसे पहाड़ों पे जाना है, जैसे
0: हाँ, ट्रैकिंग के लिए जाते होंगे ना।
1: जैसे हमारे यहाँ लोकल खबरू पड़ जाता है, करेरी
0: अच्छा
1: लेक, वहां
0: जी,
1: पे मुता जाना था
0: तो
1: मैक्सिमम
0: अभी
1: तो वो
0: भी
1: लोग।
0: जाते हैं आप ट्रैकिंग पे?
1: जी,
0: अच्छा,
1: हमारी में जाते हैं, जैसे
0: ग्रुप में जाते होंगे क्या, अपने
1: कभी
0: फ्रेंड्स के
1: ग्रुप में।
0: साथ?
1: जी, फैमिली के साथ जाते हैं, जैसे दूर के मंदिर हैं वहां पे, और लोकल जो है तो
0: हाँ नहीं,
1: दोस्तों के
0: ट्रैकिंग की
1: साथ।
0: बात कर रही हूँ, जैसे ट्रैकिंग पे जाना है तो
1: अब तीन चार
0: आप
1: आदमी हो जाते हैं, चार पांच आदमी का ग्रुप
0: इकट्ठे
1: हो जाता है
0: मिलके
1: हमारा।
0: जाते हैं।
1: जी,
0: अच्छा, तो कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं आपके अभी तक, कोई खास एक्सपीरियंस जो आपको बहुत याद आती हो? कभी कई बार होता है ना कुछ, कोई डरावना आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, या बहुत
1: ऐसा
0: अच्छा
1: तो
0: किसी भी
1: लाइफ में
0: तरह?
1: कभी हुआ नहीं, बट एक बार हम यहाँ हिल में गए थे ना, वहाँ जो खबर उसे ऊपर पड़ता है, वाटरफॉल से ऊपर, वो
0: अच्छा
1: 7 किलोमीटर आगे,
0: जी,
1: पैदल ट्रैकिंग है वो भी, 7 किलोमीटर आगे,
0: अच्छा
1: लेकिन एक तरफ की 13 किलोमीटर हो जाती है।
0: अच्छा
1: तो वहाँ पे हमने जो हमारे लुप्त प्राणी जानवर हैं
0: जी,
1: वो देखे हमने,
0: अच्छा। और वहाँ पे मैंने सुना मोर भी है ना?
1: मोर तो मैम ऊपर हिल एरिया में नहीं होते हैं।
0: पीछे सॉरी, कुछ लोग गए थे तो वो वहां से पंख, मोर पंख लेके आए थे, तो कहते वहीं पे
1: शायद
0: थे, है ना? तो
1: मुनाल होता है, मुनाल
0: मोनाल के तो वैसे मोर की तरह
1: कगली,
0: पंख नहीं होते ना,
1: कगली होती है ना उसकी तो।
0: तो कगली नहीं, उसमें फर्क है ना, जो मोर पंख
1: जी
0: होता
1: जी
0: है ना, तो
1: हाँ जी, हाँ
0: सेम
1: जी, जी
0: वैसा उन्होंने दिखाया था, मोर पंख लेके आए थे वो दो,
1: हाँ जी,
0: तो उससे लगा कि भी इधर भी मोर पंख, मोर हो सकते
1: शायद
0: हैं
1: आ
0: ना
1: जाते हैं कभी।
0: ऐसे। वैसे ठंडे इलाके में कम होते हैं ना मोर,
1: हाँ जी जी
0: सुना
1: जी
0: नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये तो ठंडा
1: हमारे
0: एरिया
1: निचले
0: है।
1: एरिया में पाए जाते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी, तो लेकिन उनको मिले थे, तो ऐसा हो सकता है कि
1: चलो
0: हो
1: गुड
0: वहाँ
1: लक
0: पे।
1: उनका।
0: जी चलिए, बहुत
1: जी
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
1: थैंक यू मैम जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया।
0: जी शुक्रिया, हम तो इसीलिए बैठे हैं।
1: थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी।
0: तो आइए सुनते हैं एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित वरीले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोता, सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। मौजा ग्राइंदिया कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर और किसानवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 7:10 पर।

आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से इस सप्ताह संसद में, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए कार्य कर रही है और भ्रष्टाचार से संपत्ति कमाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंबा में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य की संपदा को बचाने के लिए सत्ता में आई है। उन्होंने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में FIR दर्ज करने को सही ठहराया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में उनके खिलाफ पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के बयान को भाजपा का झूठा प्रचार करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और रजनी पाटिल उनकी कार्यशैली से बहुत खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार पर जल्द फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के साक्षात्कार का परिणाम जल्द घोषित करने की भी बात कही।
1: अगर भाजपा के विधायक 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसका स्रोत नहीं पता लग रहा है, तो हम तो प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए आए और कुछ लोगों महज अपने धन को दुगना करने के लिए राजनीति में आए हैं। जो भी भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति है, चाहे वो कितने ही बड़ा नेता क्यों ना हो, सरकार उसको बिल्कुल नहीं बख्शेगी। रजनी पाटिल जी हमारी इंचार्ज है और ऐसी कोई रिपोर्ट की बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में चले हुए पर विश्वास करेगी तो इस पार्टी का भगवान ही मालिक है।
0: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का 18% शिक्षा पर खर्च कर रही है। रोहित ठाकुर ने आज केंद्रीय विद्यालय कोटखाई में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ आयोजित संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में शिक्षा विभाग में लगभग 15,000 पद खाली थे, जिनमें से करीब 9,000 पदों को अभी तक भरा जा चुका है, जबकि 3,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति और शैक्षणिक सत्र का आरंभ क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने इस मौके पर DAV महाविद्यालय कोटखाई में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन भी किया। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: बाकी समाचारों में, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विभाग पंचायतों द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के लिए नई नीति तैयार कर रहा है। इस नीति से भविष्य में पंचायतों द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें भी निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप हो सकेंगी। विक्रमादित्य सिंह आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत धामी स्थित मिनी सचिवालय में जन शिकायतें सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायतों द्वारा निर्मित कई सड़कें विभागीय गुणवत्ता मान पर खरी नहीं उतरती। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि धामी क्षेत्र में सड़क, पेयजल और बिजली सुधार पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। शाहपुर के विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो नड्डी स्थित डल लेक में शीघ्र ही आरती शुरू की जाएगी। पठानिया ने आज स्तोबरी में भतल्ला और कजलोट पंचायतों की समस्याओं पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि डल लेक का अपना धार्मिक और पर्यटन महत्व है और यहाँ वर्ष भर पर्यटकों का आना लगा रहता है। स्वास्थ्य मंत्री के चुनाव क्षेत्र सोलन में स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं सुधरने के चलते आम मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में सिर्फ एक ही पर्ची और फीस काउंटर होने के चलते लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इन मरीजों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारी लाइनों की परवाह किए बिना अपनी जान पहचान वालों की सरेआम तरफदारी कर रहे हैं। इससे परेशान लोगों ने आज अस्पताल में हंगामा किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि अस्पताल में फीस और पर्ची काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए ताकि उन्हें लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सुरमई सांझ।

आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं और फिल्म है प्रेम बंधन।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोतो सदाबहार नगमे में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ में। दोस्ती फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत, कार्यक्रम है सुरमई सांझ, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आरती मुखर्जी की आवाज में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मासूम से।

जब प्यार किसी से होता है, इसी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है मेरे सनम और गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी।

श्रुतो, इस गीत के साथ ही आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौज जागरा इंडिया।

मौजां कराई दिया। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागबान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। और आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त कृषि पद्धति है जो बीजामृत, जीवामृत और आच्छादन जैसे मुख्य स्तंभों पर आधारित है। इस पद्धति में रासायनिक खादों या कीटनाशकों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि स्थानीय प्राकृतिक व पशु आधारित संसाधनों का प्रयोग होता है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे और साथ में आपको आपका मनोरंजन करेंगे गीत संगीत के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये लोकगीत।

0: सी ए, एम बी ए, एम ए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
1: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
0: नए सत्र के लिए प्रवेश आरम्भ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितम्बर 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
2: मौजा कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि इसमें मुख्य आधार जो है बीजामृत, जीवामृत और आच्छादन होते हैं। बीजामृत की बात करें तो बुवाई से पहले बीजों को गाय के गोबर, मूत्र और चूने से बने घोल से उपचारित किया जाता है। जीवामृत में मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन का घोल खेत में दिया जाता है। फसल के अवशेषों या सूखे पत्तों से मिट्टी को ढककर नमी तथा तापमान को संतुलित रखने को आच्छादन कहते हैं। वातायन मिट्टी के भीतर हवा और पानी के उचित संचार को बनाए रखता है। प्राकृतिक खेती की बात करें तो इसके लाभ अगर हम बताएं आपको तो कम लागत रहती है, क्योंकि महंगे रसायन, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भूमि की उपजाऊ शक्ति और प्राकृतिक जैव विविधता लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तो ये है मिट्टी की उर्वरता, स्वास्थ्यवर्धक रहती है। रसायन मुक्त फसलें खाने से इंसानों और जानवरों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, और मिट्टी की नमी बरकरार रहने से पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, और इस तरह से जल संरक्षण भी हो जाता है। तो और भी हम आपको जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। एक ब्रेक के बाद सुनते हैं ये लोकगीत।

तो हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी के साथ साथ गीत संगीत यानी लोकगीतों का भी आप आनंद ले रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा गीत सुनकर। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। तो अगर हम बात करें कि ये शुरू किसने की थी यानी प्राकृतिक खेती के जनक कौन थे, तो विश्व स्तर पर जनक जापानी दार्शनिक मसानोबू फुफुओका हैं, जबकि भारत में इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सुभाष पालेकर को जाता है। जापान के कृषक ने बिना जुताई, बिना खाद और बिना कीटनाशक वाली प्राकृतिक खेती डू नथिंग फार्मिंग की शुरुआत की थी, और भारत के सुभाष पालेकर ने भारत भी शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की पद्धति को विकसित किया था। सुभाष पालेकर के जीवन और प्राकृतिक खेती की पद्धति बहुत ही कारगर सिद्ध हुई थी और तभी से भारत में भी नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती शुरू की गई थी। तो आइए ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक गीत, लोकगीत।

0: तो मौजा ग्राइंदियाँ कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती बाड़ी के बारे में। तो अब हम आपको सुनवाएंगे उन्नत किसान प्रदीप कुमार के साथ की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है कुशल कुमार यानी किसान मित्र।
1: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी बीच अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन नोइयां ते नोइयां जानकारियां अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वो अहां दे कृषि विज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियां सोगी कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी बीच अज इक उन्नत किसान अहां दे टियाले पर आए होए न, करदे न इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी।
1: जी अपना नाम दसा।
2: मेरा नाम प्रदीप कुमार।
1: हां जी।
2: ब्लॉक नोटा सूरिया।
1: अच्छा।
2: गांव गेरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील जवाली।
1: जी प्रदीप जी खेती बाड़ी करते हैं ना?
2: हाँ जी सर।
1: अच्छा कितना के अरसा हुई है खेती बाड़ी कर?
2: जब ते बचपन ते स्टार्ट है, जब ते माँ माता पिता दे चलो ते करते थे, इस दौरान ते करते आओ दे खेती बाड़ी किसान अपने खेतों च।
1: प्रदीप जी किन्नी की जमीन है तो हवाल?
2: 5-6 कनाली जमीन है मेरे इस टाइम ना।
1: अच्छा।
2: किले से दी वैसे तो ज्यादा है पर किले जी होंगी 5-6 कनाली।
1: अच्छा ये सारी हल बहन है 5 कनाल है ना?
2: हाँ जी हाँ जी।
1: तो क्या क्या लगाते तो 5 कनाल?
2: 5 कनाल च कणक हुई, छलियां हुई, तिल हुई, माह हुई, सब्जियां गल करिए तो अजे गोभी हो गई या फिर रॉस बीन हो गई या फिर धनिया हो गया।
1: अच्छा।
2: लसन हो गया, प्याज हो गए, इस प्रकार दे जितने भी खेती दे संबंधित जो होंगे वो बांधते ना अपने।
1: अच्छा यानी कि थोड़ा थोड़ा सारा करते कने मिश्रित खेती करते हैं।
2: खेती हाँ जी।
1: अच्छा प्रदीप जी सबसे पहले गल आती है बीज की, तो बीज कुतू ते लेंदे तो घर के भी होंगे या फिर बाजार से?
2: नहीं बाजार से लेंदे, ब्लॉक से नोटा सुनिया ब्लॉक से ले लेंदे कुछ।
1: अच्छा।
2: कुछ जियां लसन वगैरह का होंगे या वो पहले तो जियां अपना किट्ठा करके रखे होंगे पिछले साल वाला उसी यूज करते हैं।
1: अच्छा
2: जी
1: जी। तो जियां इस ते बाद गल आउंदी है खाद दी, खादा कौन दियां पांदे, देसी या
2: केमिकल? तो बिल्कुल ही नहीं यूज करते हैं, प्राकृतिक खेती जैसे गवर्नमेंट ते प्रोत्साहन दे दी उस पर डिपेंड है ना सारा।
1: हाँ
2: जियां जीवामृत हो गया, गन जीवामृत हो गया, थोड़ा दर्श पानी अर्क हो गया या ब्रह्मास्त्र, इस प्रकार के जेडे प्रोडक्ट यूज करते हैं।
1: अच्छा
2: जी।
1: की प्राकृतिक खेती करा दे?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: कदू ते करा दे तो प्राकृतिक?
2: जद ते गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया उसी दौरान ते जुड़ी ते हाँ इस प्राकृतिक खेती करना है।
1: हाँ जी।
2: तो उस दौरान ते प्राकृतिक खेती का काम करा दे। हाँ
1: प्रदीप जी जल तो हाँ, हाँ यूरिया वगैरह भी पांदे होने जी केमिकल ने खेती कर दे।
2: हाँ जी।
1: जल तो हाँ प्राकृतिक करना करना लगे था तो जो दे कदे नतीजे कदे मिले?
2: शुरू शुरू तो थोड़ा प्रोटेक्शन घट आई थी।
1: हाँ जी।
2: लेकिन जी थोड़ा नॉलेज होंदा गया या ज्ञान होंदा गया तो उदे दौरान काफी अच्छा रिजल्ट उस टाइम मिला था समझो।
1: हाँ जी।
2: जी पहले जिस जमीन च अद्धा क्वांटल या एक क्वांटल निकलती थी तीस चून थोड़ा या 15 किलो या 20 किलो का फर्क आउदा या।
1: प्रदीप जी इस ते बाद ए दसा कि जियां बीज दी गल भी होई गई खाद दी भी होई गई, तुहां दा जेड़ा इलाका घेरा उत्थो जेड़ा सिंचाई दा क्या साधन है?
2: सिंचाई दा साधन अपनी मोटर लाई है उत्थे ना 7.5 हाउस पावर दी 3 फेज दा कनेक्शन लिया, उस दौरान स्प्रिंकल सिस्टम कन्ने सिंचाई करदे आ उत्थे ना।
1: अच्छा बख्या कोई नहीं खड नाला वगैरा कोई?
2: हां जी खड्डा ते लिफ्ट कीते पानी ना।
1: अच्छा
2: जी।
1: जेड़ी तुहां ए सिंचाई योजना दा लाभ लिया तो इस विच तुहानू कितने के अनुदान मिला हा?
2: अनुदान साढ़े फादर साहब के टाइम का था अनुदान, उदे बारे च हुण मिंजो उदे बारे च इतना ज्ञान भी नहीं आई है।
1: अच्छा।
2: बाकी मेरे ख्याल च हो सकदा समथिंग 50% तो मिले होना शायद।
1: अच्छा
2: पक्का ज्ञान नहीं मिंजो उदे
1: बारे। अच्छा यानी कि खरा पानी आउंदा ना?
2: हां जी हां 2.5 इंची पानी डिलीवर करदी है मोटर ना।
1: अच्छा।
2: तो ते स्प्रिंकल कन्ने अग्गा 2 इंची दी पाइप लाई के हां ते स्प्रिंकल सिस्टम कन्ने इरीगेशन कर दे दी ना।
1: अच्छा बिजली वाली मोटर है ना?
2: बिजली वाली
1: सोलर वाली है?
2: नहीं बिजली वाली मोटर लाई है जी।
1: उस तरह अलग ते फिर बिजली का मीटर वगैरह लगाया होना?
2: हां जी बिजली कनेक्शन लिया एग्रीकल्चर दा हुंदा ना गवर्नमेंट दे।
1: हां जी हां इस विच ते बिल थोड़ा घट ही हुंदा ना?
2: हां जी घट ही हुंदा इस च ना। मेरे ख्याल पहला 50 पैसे यूनिट आउंदी थी, अजकल शायद 1 रुपया यूनिट आउंदी होनी है।
1: अच्छा प्रदीप जी दा हलवाई कियां करदे, बैल वगैरह नहीं या फिर ट्रैक्टर ने?
2: पावर ट्रिलर करना है।
1: अच्छा अपना रखिया?
2: हां जी हां जी।
1: अच्छा जलो पावर टिलर लिया, इस बीच भी कोई अनुदान वगैरह मिल लिया?
2: हाँ जी 50% सब्सिडी मिली थी इस
1: चीज का। पावर टिलर करने का देखा बड़ी बढ़िया मल्चिंग जी खेतों की हुई है,
2: मर्जी करने जालो दिल किता जालो पावर टिलर चुकया बाह लिया।
1: हाँ जी हाँ
2: जी। मान लिया इस टाइम खेत खाली है जड़ा कुछ जिया लसन वगैरह या प्याज वगैरह पटोई जाना।
1: हाँ जी।
2: तू फिर पावर टिलर चुकी गई तू बीज बिजाई कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जगह तो गेहूं बाही होंगी।
1: हाँ जी।
2: तू ट्रैक्टर वगैरह तो आने नहीं।
1: हाँ जी।
2: पावर टिलर का यह बेनीफिट है जितू मर्जी दिल किता चुके लिया जितू दिल करता उठी
1: जड़ा भी तो हाँ।

0: जी
1: कहने तसली होंगी दिले भी कुछ अच्छा खाने।
0: हाँ जी प्रदीप जी, विभाग द्वारा कई तरह दिया ऐसिया कोई ट्रेनिंग चल दया, कोई कैंप चलते खेती दया सिखलाई दया, तो कुछ ऐसी कुछ ट्रेनिंग वगैरह कदी ले प्रशिक्षण कुछ
1: महात्मा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, ओके दौरान मैं ट्रेनिंग ली तिना ते भी ना जी वो अपने ब्रह्मस्त्र वगैरह बनाने की जीवा अमृत वगैरह बनाने की सारिया ट्रेनिंग ली थी मैं जी। बाकी जिया जोगिंद्र नगर है उसकी प्लांट का जो पौधों की नर्सरी है उत्थे उत्थे भी मैं ट्रेनिंग करी गया
0: पौधों से। जिया एक गल और तुहां ते पुछना चाहते जी, तुहां दी तुहां दस्या कि 5-6 कनाल तुहां वाला अपना रकबा जोगिंदा है ना, कुछ इसी विच जिया फलदार पौधे वगैरह भी लगाए?
1: हां वाला लाया, हरड लाई, मोरिंगा लाया।
0: अच्छा,
1: इस प्रकार दे लाए, बीड़ा बीड़ा पर लाए।
0: हां देखा भी औषधीय पौधे दे भी जड़े से हां अच्छी आमदनी जड़ी से ले सकदे ना। गल करते हैं जी तुहां दस्या तुहां प्राकृतिक खेती करते हैं, तो इस विच देखा हां जो जड़ा से पशुधन रखना बड़ा जरूरी होंदा ना, क्या क्या माल बच्चू रखे?
1: एक गाय रखी है मैं ना, दोगली टाइप च।
0: अच्छा
1: अच्छा दूध दे दी है, पहली है सुबह सुई इस टाइम।
0: हाँ जी
1: लेकिन अच्छा रिजल्ट तीसरा यह फायदा हो जाता भी तीस जियां कान जीवा अमृत मनाना हो या ब्रह्मस्त्र वगैरह बनाना हो तो तीह के गुंत्र करना या तीह के गोबर करना तीसो हम मनाई सकते फिर अपने यूज कर सकते हैं।
0: हाँ जी जी एक ही गाय रखी और नहीं है ना?
1: इको गाय रखी है।
0: दुध भी कर दे गुजारा चलता होना?
1: नहीं दुध बेच लेंदे तीह का, कुछ अपना यूज कर लेंदे कुछ बेच लेंदे ताकि तीह का जो खान पान है तीसा के दुध से तीह निकले हुआ है।
0: अच्छा
1: हाँ जी जी
0: क्या भा दुद्ध बिकी जाता तो? हाँ
1: जी 60 रुपये
0: रोटा सूरिया है ना?
1: आई दी 60 रुपये किलो
0: घरे ले जाते होने?
1: घरे ले जाते हैं जी।
0: खान पान की जी तुम गल की जी जरा तुह जो दुद्ध बेचते हैं उससे गाय का गुजारा जो चली जाता है ना, तो तुम क्या अनाज कि खल खुल पाते?
1: खल नहीं पाता मैं है ना, खल तो जी खुद की तो होंगी नहीं।
0: हाँ जी
1: बाजार से ले के होनी तो असर कैमिकल युग तो होनी,
0: हाँ जी
1: इस करके मैं नहीं पाता तो है अपने जी घरे का जौ या मक्की हुई या गेहूं हुई उसका मिक्स करके दाड़ बनाई के
0: प्रदीप जी जी बेरोजगार युवा पीढ़ी है ना नौजवान साथी है तीन बाल भी दिखा अपनी खरिया खुलिया जमीना है उस नौजवान युवा पीढ़ी जो तुहां क्या संदेश देना चाहेंगे कि सब किया खेती करी की अपना रोजगार चलाई पान?
1: देखो अज के दौर च बंदा नौकरी के पिछे नठा था, नौकरियां तो हम सीमित मात्रा च ही है ना।
0: हाँ जी
1: कृषि का जितना भी कार्य तिशो करा प्राकृतिक तरीके करने करा ताकि तू खुद भी अच्छा खा कने लोगों भी अच्छा खुआ।
0: हाँ जी
1: कने बाकी दूध डेयरी फार्म च कोशिश करो डेयरी फार्म दा करने ते विच तुहानू काफी ज्यादा फायदा होना है। कने मैं तो यही लोगों संदेश देना चाहता कि कृषि करा अच्छे ढंग करने करा।
0: हाँ जी
1: क्योंकि हमारा देश जेड़ा कृषि प्रधान देश है तिस च और अगे तिशो बढ़ाई सकी।
0: कुल मिलाई के ये बोल सकते कि अपने मां प्यो का जेड़ा सहारा बना कने आहा भी तुहानी पूरी मदद खेती करने विच जेड़ा सा कर गया ना।
1: बिल्कुल सर
0: जी। प्रदीप जी तुहां अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव अहां कन्ने सांझा कीते, तुहां अहां दे टियाले पर आए, तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता प्राकृतिक खेती पर। प्राकृतिक खेती ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों और बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम और समाप्त कर दी जाती है। इसमें स्थानीय संसाधनों जैविक प्रक्रियाओं और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ावा दिया जाता है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य मिट्टी जल पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए टिकाऊ कृषि उत्पादन करना है। तो इसके साथ ही हमारा आज का मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं।

0: दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम जुआल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक इन मैसूरू दिस इवनिंग। द मेमोरियल कमेमोरेट स्वामी विवेकानंद हिस्टोरिक विजिट टू मैसूरू इन 1892 व्हेन ही मेट दीवान ऑफ मैसूर सर के शेषाद्री अय्यर एंड रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम मैसूर महाराजा श्री चाम राजेंद्र वडियार फॉर हिज जर्नी टू द यूएस टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो। एड्रेसिंग द गैदरिंग ऑन दिस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड Swami Vivekananda truly embodied the spirit of India. He highlighted that country's youth are driving global growth.
1: Swami Vivekananda ji, युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान बागवान साथियों, लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास कार्यक्रम किसान वाणी। आपके रेडियो साथी मैं हूं सुरेखा।
7: और मैं हूं रामकुमार शर्मा। किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहेंगे। किसान वाणी कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार, वीरवार, शनिवार को साय 7:10 से 7:40 तक आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जाएगा और इसे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से रिले किया जाएगा।
6: तो किसान वाणी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं, आज हम आपसे बात करने वाले हैं वर्षा ऋतु में पशुओं में होने वाले मुंह और खुरपका रोग के बारे में। वैसे तो बारिश में पशुओं में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि गलघोटू, बकरी का प्लेग रोग, त्वचा रोग, लेकिन खुरपका और मुंहपका रोग जिसे हम, ये बीमारी पशुओं में बहुत तेजी से फैलती है और पशुपालकों का बहुत नुकसान भी करती है। तो राम, बताएं कि ये रोग जो है किस तरह से पशुओं में होता है और इसका कारण क्या हो सकता है?
7: किसान साथियों, यह रोग जुगाली करने वाले पशुओं में पाया जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और भेड़े। यह बीमारी एक विषाणु से फैलती है जिसका नाम एप्थोवायरस है। इस विषाणु की 7 प्रकार की किस्में हैं, जिसमें ओ, ए, सी, एशिया प्रमुख रूप से भारत में पाई जाती है और हिमाचल में ओ प्रकार के वायरस पाया जाता है।
6: पशुपालक भाइयों, ये बीमारी जो है पशुओं में कब और कैसे फैलती है ये जानते हैं। ये बीमारी पशुओं में बारिश के समय में और सर्दियों के मौसम में ज्यादा होती है, क्योंकि इस समय जो है ये विषाणु बहुत तेजी से हवा में फैलता है, जिसकी वजह है वातावरण में ज्यादा नमी का होना, जो कि इन दिनों बारिश के मौसम में प्रचुर मात्रा में होती है। और ये विषाणु बीमार पशु के दूध, गोबर, लार और मूत्र में पाया जाता है। ये एक वायु संक्रमण है जो कि नमी वाले वातावरण में लगभग 250 किलोमीटर के दायरे में हवा के माध्यम से फैल जाता है।
7: पशुपालक भाइयों, आइए चर्चा करते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। इस बीमारी से ग्रसित पशु में सबसे पहले शरीर का तापमान 104 से 105 डिग्री फारेनहाइट बढ़ जाता है। पशुओं के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण पशु को खाने में समस्या आती है। मुंह से ज्यादा लार आती है और पशु के खुरों में सूजन आ जाती है और खुरों में दर्द के कारण पशु लंगड़ा कर चलने लगता है।
6: जी, साथ ही दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है और गर्भवती भैंसों या गायों में या बकरियों में कई बार गर्भपात भी हो जाता है। पशुओं में छाले आते हैं, जैसे कि थनों पर, जीभ में और खुरों पर भी पाए जाते हैं, जिस वजह से पशुओं में बाद में थनैला रोग भी होने की संभावना रहती है। छोटे बछड़े बछड़ियों में, जैसे कि मेमने इत्यादि भी, इनको डायरिया हो जाता है, पेचिस या सांस लेने में समस्या आती है, साथ ही कमजोरी भी आ जाती है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। इस बीमारी में बड़े पशु बहुत ज्यादा बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और मृत्यु दर हालांकि इनका कम होता है, लेकिन जो पशु खुरपका मुंहपका नामक रोग से ठीक हो जाते हैं या बच जाते हैं, उनमें जो है कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और कई समस्याएं हो जाती हैं, साथ ही खुरों और थन की ऊपरी सतह या परत भी निकल जाती है।
7: जिन पशुओं में यह बीमारी लंबे समय से चल रही हो, उनमें सांस लेने की समस्या, खून की कमी और ज्यादा गर्मी सहन न कर पाना देखा गया है। बैलों की कार्य क्षमता कम हो जाती है, कभी कभी खुर पैर से अलग भी हो जाते हैं।
6: अब बात करते हैं कि इस बीमारी को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले इस रोग को रोकने का सही उपाय ये है कि पशु को समय समय पर टीका लगवाना चाहिए, जो कि साल में 2 बार लगाया जाता है, मार्च और सितंबर महीने में। स्ट्रेन A22OC और एशिया एक स्ट्रेन का टीका खास तौर पर लगवाना चाहिए। बीमार पशुओं का झूठा और संक्रमित चारा या पानी जो है स्वस्थ पशुओं को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। स्वस्थ और रोगी पशुओं को जल्दी से अलग कर दें ताकि

0: पशु जो है रोग की चपेट में ना आ सके।
1: जी सुरेखा, साथ ही यह एक वायु संक्रमण रोग है। अगर कोई व्यक्ति एक फार्म या गौशाला में जाता है जहां FMD का आउटब्रेक हुआ हो, तो उसे दूसरे गौशाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विषाणु उसके कपड़ों या जूतों में आ जाता है। उसे अपने कपड़े डिटर्जेंट से धोने चाहिए और जूते भी उसे साफ कर देने चाहिए, लाल दवाई में डिप करने चाहिए। जिन पशुओं की मृत्यु खुरपका मुंहपका रोग से हुई हो, जैसे भेड़ और बकरी, उनका मांस भी सेवन नहीं करना चाहिए।
0: जी राम, बिल्कुल सही कहा आपने। जब कभी भी बड़े स्तर पर खुरपका मुंहपका रोग की बीमारी फैल जाए, इस बीमारी का आउटब्रेक हो जाए, तो तुरंत जो है स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण करवा दें, और खुर में घाव हो जाए, कीड़े लग जाएं, तो जल्दी से तारपीन का तेल उस जगह लगाना चाहिए। रोग ग्रसित पशु के पैर को नीम और पीपल के छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार उसके पाँव को धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से भी दिन में 2 से 3 बार आप धो सकते हैं, और मक्खियों इत्यादि को दूर रखने वाला मलहम भी लगा सकते हैं। बीमार पशु का दूध और दूसरे उनके उत्पाद जो हैं हमें नहीं खाने चाहिए, और साथ ही जो उनके बैठने का स्थान है वहां पर जो भी सूखा घास या पुआल आपने बिछाया होता है उन्हें भी जला देना चाहिए। साथ ही उनके जो है बर्तन इत्यादि भी हमें अलग रखने चाहिए।
1: यदि पशु ठीक भी हो जाए तो भी उसे अन्य पशुओं के साथ एकदम ना रखें, क्योंकि यह विषाणु 6 महीने तक पशु की लार, दूध एवं मूत्र में पाया जाता है। यह बीमारी एक विषाणु उत्पन्न रोग है और यूं तो इसका इलाज सिर्फ टीकाकरण है। अगर पशु इस समस्या का शिकार हो तो उसके उपचार के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुंह के छाले को 1 ग्राम फिटकरी 100 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार मुंह धोना चाहिए। यह बीमारी एक विषाणु उत्पन्न रोग है और यूं तो इसका इलाज सिर्फ टीकाकरण है। अगर पशु इस समस्या का शिकार होता है तो उसके उपचार के लिए कुछ एक कार्य करने चाहिए। जैसे कि मुंह के छालों को 1 ग्राम फिटकरी 100 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए, और इस दौरान पशुओं को मुलायम एवं सुपाच्य भोजन दिया जाना चाहिए।
0: किसान साथियों, बहुत सारी बातों का ख्याल आपको रखना होता है पशुओं के बीमार होने पर, खासकर दुधारू पशुओं के बीमार होने पर, और इन सभी बताई गई बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपके पशु जो है कई तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन पशुओं के बीमार होने पर तुरंत नजदीक के पशु चिकित्सक को जरूर संपर्क करें, और समय रहते जो है उनसे उचित सुझाव लें, या फिर अपने पशुओं का उपचार जरूर करवाएं। तो ये तो हो गई बात किसानवाणी कार्यक्रम में वर्षा ऋतु में पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग के लक्षण और उपचार के बारे में। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मनोरंजन की तरफ।
1: आइए किसान साथियों, सुनते हैं चंपा शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान श्रोताओं, मनोरंजन के बाद पुनः चलते हैं जानकारी की तरफ, जो कि प्रसारित की जाएगी बातचीत के माध्यम से। और आज की जानकारीपूर्ण बातचीत का विषय है
1: गुठलीदार फल बगीचों की संस्योत्तर प्रौद्योगिकी, और इस विषय पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर कमल सिंह ठाकुर, और उनसे जानकारी हासिल करेंगे अशोक।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हम समय समय पर आपको समसामयिक जानकारी लेकर आते हैं, ताकि आपकी कृषि बागवानी की तकनीक में बदलाव आए और आप कृषि बागवानी से जो है अच्छा मुनाफा भी कमा सके। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे गुठलीदार फलों की सस्योत्तर प्रौद्योगिकी के बारे में। इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर कमल सिंह ठाकुर जी। डॉक्टर कमल सिंह ठाकुर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि गुठलीदार फलों की बात चली है तो गुठलीदार फलों में मुख्य रूप से कौन कौन से फल आते हैं?
3: मुख्य रूप से गुठलीदार फलों में आड़ू, खुमानी, प्लम तथा चेरी आते हैं, और ये मुख्य रूप से ये वो फल हैं जो हमारे प्रदेश में उगाए जा रहे हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फलों की बढ़ोतरी की कौन कौन सी अवस्था में जो है तोड़ा जाना चाहिए और ये क्यों महत्वपूर्ण होता है?
3: कि अगर हम फल की बढ़ोतरी के दौरान उसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन जो आते हैं उनका विश्लेषण करें
2: जी,
3: तो एक स्थिति आती है जब फल की गुणवत्ता उत्तम होती है
2: जी,
3: और उपभोक्ता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो स्थिति उपभोक्ता को फल में वो क्वालिटी अच्छी लगती है। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति अधिकतर फलों में पेड़ पर फल के पकने से आती है, परंतु हम फल को पेड़ पर पकने नहीं दे सकते, क्योंकि उसके तुड़ाई, ग्रेडिंग, पैकिंग तथा उसकी मार्केटिंग में भी समय लगता है, और जब तक वो उपभोक्ता तक पहुंचता है तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो इसलिए एक निश्चित परिपक्वता पर ही फल को तोड़ा जाना चाहिए, और इसका महत्व ये है कि भी हम उस परिपक्वता पर तोड़े फल को जब वो पकने की स्थिति आ जाए।
2: जी डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फलों की उचित परिपक्वता किस प्रकार से जो है जांची जा सकती है?
3: देखिए, इसके कई तरह से हम इसके जांच कर सकते हैं। मुख्य रूप से जैसे फूल खिलने से एक निश्चित समय, फ्लावरिंग या फ्रूट सेटिंग के बाद एक निश्चित समय गुजरता है जिसमें ये सारे परिवर्तन आते हैं, और हम फूल खिलने से दिनों की संख्या की गणना भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम फल की गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी का विश्लेषण भी कर सकते हैं, जैसे कि उसकी कठोरता है या उसके अंदर घुलनशील मात्रा की कितनी मात्रा है, घुलनशील पदार्थों की मात्रा कितनी है। और एक ये हमारे गुठलीदार फलों में जो है कलर है, रंग है, ये भी जो हरापन जब वो उसका

0: ग्राउंड कलर का हरापन कम होने लगे तब भी उसकी परिपक्वता का हम अंदाजा लगा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बात आती है तुराई के समय की। कई बार हमारा किसान जो है लापरवाही भी कर देता है, जल्दी जल्दी में फलों को तोड़ देता है। तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो तुराई के दौरान जो है हमारे फल उत्पादक भाई बहन जो है ध्यान रख सकते हैं?
0: देखिए, तुड़ाई के समय बागवान को काफी सतर्क होना चाहिए अगर उसने अच्छा मुनाफा कमाना है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वही तुड़ाई जब करे तो उससे पहले अपने सारी व्यवस्था कर ले कि भी पैकिंग सामग्री कितनी लगनी है, लेबर कितनी लगनी है, इस सब चीज़ों की वो व्यवस्था करने के पश्चात ही तुड़ाई में का काम शुरू करें। और तुड़ाई, जैसे मैंने पहले बताया, कि भी ये उचित परिपक्वता पर ही होनी चाहिए।
1: जी
0: और साथ ही तुड़ाई के समय फल को किसी भी प्रकार की चोट खरोच से बचाना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि कोई भी अगर सुई के बराबर भी अगर छेद हो जाए फल के अंदर, तो वहाँ से उसका जूस बाहर निकल आएगा और वातावरण में इतने कीटाणु हैं जो कि वहाँ पे बैठ करके उन पर फलों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि भी अगर हो सके तो दिन के समय जो तुड़ाई का काम ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक तापमान होने की वजह से फल का तापमान भी अधिक रहता है और उसके अंदर जो चेंजेस आती है वो बहुत तेजी से आती है। तो सुबह और शाम का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त माना जाता है,
1: जी,
0: ताकि फल का तापमान वो कम रह सके और तोड़ने के बाद फल को तुरंत छायादार जगह में रखें या उसको तुरंत ग्रेडिंग पैकिंग हाउस में ट्रांसपोर्ट किया जाए।
1: जी डॉक्टर साहब, तुड़ाई के बाद महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग करना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और ये किस प्रकार से जो है की जा सकती है?
0: देखिए, ग्रेडिंग से हम फलों का जो भी हमारी प्रोड्यूस है, उसकी पैदावार है, उसका वर्गीकरण करते हैं अलग अलग श्रेणियों में।
1: जी
0: वो करते हैं उसकी गुणवत्ता के आधार पे, उसके आकार के आधार पे या उसके रंग के आधार पे। तो हम गुठलीदार फलों में अधिकतर ये तीन श्रेणियां फलों को वर्गीकरण करते
1: जी
0: हैं, जिसमें स्पेशल ग्रेड वन और ग्रेड टू है, ये तीन वर्ग हैं। और इसका महत्व ये है कि भी अगर हम बिना ग्रेड किया हुआ फलों को एक ही बक्से के अंदर पैक करेंगे तो कोई छोटा फल होगा उसके अंदर, कोई बड़ा होगा, तो जब वो मार्केट में पहुंचेगा तो देखने में उतना आकर्षक नहीं लगता और जिससे हमें उचित दाम नहीं मिल पाते हैं।
1: जी
0: तो अगर रंग और आकार के आधार पे सही ग्रेडिंग किया गया हो तो वो प्रोड्यूस जो है देखने में भी बहुत आकर्षक लगता है और उपभोक्ता उसे खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, जिसके लिए वो अधिक मूल्य भी देने के लिए तैयार रहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने ये जो तीन प्रकार की ग्रेडिंग बताई, इसमें किस प्रकार से फलों को लिया जाता है और कौन कौन से साइज के फलों को जो इसमें ले सकते हैं?
0: जो स्पेशल है,
1: जी
0: ये जो हमारे प्लम और खुमानी है, इसके लिए तो फलों का आकार एक ही है, और आड़ू क्योंकि बड़ा फल होता है तो उसमें उसका आकार थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। तो स्पेशल में प्लम और खुमानी में लगभग 42 मिलीमीटर से अधिक जो फल है उसको स्पेशल ग्रेड में रखते हैं, और ग्रेड वन में 36 से 42 मिलीमीटर तक के फल को रखते हैं, और जो ग्रेड टू है उसमें 36 मिलीमीटर से कम के फल जो वो रखे जाते हैं। इसी प्रकार आड़ू में 55 मिलीमीटर से अधिक वाले फल स्पेशल ग्रेड में, 46 से 55 मिलीमीटर वाले फल ग्रेड वन में और 46 मिलीमीटर से कम वाले फल ग्रेड टू में रखे जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, गुठलीदार फलों की ग्रेडिंग और पैकिंग जो है किस तरह से की जा सकती है?
0: ग्रेडिंग का तो ये मैंने बताया कि भी ये
1: जी
0: आधार, इस आधार पे हम ग्रेडिंग करते हैं। और पैकिंग के लिए जो है प्लम और खुमानी के जो फल हैं वो लगभग 4 से 5 किलोग्राम के बक्से में इसका पैकिंग होती है, और आड़ू की पैकिंग थोड़े बड़े बक्से में जिसका आकार 48.2 बाय 25.4 बाय 20.3 सेंटीमीटर होता है, और इसमें से लगभग 8 से 10 किलो फल आता है एक बक्से में। तो दोनों ही पैकिंग में प्लम और खुमानी की है और जो आड़ू की है, तो इसमें जो हम तहों की संख्या, जो ग्रेड स्पेशल ग्रेड है
1: जी
0: उसमें 3 रखते हैं, और जो ग्रेड वन और ग्रेड टू है उसमें हम 4 4 तय

0: डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फलों की गुणवत्ता या भंडारण अवधि बढ़ाने के लिए जो है क्या क्या उपाय हमारे किसान भाई कर सकते हैं।
1: देखिए, इसमें हमारे पास काफ़ी सारे विकल्प हैं। अगर हमने भंडारण अवधि को बढ़ाना है और फल को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है,
0: जी
1: तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है या उन तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनसे जो है फल के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, जो पकने के दौरान परिवर्तन आते हैं, उनको हम धीमा कर सकें। तो
0: जी
1: निश्चित तौर पर तापमान नियंत्रण एक ऐसी विधि है जिसमें जिसको हम प्री कूलिंग भी कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले तुड़ाई के तुरंत पश्चात अगर हम प्री कूलिंग करें तो फल का तापमान कम हो जाता है और उसके अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं उसके पश्चात, तो वो धीमी, उनकी गति धीमी हो जाती है, तो जिससे कि उनकी भंडारण अवधि लंबी हम रख सकते हैं। तो दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि भी अगर हम फलों को धूप से बचाएं तो इससे भी उनका तापमान कुछ हद तक नियंत्रित रह सकता है। अगर हम धूप में रखें तुड़ान के बाद तो फल का तापमान बढ़ता है और उसके अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो भी गति भी तेज हो जाती है और वो जल्दी पकने लगते हैं। फिर कुछ एक उपचार भी हम कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट है,
0: जी
1: तो तुड़ान के पश्चात भी अगर हम लगभग 1% कैल्शियम क्लोराइड के घोल में फलों को डुबोएं और उसके पश्चात उन्हें हवा में सुखाएं, तो ताकि उसमें फ्री मॉइस्चर ना रहे, तो उससे भी उसकी भंडारण अवधि बढ़ती है। और कुछ एक जैसे वैक्सिंग ट्रीटमेंट्स भी हैं, जिसे आपने जो गुठलीदार फल उगाते हैं बागवान, उन्हें वो काफ़ी वाकिफ होंगे इस चीज़ से कि भी जैसे सेंटा रोजा प्लम है, उसके ऊपर एक सफ़ेद तय होती है जब वो फल तैयार होने लगता है, तो वो नेचुरल वैक्स है। तो नेचुरल वैक्स बनने से फल के अंदर जो परिवर्तन है या उसकी श्वास लेने की क्रिया है वो उसमें कमी आती है, तो जिससे कि भंडारण अवधि बढ़ती है। तो जैसे भी हम अगर वो फल को हैंडल करते हैं तो जो नेचुरल वैक्स सभी फलों में बनता है तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास हम जो है प्राकृतिक तौर पर जो आर्टिफिशियल वैक्सिंग है जो कि फूड ग्रेड मटेरियल से बना हो, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इससे भी हम भंडारण अवधि बढ़ा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बात की है जो भंडारण अवधि बढ़ाने के बारे में, तो
1: जी
0: कितनी एक अवधि तक जो है इन दवाइयों से हम इन फलों को जो है सुरक्षित रख सकते हैं?
1: देखिए, सामान्य तापमान पर तो ये हो सकता है कि हफ्ते भर सुरक्षित रह सके,
0: जी
1: क्योंकि नेचर ही ऐसा है स्टोन फ्रूट्स का कि ये बहुत जैसे घुमानी है, ये तो दूसरे तुड़ान के दूसरे तीसरे दिन तक ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और हम इन्हें दूर की मंडियों में नहीं पहुंचा पाते। तो अगर थोड़ा सा ये उपचार करें तो ये मतलब 4-5 दिन तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। और कुछ एक और तकनीकों से भी हम इनका वो कर सकते हैं, जैसे मॉडिफाइड एटमोसफेयर पैकेजिंग अगर करें तो उससे भी हम इनकी श्वास लेने की क्रिया को कम कर सकते हैं और हम इन्हें दूर की मंडियों तक सुरक्षित पहुंचा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे मन में चलते चलते आ रहा है, जब इन फलों को जो है दवाइयों से ट्रीट करेंगे
1: जी
0: तो क्या खाने वाले पे इसका कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा?
1: देखिए, इनमें कोई ऐसी दवा का उपयोग नहीं है जो इंसेक्टिसाइड है या फंजीसाइड है, तो ये भी, ये जो वैक्सिंग मटेरियल है, ये उपयुक्त जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उन मटेरियल से आजकल जो है वैक्सिंग मटेरियल तैयार किया जाता है। इसलिए इसके उपयोग से अगर वैक्सिंग मटेरियल खाद्य पदार्थों से तैयार किया गया है तो उस वैक्सिंग मटेरियल का उपयोग में से हमें कोई हानि नहीं होती।
0: जी डॉक्टर कमल सिंह ठाकुर जी, आपने गुठलीदार फलों की सस्योत्तर प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, गुठलीदार फल बागीचों की सस्योत्तर प्रौद्योगिकी के बारे में आपने विस्तार से जाना डॉक्टर कमल सिंह ठाकुर से, जिनसे बातचीत कर रहे थे अशोक। तो अब क्यों ना कार्यक्रम को फिर से मनोरंजक बनाया जाए, सुन लिया जाए एक मधुर सा लोकगीत
3: यशपाल की आवाज में।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी के सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे।
4: नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
6: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक, सत्र के दौरान होंगी 10 बैठकें। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, भ्रष्टाचार से संपत्ति कमाने वालों को किसी भी हालत में नहीं बख्शेगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर लगाया FIR के नाम पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। शिप की लाश से 7 साल बाद फिर शुरू हुआ भारत और चीन के बीच व्यापार। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायत

0: द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के लिए नई नीति तैयार करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 21 अगस्त से 3 सितंबर तक शिमला में आयोजित होगा। इस संबंध में आज विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। 27 अगस्त को निजी सदस्य कार्य दिवस तय किया गया है। 28 से 30 अगस्त तक विधानसभा में अवकाश रहेगा। पठानिया ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए कार्य कर रही है और भ्रष्टाचार से संपत्ति कमाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंबा में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य की संपदा को बचाने के लिए सत्ता में आई है। उन्होंने भाजपा के एक विधायक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में FIR दर्ज करने को सही ठहराया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में उनके खिलाफ पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के बयान को भाजपा का झूठा प्रचार करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और रजनी पाटिल उनकी कार्यशैली से बहुत खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार पर जल्द फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के साक्षात्कार का परिणाम जल्द घोषित करने की भी बात कही।
1: अगर भाजपा के विधायक 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसका स्रोत नहीं पता लग रहा है, तो हम तो प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए आए और कुछ लोगों महज अपने धन को दुगना करने के लिए राजनीति में आए हैं। जो भी भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति है, चाहे वो कितने ही बड़ा नेता क्यों ना हो, सरकार उसको बिल्कुल नहीं बख्शेगी। रजनी पाटिल जी हमारी इंचार्ज है और ऐसी कोई रिपोर्ट की बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में चले हुए पर विश्वास करेगी तो इस पार्टी का भगवान ही मालिक है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्ष की आवाज दबाने के लिए भाजपा विधायकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर ऐसे सभी मामलों को पहले ही कैबिनेट में रद्द किया जाएगा।
2: हिमाचल प्रदेश में जब हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को लग रहा है, जब हम काम नहीं कर सकते, हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में जो हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करता है, उनकी आवाज को कैसे दबाया जाए, उस आवाज को कैसे बंद किया जाए, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है।
0: जयराम ठाकुर ने सरकार के इशारों पर गलत काम कर रहे अधिकारियों को चेतावनी दी कि प्रदेश में सरकार बदलने पर उनकी भी जवाबदेही तय होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी है और हाईकमान ने भी मुख्यमंत्री को अपनी कार्यशैली बदलने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी लाश से 7 साल बाद व्यापार फिर से शुरू हो गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर के पूह उपमंडल की सीमावर्ती पंचायत नमग्या में निर्मित 56 ट्रेडमार्ट का उद्घाटन किया और सीमा पार व्यापार आरंभ करने को हरी झंडी दिखाई। शिपकी

0: सप्ताह से ये व्यापार वर्ष 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद से बंद था। जगत सिंह नेगी ने इस मौके पर कहा कि शिपकिला से सीमा पार व्यापार आरंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पूह व्यापार मंडल के अध्यक्ष हिशे नेगी की मांग पर उन्होंने कहा कि सीमा पार से आयात निर्यात वस्तुओं का दायरा बढ़ाने का मामला प्रदेश सरकार विदेश मंत्रालय के माध्यम से चीन सरकार के साथ उठाएगी। उन्होंने व्यापारियों का आह्वान किया कि वे पारदर्शिता और नियमानुसार केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा तय आयात निर्यात वस्तुओं के नियमों का पालन करें। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विभाग पंचायतों द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के लिए नई नीति तैयार कर रहा है। इस नीति से भविष्य में पंचायतों द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें भी निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप हो सकेंगी। विक्रमादित्य सिंह आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत धामी स्थित मिनी सचिवालय में जन शिकायतें सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायतों द्वारा निर्मित कई सड़कें विभागीय गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि धामी क्षेत्र में सड़क, पेयजल और बिजली सुधार पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की ओर से कुल 67 समस्याएं रखी गई, जिनमें से 28 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। मंत्री ने शेष मामलों के शीघ्र निस्तारण के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का 18% शिक्षा पर खर्च कर रही है। रोहित ठाकुर ने आज केंद्रीय विद्यालय कोटखाई में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ आयोजित संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में शिक्षा विभाग में लगभग 15,000 पद खाली थे, जिनमें से लगभग 9,000 पदों को अभी तक भरा जा चुका है, जबकि 3,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति और शैक्षणिक सत्र का आरंभ क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने इस मौके पर डीएवी महाविद्यालय कोटखाई में नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन भी किया। स्वास्थ्य मंत्री के चुनाव क्षेत्र सोलन में स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं सुधरने के चलते आम मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में सिर्फ एक ही पर्ची और फीस काउंटर होने के चलते लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इन मरीजों का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारी लाइनों की परवाह किए बिना अपनी जान पहचान वालों की सरेआम तरफदारी कर रहे हैं। इससे परेशान लोगों ने आज अस्पताल में हंगामा किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि अस्पताल में फीस और पर्ची काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए ताकि उन्हें लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल सके।
1: अंदर पहले जाइए, सिफारिश से काम होगा इनका आगे। हाँ डॉक्टर आ जा रहे हैं, पहले अंदर से अंदर घुस जा रहे हैं। पीछे बुजुर्ग आदमी खड़े हैं। ये लाइन आपको ऐसी दिखेगी 12 बजे तक, 12:30 बजे के बाद पहुँच जाएंगे। लोग भी अच्छा नहीं होगा। तीसरा दिन हो गया, शोर बार चल रहे हैं। 7 बजे से खड़े हैं हम लोग इधर, इसी नंबर पे अभी तक घर पे खड़ी हुई। अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ मेरा, अभी तक क्या मेरी बारी नहीं आई क्या?
0: प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की वर्षा हुई। प्रदेश में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण 102 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के अनुसार आगामी 7 अगस्त तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा और इस दौरान अधिकांश स्थानों पर वर्षा होगी। विभाग ने 2 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जबकि 3 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक। सत्र के दौरान होगी 10 बैठकें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भ्रष्टाचार से संपत्ति कमाने वालों को किसी भी हालत में नहीं बख्शेगी सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाया FIR के नाम पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। शिपकिला से 7 साल बाद फिर शुरू हुआ भारत और चीन के बीच व्यापार। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायतों द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के लिए नई नीति तैयार करेगी सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: सुन रहे थे आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सन जिला शिमला से प्राप्त सूचना के अनुसार क्रैच कार्यकर्ता व सहायिकाओं के पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। बाल विकास परियोजना कुमारसन के अंतर्गत क्रैच केंद्रों में क्रैच कार्यकर्ता का एक पद जबकि क्रैच सहायिका के दो पद भरे जाने हैं। ग्राम पंचायत थानाधार के अंतर्गत पमलाई क्रैच केंद्र में क्रैच सहायिका का एक पद जबकि क्रैच कार्यकर्ता का भी एक पद भरा जाना है, जबकि ग्राम पंचायत शलोटा में प्लारन क्रैच केंद्र में एक पद क्रैच सहायिका का भरा जाना है। क्रैच कार्यकर्ता के लिए मानदेय 5,500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि क्रैच सहायिका के लिए 3,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पात्रता संबंधी शर्तें इस प्रकार से हैं। क्रैच कार्यकर्ता व सहायिका हेतु उम्मीदवार केवल महिला प्रार्थी ही पात्र होंगी। प्रार्थी उस गांव या संबंधित गांव यानी फीडिंग विलेजेस की सामान्य महिला निवासी होनी चाहिए जिस क्रैच केंद्र में रिक्त पद भरा जाना है। क्रैच केंद्र के क्रैच कार्यकर्ता के लिए आवेदक की शिक्षा कम से कम 10.2 तथा सहायिका के पद हेतु 10वीं पास होनी चाहिए। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। साक्षात्कार के लिए तिथि 24 अगस्त 2026 कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमारसन जिला शिमला हिमाचल प्रदेश समय 12 बजे निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमारसन जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के दूरभाष नंबर 01782240049 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। आकाशवाणी का ये
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया।

लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 बजे की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 11:00 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 11:00 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु तथा

मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का

0: विरोध किया, उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जाँच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के ब्रिजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ NTA ही नहीं बल्कि UPSC रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। तेरे एहसास को दिल की धड़कनों में बसाना चाहता हूँ, हर गुजरते लम्हे को तेरे नाम से सजाना चाहता हूँ। तेरे ख्वाबों की खुशबू से महके मेरी तन्हाई, मैं अपनी हर खामोशी को गुनगुनाना चाहता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देश

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: रहे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी

0: की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में

0: स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
1: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, SAI को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
0: दिन का 3रा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
2: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Center in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmin Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shotput F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artefacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
4: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा

0: for allegedly hurting religious sentiments in the parliament complex yesterday. The BJP delegation, led by New Delhi MP Vasudhi Swaraj, demanded registration of an FIR against the opposition leaders. In view of the closure of Jammu-Srinagar National Highway NH44 between Jammu and Srinagar, the railways has decided to operate a special train between Budgam and Sri Mata Vaishno Devi Katra to facilitate stranded passengers and manage the heavy rush at railway stations. At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, Indian boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar won gold medals in their respective finals, while para-athlete Soman Rana also bagged a gold in men's shot put F57 event. We have more from our sports desk.
1: India climbed to 6th place today after its medal tally rose to 30, including 8 gold, 15 silver and 7 bronze medals. Indian boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar delivered dominant victories in their respective finals to win gold medals. Preeti claimed the women's 54kg boxing title with a commanding 5-0 victory over Canada's Scarlett Delgado. Jasmine secured another 5-0 win in the women's 57kg final, defeating Michaela Walsh of Northern Ireland. India also celebrated a historic achievement in para-athletics, with Soman Rana winning gold and Shubham Jual taking silver in the men's shot put F57 event. The result marked India's first ever Commonwealth Games gold medal in the men's shot put F57 event and the nation's first double podium finish in the category. In athletics, triple jumper Praveen Chitrawal won silver while Silva Prabhu earned bronze. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Union Sports and Youth Affairs Minister Dr. Mansukh Mandviya congratulated the medal winners. With Vikas Churagja from Sports Desk.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. That is all in the news at 9. Good night.
2: FM band 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है. 9:15 हुए हैं. अब आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम हिमदर्शन रिले किया जाएगा.
3: 74 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं. 9:15 हुए हैं. पेश है साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन.
4: श्रोताओं नमस्कार. साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर. इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में. पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 2030-31 तक जारी रखने की दी मंजूरी. योजना के लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्यारीघाट से 297 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना. कहा 1,000 इलेक्ट्रिक बसें और खरीदेगी सरकार. प्रदेश में पंजीकृत उद्योगों को अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र होगा जारी. 5 से 25 वर्ष तक रहेगी मान्यता अवधि. और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा मोदी सरकार ने संसद में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक किया पेश. सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर कसेगा शिकंजा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्षों की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है. उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली द्वारा पात्र किसान

0: को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। पीएम किसान योजना देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जिसे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में, सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है। और ये सारा का सारा बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना को कुल 5,070 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई है और इसके तहत 5,000 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के क्यारीघाट में 297 नई टाइप ए इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने हिम बस प्लस कार्ड का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बसों से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि ये स्वच्छ, हरित, आधुनिक व टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के बाद से एचआरटीसी के बेड़े का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इन बसों के साथ ही अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष 1,000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है। इसके अलावा 100 हाइड्रोजन बसों को खरीदने पर भी विचार किया जा रहा है।
2: 297 बसेज इलेक्ट्रिकल हमने विभिन्न डिपो में भेज दी है। अब हमारे पास 500 बसों का फ्लीट इलेक्ट्रिकल का हो गया है। 1,000 इलेक्ट्रिकल बसेज और लाने की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आने वाले समय में 100 हाइड्रोजन बसेज के बारे में भी विचार कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जो वातावरण है, प्रकृति है, उसको बचा सके। जो क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान हो रहा है, हिमाचल हिंदुस्तान की सबसे लीडिंग स्टेट बने, इस दिशा में हमारी सरकार ने कार्य कर रहे हैं।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण, सतत व पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने और एचआरटीसी को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमबस प्लस कार्ड की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चलाए जा रहे कैच द रेन अभियान में बढ़ती जन भागीदारी पर प्रसन्नता जताई है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान 4 जुलाई से चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैच द रेन अभियान के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। इसके तहत पुराने तालाबों से गाद हटाने सहित कुओं और बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
3: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों में लोगों से खादी से बना कम से कम एक उत्पाद खरीदने की अपील दोहराई।
3: खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
0: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ लगातार संवाद और प्रयासों के बाद शिमला जिला के छैला नेरी पुल, यशवंत नगर कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए लगभग 203 करोड़ 52 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सड़क कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू और आसपास के बागवानी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह ने इस धनराशि के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है।
4: जो हमारी छैला सैन यशवंत नगर राजगढ़ सड़क है, जो एक मुख्य सड़क हमारे चौपाल, ठियोग, जुब्बल कोटखाई और रोड़ू क्षेत्र के बागवानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और उसके अपग्रेडेशन के लिए हम लगातार, मैं नितिन गडकरी जी से मिल रहा था और अभी हमको उसके लिए करीबन 240 करोड़ रुपए

0: स्वीकृति 2-3 दिन पहले प्राप्त हुई है और मैंने फोन भी किया नितिन गडकरी जी को, मैंने उनको शुभकामनाएं दी, उनका धन्यवाद किया, मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि जल्द से जल्द की सारी औपचारिकताएं पूरी करे। ये एक बहुत बड़ी सौगात है और इससे हिमाचल के खास करके शिमला जिला के जो हमारे बागवान हैं उनको एक बड़ी राहत आने वाले समय में मिलेगी। तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी, गडकरी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग जो इसमें रहा है उनका भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि टिक्कर जरोल खमाड़ी सड़क के पहले पैकेज में छूटे 16 किलोमीटर हिस्से के उन्नयन के लिए भी केंद्र ने 35,93,00,000 रुपए मंजूर किए हैं।
0: हमारा जो मेरा गृह क्षेत्र है रामपुर बुशहर, वहाँ का जो ननखड़ी क्षेत्र है, हालांकि वहाँ के लिए हमको पहले उसमें काफी सहयोग करीबन 60 करोड़ रुपए का मिला, उसका कार्य चला हुआ है, कुछ उसमें पोर्शन बच गया था 16 किलोमीटर का, उसके लिए भी हमको मेरे विशेष निवेदन पर 35 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए, का भी प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। वो भी हमारा सेब बहुल्य क्षेत्र है, कोटगढ़ का, टिक्कर खमाड़ी का।
1: विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन सड़कों के पूरा होने पर बागवानी क्षेत्र को नई गति मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पंजीकृत उद्योगों को अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में ऐसे 12,500 उद्योग पंजीकृत हैं जिन्हें बोर्ड से बार बार अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, लेकिन अब इस व्यवस्था परिवर्तन से उद्योगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र जारी होने पर उसकी मान्यता अवधि 5 से 25 वर्ष तक की रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के वर्ग के आधार पर उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सीमा तय की गई है और इस प्रणाली के लागू होने से 70% लीपकीय कार्य कम होगा। सिरमौर जिला में रेणुकाजी विधानसभा के दुर्गम हरिपुर धार क्षेत्र के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर धार को सिविल अस्पताल का दर्जा देने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। क्षेत्र की करीब 6 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं के संबंध में हरिपुर धार के नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान द्यूड़ी खड़ा पंचायत के प्रधान विनय छिंटा ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, जिसके चलते 3 विधानसभा क्षेत्रों की करीब 20 पंचायतों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
2: लगभग 3 विधानसभाओं के लोग अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सिविल अस्पताल हरिपुर धार के ऊपर निर्भर थे, लेकिन जब से हमारा सिविल अस्पताल बंद हुआ है स्वास्थ्य क्षेत्र का हमारा इतना बड़ा क्षेत्र लाचार हालत में पड़ा हुआ है। अब हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है, हम चाहते हैं कि हमारी इस मांग को माना जाए, ये जायज मांग है। हमारे तकरीबन 20 पंचायतों के लोग स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता उन्हें बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में एडीआर रिपोर्ट को लेकर भाजपा के आरोपों पर स्पष्ट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है और सारी संपत्ति का विवरण चुनाव के दौरान सार्वजनिक किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को संपत्ति या किसी अन्य मामले में संदेह है तो जांच एजेंसियां उपलब्ध हैं।
3: कोई नई प्रॉपर्टी का ऐड नहीं हुई, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है, वो अगले साल के एफिडेविट में आपको, जब हम चुनाव लड़ते हैं उस समय के एफिडेविट में आ जाएगी। तो ये चुनाव का एफिडेविट प्रकाशित किया गया है और इस चुनाव के एफिडेविट को इस तरह प्रकाशित किया गया कि नॉर्थ इंडिया में सबसे रिचेस्ट कोई अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो इस प्रकार से प्रसारित करने की कोशिश की गई है। तो इसकी तो पहले इंक्वायरी हो चुकी है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी परिवार का भी कमा सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी वाले ट्रोल कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं और किसी न किसी तरफ से उनका सोशल मीडिया अटैक करता रहता है।
1: कांग्रेस विधायकों के भाजपा में जाने की अटकलों पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो पार्टी छोड़ना चाहता है वो जा सकता है और कांग्रेस को विचारधारा से जुड़े लोगों की आवश्यकता है।
3: अगर कोई कांग्रेस का एमएलए बीजेपी में जाना चाहते हैं, मैंने बोला जाए, खुला है। अब कोई बिकना चाहता है राजनीतिक मंडी में तो उसमें मैं कोई नहीं कर सकता, जा कोई नहीं रहा है, लेकिन कोई अगर जाना चाहता रोक तो नहीं सकते। हमारे पास तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से कई विधायक हमारे पास आते हैं, मिलते हैं कि अगला चुनाव में उनको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा जा सकता।
1: हिमाचल के युवाओं और उद्योगों को स्वदेशी तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से शिमला सचिवालय में आत्मनिर्भर यात्रा क्षेत्रीय आउटरीच सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स, उद्योगों और शोध

0: नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन का शुभारंभ पर्यावरण विज्ञान औद्योगिकी तथा जलवायु व परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंगला ने किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य MSME और अनुसंधान संस्थानों को TDP योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, हिमाचल के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों से जोड़ना और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण से औद्योगिक विकास को गति देना है।
1: आत्मनिर्भर बनना हमको है, तो चाहे रिसर्च हो, चाहे कृषि हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हमारी जो वर्कशॉप है उसी दिशा में एक कदम, रिसर्च के मामले में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते, तो इसलिए हम इसका आज रोडमैप भी बनाएंगे।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल लाकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस संशोधन में पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने और 3 महीने के अंदर ट्रायल समाप्त करने का प्रावधान किया गया है ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके विपरीत हिमाचल में पेपर लीक मामलों में गंभीर आरोप सामने आने और जांच की संस्तुति होने के बावजूद सुक्खू सरकार ने दोषी अधिकारियों को पदोन्नति देकर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि कर्मचारी हितैषी होने का दावा करने वाली सुक्खू सरकार के समय में प्रदेश भर में कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर संघर्षरत हैं। इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

0: साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम साहित्य भारती रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती
1: स्मृतियों तक एक संक्षिप्त यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है, जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है,

जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है, जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक थौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़त न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़त न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के छांह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन,

0: वाचन जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
1: स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो हम लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी, हिंदी एक बड़ी भाषा थी, क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशु कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी, स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है, इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था, जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्व

0: महत्वपूर्ण कार्य करती है। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सब की पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें, तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर, जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में, यानी अत्यल्प में, पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता

0: वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
1: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
0: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते है, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है।
1: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
2: एक समय पर भारत भारती की ये स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथेय बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
0: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
1: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड भविष्यत खंड मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
1: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
4: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो उस समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं

0: रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
2: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोजे वतन।
3: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का, रचनाकार नवाब राय। यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
2: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
4: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपने रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
3: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को ये भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
2: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,

0: पदक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
1: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
2: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर तुराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा।
4: ये आकाशवाणी है, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेष गोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
5: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। चिन्मया सिस्टर्स आर वन ऑफ द लीडिंग एंड पॉपुलर डियो इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक विद देयर मेलिफ्लुअस वॉइसेस, स्पिरिटेड सिंगिंग एंड स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू क्लासिसिज्म, द डियो हैज कैप्चर्ड द हार्ट्स ऑफ रसिकास वर्ल्ड वाइड। Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Shri T.N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Shri R. Santana Gopalan and have successfully imbibed and observed the specialities of their guru style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the mridangam and Shri N. Sundar on morsing.
4: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर की रचना शक्ति गणपतिम।
5: द कॉन्सर्ट फॉर टुनाइट बिगिंस विद द कॉम्पोजिशन ऑफ हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर इन रागा नाट्य सेट टू रूपक तालम शक्ति गणपतिम।

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मां मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी, श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा, रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: अभी आपने सुना तनिया वर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: यू जस्ट हियर टू अ तनि आवर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय श्री बी गणपति रामन एंड बाय श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मनमे।
1: चिन्मया सिस्टर्स कंक्लूड देयर कॉन्सर्ट विद मुरुगनई बजी मनमे, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पापनासम शिवन इन रागा जौनपुरी सेट टू आदितालम।

0: पाठ्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters, Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam, and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.
2: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई। 9 नए
3: केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदक

पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।